0: வந்தே மாதரம்.
1: வந்தே மாதரம் சுஜலா சுஃபலா.

आकाशवाणी का सागर केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के आश्विन माह की 15वीं तिथि। तदनुसार 7 अक्टूबर सन 2026 सुबह के 5:56 हुए हैं। अब हमारा आज का प्रसारण प्रारंभ होता है। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है।

आकाशवाणी सागर है। सुबह के 6 बजने को है। कुछ ही देर में हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे दिल्ली से, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला आज भारत मंडपम में दूसरे भारत ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। 10 खरब डॉलर की निवेश साझेदारी और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में टीईपीए की प्रगति की समीक्षा, नए निवेश की घोषणाएं, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग मजबूत करने तथा प्रमुख क्षेत्रों में अवसर तलाशने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति गी पाहमला 3 दिन की भारत यात्रा पर है। भारत और ईएफटीए के बीच टीईपीए पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से लागू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और

0: मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि यह देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी सरकार के प्रमुख के रूप में आज 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई। पुलिस ने कानून के तहत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंचे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और हिरासत में लिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेन देन और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन्हें चार मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले टी20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए। शानदार शतक के लिए श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का अगला मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी तेज हवाएं चलने की संभावना है और आंशिक तौर पर बादल छा सकते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसे ही मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। FM 102.6 MHz पर सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं ये मातृवंदना समूह स्वर में।

समूह स्वर में ये मातृवंदना भी आपने सुनी और अब आइए सुनते हैं गणेश भजन अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में।

अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ, स्वर था रविंद्र साठे का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण। वक्त हुआ है 6:40 मिनट। पेश है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में चांदनी चौक फिल्म का ये गाना भी आपने सुना। शैलेंद्र ने गीत लिखा था, धुन तैयार की थी रोशन ने। और अब आइए सुनते हैं मुबारक बेगम और सुमन कल्याणपुर को फिल्म कोबरा गर्ल में। प्रेम धवन ने गीत लिखा है, संगीत है SN त्रिपाठी का।

और अब आइए सुनते हैं किशोर कुमार और गीता दत्त की आवाजों में बंदी फिल्म का ये गाना। राजेंद्र कृष्ण ने गीत लिखा है, धुन तैयार की है हेमंत कुमार ने।

की रौनक है घर वाली, घर की रौनक है घर वाली, बजे न ताली, घर की रौनक है घर वाली, घर की रौनक है घर वाली। किशोर कुमार और गीता दत्त की आवाजों में बंदी फिल्म का ये गाना आपने सुना। और अब आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं गीता दत्त और मुकेश की आवाजों में बंजारन फिल्म का गाना।

0: सहायं करिष्यति। श्रीवैष्णवः उक्तवान् यत् मन्त्रिमण्डलेन लघु मध्यमोद्यमेषु स्वामित्व निवेशाय 10,000 कोटि रूप्यकाणां लघु मध्यमोद्यम विकास निधिः स्थापनायै अपि अनुमोदनं प्रदत्तम्। भारत घाना देशयोर्मध्ये वैज्ञानिकानुसन्धानस्य शैक्षणिक क्षेत्रस्य क्षमतावर्धनस्य कृष्यनुसन्धानस्य तथा शिक्षायाश्च क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढीकर्तुं द्वयोः सन्धिज्ञापनपत्रयोः आदान प्रदानं जातम्। विदेशमन्त्रिणः डॉ एस जयशंकरस्य घाना यात्रायाः समये एतयोः सन्धिज्ञापनपत्रयोः आदान प्रदानम् अभवत्। डॉ जयशंकरस्य घानादेशस्य विदेशमन्त्रिणः सैम ओकुलजीतो अब्लक्वा इत्यस्य च मध्ये भारत घानादेशयोः व्यापक सहमतिं सुदृढीकर्तुं विस्तृतं विचारविनिमयं जातम्। ध्यातव्यमिदं यत् विदेशमन्त्रिणः इयं यात्रा अस्य मासस्य 10 दिनांकपर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरासु प्रबलवृष्टेः पूर्वानुमानम् कृतमस्ति। भारतेन ह्यः रात्रौ लखनऊ नगरे क्रीड्यमाने प्रथम विंशति प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायां वेस्ट इंडीज दलम् 8-0 पराजितम्। अनेन विजयेन भारतम् 5 स्पर्धात्मिकायां श्रृंखलायां 1-0 इत्यंतरेण अग्रे अस्ति। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7 बजे हैं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुबह। पहले सुनिए ये संदेश।
2: दिवाली से पहले दिवाली धमाका,
3: स्वराज 735 FEE रोटावेटर के साथ मात्र 7,21,000 रुपए में, नियम व शर्तें लागू।
2: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
3: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में, राज ट्रैक्टर्स खेमलासा रोड बीना,
2: माणिक मोटर्स छोटा करीला सागर।
3: संपर्क करें 8720096977
2: 8720099677।
1: कार्यक्रम सुबह सुबह सुन रहे सभी श्रोताओं को विजेश रिचारिया का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुबह सुबह में। श्रोताओं, अभी पितृपक्ष चल रहा है। सनातन संस्कृति में हमारे पूर्वजों, जो आज हमारे बीच नहीं है, उनकी तृप्ति के लिए, प्रसन्नता के लिए विभिन्न उपाय कार्य किए जाते हैं। अधिकांश लोग बताए गए नियमों का पालन बड़ी सावधानी से करते हैं। अपने पूर्वजों के प्रति उनका सद्भाव, सम्मान की भावना और कृतज्ञता साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन यही भाव उनके रहते अगर उन्हें मिला होगा तो निश्चित ही वे तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे। लेकिन एक और भी पक्ष है जो देखने को मिलता है। दिनों दिन वृद्धाश्रमों और उनमें पहुंचने वालों की संख्या

परिवार की एकलता एकाकीपन का रूप लेने लगी है क्या, या फिर मानवीय संवेदनाएं संकुचित होने लगी हैं? कारण जो भी हो, तथा कथित अपनों से दूर होकर भी तो उन्हें अपने और अपनापन मिल सकता है ना, क्योंकि वो वहां तक पहुंच गए, इसमें तो हम कुछ नहीं कर पाया, शायद कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें अकेलापन महसूस ना हो, एकाकीपन उन्हें महसूस ना हो, ना लगे, ऐसा कुछ यत्न हम कर सकते हैं। समाज से, हम से अपनापन तो मिल सकता है ना, थोड़ा कठिन है लेकिन शायद असंभव नहीं है। हम चाहे तो थोड़ा समय उनके नाम पर निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, और ये सोच बढ़ाकर कारवा बनाया जा सकता है। क्योंकि हमारे आसपास कहीं भी अगर कोई वृद्धाश्रम है तो उसके लिए एक दिन कुछ समय हम तय कर सकते हैं कि हम कुछ समय के लिए वहां जाएंगे, वहां जो लोग हैं उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे। संवेदनशील लोगों की कमी अभी भी नहीं है, बहुत है, बस पहल करने की और आगे बढ़ने की बस देर है। हमारा अतीत, हमारे बुजुर्ग, हमारे सुनहरे भविष्य की नींव है, जिसकी देखभाल और मजबूती का दायित्व हमारा है। यह जिम्मेदारी हमें ही उठानी होगी ताकि वो हमारी नींव कमजोर ना पड़े, उदास ना रहे, अप्रसन्न ना हो। हम उनके साथ बैठकर उनका दुख भी बांट सकते हैं और प्रसन्नता, खुशी उनके लिए लेकर आ सकते हैं। तो सुबह सुबह में आज के लिए बस इतना ही।

0: हमारा वक्त हुआ है 7:05। सुनते हैं कार्यक्रम कृषि संकेत। पशुओं का किल्लियों से बचाव और देखभाल, विशेषज्ञ हैं डॉक्टर बी के शर्मा।
1: मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपकी पशुशाला है उसमें आप अधिकांशतः सूखा रखें और उसमें एक स्लोप जरूर रखें। स्लोप के बाद आपको हर हफ्ते में उसमें चूना, सूखा चूना डालें और दरारों को बंद कर दें। या फिर दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, यदि हम किल्ली पशु के शरीर पे है और उधर हम इलाज करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट पशु को भी आएगा। तो हमारा क्या है, किल्ली का जो साइकिल होता है कि इनकी जो प्रजनन होता है वो अपनी पशुशाला की अन्य जगह जो दरारें होती हैं उसमें होता है। तो यदि आप उसमें गोबर में 1 लीटर फिनाइल, 2 लीटर के लगभग गोबर और 3 लीटर के लगभग पानी आप एक बाल्टी में ले लें और सारी दरारों में उसका लेप कर दें। जैसे अपन खलियान नहीं लीपते ना, तो वो दरारें बंद हो जाएंगी तो वहां पर उसका अंडा मर जाएगा। तो एकदम जो ग्रोथ बहुत ज्यादा आती है किल्लियों की वो वहां पर हम रोक देंगे। वो वहां पर हम ऐसी दवाई का भी उपयोग कर सकते हैं, ज्यादा मात्रा में अपन फिनाइल लेके भी कर सकते हैं, क्योंकि गाय को तो चाटना नहीं है जमीन में और दरारों में चली जाएगी। अच्छा, दूसरा गाय के लिए तो उसके लिए एक आइवरमेक्टिन करके इंजेक्शन आता है, कई कंपनियों का है, वो लगवा सकते हैं। तो 3 महीने तक आपके लिए सुरक्षित भी है और 1 ml पर 50 kg के हिसाब से उसमें आप इंजेक्शन लगवा लें। या फिर मार्केट में एक दवा आती है जो पीठ पर डालने की होती है, उससे चाटने से कोई नुकसान नहीं होता। सींग के पीछे से गर्दन से लेके पूंछ तक एक लाइन बना दीजिए उसमें, तो ऐसी दवा बाजार में आती है। तो वो आप 30 ml ले लेंगे तो एक पशु के लिए ठीक है, और अगर आप 100 ml लेते हैं तो 3-4 पशु को आराम से हो जाएगी। दूसरा उपाय ये है कि नजदीकी आप पशु चिकित्सालय में जाके वहां से भी दवा ले सकते हैं। किल्लियों का विशेष ध्यान रखें और हरा चारा, अभी जो नया चारा आ रहा है जमीन में उसका बचाव रखें। आप ये लोभ में चारा ना खिलाएं कि बढ़िया हरा चारा खेत पे मिल गया है, तो एकदम बदलाव ना करें चारे में। अगर बदलना ही है तो धीरे धीरे कट्टी करके भूसे में मिला के दें, तो जो निमोनिया है, गलघोंटू है, ये जो रोग आता है उससे बचाव जरूर हो जाएगा। और वैक्सीनेशन भी आप लोग निश्चित रूप से करा लें। किल्ली यदि हम पशुशाला में उनको मारेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। शरीर पे आने के बाद हम शरीर पे इलाज करेंगे तो इलाज में हमारा पैसा भी ज्यादा लगेगा और पशु भी उतना स्वस्थ नहीं रहता है। तो किल्ली का अपन को उपचार तो निश्चित रूप से करना है। तो पशुशाला ऐसी ना हो जिसमें हमने देखा है गांव में कि कच्चा फर्श रहता है, गड्ढे हो जाते हैं, पानी भरा रहता है। तो अपन को उतार में, ढलान में अपने को पशुशाला रखना है और अधिक

0: समय में वो सूखी होना चाहिए। पशुओं का उपचार करके बाहर निकाल के उसमें इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। कई विधियां हैं किल्ली के उपचार की। इंजेक्शन आता है आइवरमेक्टिन, आप इसको लेके 1 ml 50 किलोग्राम के हिसाब से, जानवर के हिसाब से, जैसे सामान्य जो वजन है 300 केजी का होता है, तो करीब आपका ये 5 से 6 ml तक आपका, 6 और 7 ml आप लगवा दीजिए तो 3 महीने के लिए फ्री रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ साफ सफाई यदि आप पशुशाला की रखेंगे तो लंबे समय तक निश्चित रूप से आराम मिलेगा। और आजकल तो किल्ली के लिए बाजार में साबुन भी उपलब्ध है और अच्छी मेडिसिन भी उपलब्ध है, जो केवल उसकी पीठ पे डाल देंगे आप, बहुत सरल है लगाने में भी। पीठ के ऊपर रीढ़ की हड्डी पर एक लाइन आपको देना है, तो साइपरमेथ्रिन करके एक उसमें दवा आती है और एक आती है अमितराज, दोनों का अपन ऊपर से लेप कर सकते हैं, तो इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि पशु एक बार किल्ली जब लग जाती है तो बहुत कमजोर हो जाता है, उसकी हम भरपाई नहीं कर पाते हैं। आपका पशु आपने सुबह छोड़ा और आपके आसपास खेत पे गया, तो निश्चित रूप से वो पूरा पेट भर के हरा चारा खा के आएगा, और शाम को जब आप भूसा रखेंगे तो वो बिल्कुल नहीं चरेगा, तो उसमें क्या होगा, सर्दी जरूर होती है फिर। तो ये रखना है कि चारा आप काट के लाएं और उसकी कुट्टी करके भूसे में मिला के ही दें। दूसरा एक हम पशुपालकों से बताना चाहेंगे कि आप लोग गलघोंटू का जो रोग होता है उसका वैक्सीनेशन निकटतम पशु चिकित्सालय में जाके आप कहिए तो वो वहां से लगा देंगे, तो फिर आपका ये निमोनिया से बचाव जरूर हो जाएगा।
1: ये था कार्यक्रम कृषि संकेत, आकाशवाणी के सागर से आपने सुना। सुबह के 7:10 होने को है। प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे भोपाल से बस कुछ ही देर में।
2: विजिट अवश्य करें।
3: 50 वर्षों से लगा

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति आज भारत मंडपम में समृद्ध शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दुर्गावती टाइगर रिजर्व में कूनों से लाए गए दो चीतों को विमुक्त करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर आज देश भर में सेवा ज्योति यात्रा निकाली जाएगी और भोपाल में आज से 4 दिवसीय मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट की शुरुआत होगी। 34 देशों और 15 राज्यों के 600 से ज्यादा प्रतिनिधि होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी प्रहला आज भारत मंडपम में दूसरे भारत EFTA समृद्ध शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते की पहली वर्षगांठ पर हो रहा है। इस सम्मेलन में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंकस्टीन के अधिकारी, उद्योगपति और कारोबारी शामिल होंगे। 10 खरब डॉलर की निवेश साझेदारी और भारत में 10 लाख रोजगार विषय पर निवेश, तकनीकी नवाचार और व्यापार बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में कूनों से लाए गए दो चीतों को विमुक्त करेंगे। इसके साथ ही यह प्रदेश में चीतों का तीसरा आवास बन जाएगा, जबकि कूनों और गांधी सागर में पहले से ही चीते मौजूद हैं। करीब 439 हेक्टेयर क्षेत्र में चीतों के लिए सुरक्षित आवास और निगरानी की व्यवस्था की गई है। चीतों के आने से सागर बुंदेलखंड में वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद है। हाल ही में कूनों में 5 नए शावकों के जन्म के बाद देश में चीतों की संख्या बढ़कर अब 60 हो गई है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आज से 4 दिवसीय मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट शुरू होगा।

0: 34 देशों के 100 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय और 15 राज्यों के 180 घरेलू टूर ऑपरेटर समेत 600 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस मार्ट के दौरान 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्तावों और समझौतों को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसमें सीहोर का करीब 850 करोड़ रुपए का मेगा निवेश भी शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एसएमई ग्रोथ फंड की स्थापना को मंजूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी देकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक इससे कारोबार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए वित्तीय मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर आज देशभर में सेवा ज्योति यात्रा निकाली जाएंगी। प्रदेश में भी इसके लेकर खास तैयारियां की गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना में सेवा ज्योति कलश यात्रा के जिला स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं सुबह 9:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली सभा को भी संबोधित करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज के लिए पंजीयन कल से शुरू हो गया है। इसे लेकर मंत्रालय में मंत्री समूह की बैठक हुई। इस अभियान में विद्यार्थी, युवा, स्टार्टअप, एमएसएमई, किसान, कारीगर और ग्रामीण जनजातीय नवाचारकर्ता स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए अपने आइडिया दे सकेंगे। राज्य स्तरीय ग्रैंड फिनाले दिसंबर में प्रस्तावित है, जिसके बाद चयनित प्रतिभागी अहमदाबाद में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्ष 2027 को प्रदेश में युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। कल मुख्यमंत्री ने भोपाल में आयोजित सीएम यूथ कॉन्क्लेव में 12 नए मेडिकल कॉलेज और रोजगार परक कोर्स के लिए 12 नए विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की। डॉ यादव ने कहा कि 1,00,000 युवाओं को कौशल उन्नयन से जोड़ा जाएगा और सभी जिलों के सरकारी कॉलेजों में प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। युवाओं के स्टार्टअप आइडिया को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए का आइडिया फंड भी बनाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स में प्रदेश के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में 11 पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है।
2: भोपाल में हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जहां से निकले बच्चों ने 11 पुरस्कार एशियाड में जीते, जिसमें 5 गोल्ड मेडल है। हमने एजुकेशन में स्पोर्ट्स को एक सब्जेक्ट के रूप में भी लिया। स्पोर्ट्स के कोच, पढ़ाने वाले सारे फैकल्टी, उनके प्रमोशन की भी व्यवस्था की। 230 विधानसभा हर जगह स्टेडियम बनाने का निर्णय किया है।
0: वहीं मुख्यमंत्री ने 2029 तक प्रदेश को नशा मुक्त करने के संकल्प की बात भी कही।
2: नशे से परिवार के परिवार बिगड़ जाते हैं, युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। हमारी सरकार, हमने निर्णय किया 2029 तक हम पूरे प्रदेश को और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश को नशे से मुक्त कराएंगे।
0: प्रदेश में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत कल प्रदेश भर में बच्चों, किशोरों और महिलाओं को कृमिनाशक दवा दी गई। 1 से 19 साल तक के करीब 1,12,00,000 बच्चों और किशोरों के साथ साथ 1,00,000 महिलाओं को एल्बेंडाजोल की निर्धारित खुराक दी गई। यह अभियान कृमि संक्रमण, पोषण संबंधी समस्याओं और एनीमिया के जोखिम को कम करने के लिए चलाया जा रहा है। वहीं इसी के तहत जबलपुर के शासकीय पंडित लज्जाशंकर झा मॉडल स्कूल और सतना के कन्याधवारी स्कूल तथा श्योपुर के विजयपुर में भी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाई गई। राज्यपाल मनोज पटेल ने कहा है कि नाड़ी विश्लेषण भारत की समृद्ध चिकित्सकीय ज्ञान परंपरा का हिस्सा है और इसे आधुनिक तकनीकी व आयुष विज्ञान से जोड़ने पर काम होना चाहिए। भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि नाड़ी विश्लेषण कम खर्चीली और बिना किसी शारीरिक नुकसान वाली जांच पद्धति है, जिसका ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है। कर्मयोगी भारत की ओर से नागरिक केंद्रित शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आज सेवा भाव विषय पर विशेष ऑनलाइन सत्र आयोजित किया जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होने वाले इस सत्र का संचालन नीति आयोग के सदस्य डॉ आर बालासुब्रमण्यम करेंगे, जिसमें सरकारी कर्मचारियों में संवेदनशीलता, जवाबदेही और नागरिक केंद्रित सोच को बढ़ाने पर चर्चा होगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने कल मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मुलाकात कर 15 जनवरी को भोपाल में होने वाले सेना दिवस कार्यक्रम का आमंत्रण दिया। सेना दिवस पर भोपाल में मुख्य परेड, सैन्य प्रदर्शनी, शौर्य संध्या और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट डिस्प्ले सहित कई कार्यक्रम होंगे। मुख्य परेड भेल क्षेत्र में होगी, जबकि सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी जम्बूरी मैदान में लगाई जाएगी।

प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा है कि बाल विवाह रोकने के लिए सरकार, प्रशासन और समाज को मिलकर काम करना होगा। भोपाल में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की राज्य स्तरीय कार्यशाला में उन्होंने कहा कि प्रदेश में 35,000 से ज्यादा अधिकारियों का मैदानी तंत्र तैयार किया गया है। अब बाल विवाह वाले हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर वहां पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने सभी मतदान केंद्रों पर अगले 3 दिनों तक विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। इन शिविरों में पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे और फॉर्म 6 के अलावा कोई घोषणा पत्र नहीं लिया जाएगा। मतदाता ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in या ECI नेट मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश से मानसून विदा हो चुका है, लेकिन बारिश का सिस्टम अभी सक्रिय है। पूर्वी हिस्से में पिछले 2 दिनों से बादल और रिमझिम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज जबलपुर, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, कटनी, उमरिया, शहडोल, मंडला और बालाघाट समेत 16 जिलों में अगले 24 घंटे में बारिश हो सकती है। अब रुख करते हैं खेल की खबर का। भारत ने कल लखनऊ में खेले गए पहले T20 मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.1 ओवर में 171 रन बनाए, जिसमें शर्फन रदरफोर्ड ने 56 और शाई होप ने 52 रन की पारी खेली, जिसके जवाब में भारत ने मात्र 14.4 ओवर में ही 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 और ईशान किशन ने 37 रन बनाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर के उत्कृष्ट विद्यालय खेल मैदान में सांसद सुधीर गुप्ता ने कल 70वीं राज्य स्तरीय शालेय अंडर 14 बालक हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। नरसिंहपुर के गाडरवारा शहर के वितरण केंद्र परिसर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के पंजीयन के उद्देश्य से सेवा सेतु कैंप का आयोजन किया गया। और कटनी के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर में आयोजित जिला स्तरीय मोगली बाल उत्सव से कनिष्ठ और वरिष्ठ वर्ग के 4 विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति आज भारत मंडपम में समृद्ध शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दुर्गावती टाइगर रिजर्व में कूलों से लाए गए 2 चीतों को विमुक्त करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर आज देश भर में सेवा ज्योति यात्रा निकलेगी और भोपाल में आज से 4 दिवसीय मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट की शुरुआत होगी। 34 देशों और 15 राज्यों के 600 से ज्यादा प्रतिनिधि होंगे शामिल। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

यह है आकाशवाणी का सागर केंद्र एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:20 हुए हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। मेरा सुहाग इस फिल्म का ये गाना है, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, गीत और संगीत रवि का।

रवि ने ये गीत लिखा था, रवि ने ही इसकी धुन बनाई थी, आवाज किशोर कुमार और आशा भोसले और साथियों की थी। फिल्म का नाम मेरा सुहाग। और इस गीत को सुनने के लिए व्हाट्सएप संदेश हमें भेजे थे इन हमारे सभी श्रोताओं ने, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता और क्षिप्रा गुप्ता, मन की लोर में छत्तीसगढ़ से नारायण खांडे, रजनी खांडे, तुषार खांडे, समीर खांडे, लोरमी चचेरी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मराजी मरावी, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुमार और अनुश्री श्याम कुमार, एक और ये संदेश हमें इसी गीत के लिए मिला था, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू, साजदा रानी और हिना कौशर, बोहरागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किंसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद पाकुड़ झारखंड से। और अब अगला गीत जो हम आपकी नजर करने जा रहे हैं उसको सुनने के लिए हमें संदेश भेजे हैं किबले गांव पुणे से

अंकिता कांबले सईदापुरकर, विजय कांबले सईदापुरकर, शौर्या और श्रेयस कांबले। वारणा शहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान, तेजस्वी चौहान भाई, इंदुरकर, शौर्या, श्रेयस और अंकिता और अनिकेत चौहान। एक ये संदेश हमें मिला है जो भेजा है इन्होंने कैदी मुड़ा रायगढ़ से, पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह और ऋषभ सिंह। मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से भी पुरुषोत्तम सिंह ने गाना सुनना चाहा था। माल टेकड़ी अमरावती से प्रशांत ढेकरे, वर्षा ढेकरे, श्रद्धा ढेकरे। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल और विशाल सपकाल। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं एक फूल दो माली फिल्म का ये गाना। आवाज आशा भोसले की है और साथियों की। ये गीत भी लिखा है रवि ने और धुन रवि ने ही तैयार की है।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दिवाली से पहले दिवाली धमाका,
2: अपने पुराने टू व्हील ड्राइव को फोर व्हील ड्राइव से करें अपडेट, खेती को दे नई दिशा, नियम व शर्तें लागू।
1: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
2: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स, खेमलासा रोड बीना,
1: माणिक मोटर्स, छोटा करीला, सागर।
2: संपर्क करें 8720096977,
1: 8720099677।
3: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम में नाराज फिल्म का ये गाना। कुमार सानू की आवाज है, कतील सिफाई ने गीत लिखा है और धुन तैयार की है अनु मलिक ने।

नवरतन हाता वाड़ी हाट पूर्णिया बिहार से ममता रानी छवि अनोखी अर्पिता लाडो दीक्षा देव देवांशु और डब्लू जी मेन रोड फारबिसगंज बिहार से प्रकाश कुमार पप्पू नैतिक पीहू कुमार बिमल महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी तुलसी और दिशा गोस्वामी नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हेना हर्षित और खुशी गोस्वामी एक और ये संदेश हमें मिला है सतीश मिगलानी लखविंदर संधु महावीर संधु विवियन मिगलानी मलोट कैंप पंजाब से। इसी गीत को सुनने के लिए संदेश मिला था मुंगी पैठण महाराष्ट्र से बाबा साहेब कंगणकर साखरबाई कंगणकर परमेश्वरी रोहिणी।

श्रावणी ईश्वरी कंगणकर परिवार, रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दवीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, बेबी फातिमा गाजी और सरिता गौतम। और अब अगला गीत जिसे सुनना चाहते हैं ये सभी श्रोता, करणवीर हाउस भुजो केचनिया बटिंडा से परम सिंह जोड़ा, मंजीत जोड़ा, करणवीर करण, दफिंदर बरिंदर, कुलदीप सिमू एकम दमन अभिजोत, उच्च भट्टी विलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, सिवन्या गोस्वामी और रोहतक से पीयूष सिक्का, कुनिका सिक्का, डुग्गू सिक्का, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरी अंसारी, नौरी अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं जब जब फूल खिले फिल्म का गाना, रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में।

इसी गीत के साथ करके मन चाहे गीत अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण और अब वक्त है कार्यक्रम संगीत सरिता का।

0: शुभा मुद्गल और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना।
1: दिवाली से पहले दिवाली धमाका,
2: स्वराज 733 FE रोटावेटर के साथ मात्र 6,49,000 रुपए में, नियम व शर्तें लागू।
1: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
2: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स खेमलासा रोड बीना,
1: माणिक मोटर्स छोटा करीला सागर।
2: संपर्क करें 8720096977
1: 8720096777। गुरुवार सुबह 10:55 पर सुनिए दीपक मेमोरियल एकेडमी मकरोनिया सागर द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम दीपक की ज्ञान ज्योत।
3: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर।

यादें हमारी धरोहर हैं, यादें हमारे दिलों में बसती हैं, यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से हर माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10:05 से।

साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी के महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।

0: बदली स्टाइल गया है पगल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड बेस ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: और अब आइए सुनते हैं सपना अवस्थी की आवाज में ये गीत। गीत और संगीत पीके मिश्रा का।

और अब इसी के साथ कार्यक्रम संगीत सरिता समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को है, दिल्ली से होगा अगला प्रसारण, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया। पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। कहा, प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और भारत ने पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 25 वर्ष का कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा जनसेवा, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की भावना के साथ काम किया है। उन्होंने मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के 10 प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया। पहला बिंदु गुजरात से पूरे देश तक विकास के दृष्टिकोण का विस्तार है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने गुजरात में अपने कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से कई बदलाव किए, जिसके लिए उन्हें दुनिया भर में सम्मान मिला।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर

0: की समुद्री क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर आर्थिक विकास को गति देने पर जोर दिया है।
1: भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है।
0: समुद्र और जल मार्ग गोवा की पहचान का अभिन्न हिस्सा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सागरमाला कार्यक्रम के तहत राज्य में बंदरगाहों और जल मार्गों के विकास के साथ साथ क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। गोवा के कैप्टन ऑफ पोर्ट्स ऑक्टोवियो रोड्रिग्स ने आकाशवाणी को बताया कि सागरमाला के तहत राज्य में किस प्रकार की पहलें की जा रही हैं।
2: इट इज गोइंग टू चेंज मेनी जेटीज। नाउ सी अनदर 10 जेटीज वी आर गोइंग टू गेट ऑलरेडी अप्रूव्ड और ओनली थिंग नाउ वी हैव नीड टू इंस्टॉल इट। दे आर ऑल फ्लोटिंग जेटीज व्हिच विल टेक केयर ऑफ द टूरिज्म एक्टिविटीज ओवर देयर, पैसेंजर्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू आल्सो कम अप विद द ऑटोमेटिक।
0: गोवा में अब तक सागरमाला के तहत 10 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिन पर करीब 841 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। वहीं करीब 98 करोड़ रुपए की दो अन्य परियोजनाएं फिलहाल कार्यान्वयन के चरण में हैं। इन परियोजनाओं से गोवा के बंदरगाहों और जल मार्गों का आधुनिकीकरण हो रहा है और उनकी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल संभव हो रहा है। साथ ही क्रूज पर्यटन और तटीय अर्थव्यवस्था के विस्तार की नई संभावनाएं भी खुल रही हैं। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
3: सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुमत कार्यों की सूची अधिसूचित कर दी है। नए ग्रामीण कार्य ढांचे के अंतर्गत कुल 375 कार्यों को अनुमत किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि नई सूची में पहले के ढांचे के तहत शामिल 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
4: इन कार्यों को चार विषयगत स्तंभों जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा तथा अत्यधिक मौसम की घटनाओं और आपदा तैयारी के लिए विशेष कार्य के तहत पुनर्गठित किया गया है। नया ढांचा सिर्फ परिसंपत्तियों के पारंपरिक प्रकारों की सूची तक सीमित रहने के बजाय मजदूरी रोजगार को टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और विकास परिणामों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। प्रत्येक कार्य की शुरुआत विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत जमीनी स्तर पर होने वाली विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से होगी, जिसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इसे विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत में ये विचार प्रकट किए।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने अल्पविकसित और विकासशील देशों और बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौतियों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समस्या के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की आवश्यकता है। जीएसएमए बोर्ड के सदस्यों ने डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी में वैश्विक नेता के रूप में भारत के उदय पर चर्चा की। बैठक में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार राज्य मंत्री डॉ. पिम्मासानी चंद्रशेखर, जीएसएमए बोर्ड के सदस्य और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
3: इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष इसका विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाया जाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 1.5 लाख से अधिक लोग, 500 से अधिक प्रदर्शक और साझेदार, 600 से अधिक स्टार्टअप और 900 से ज्यादा विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: तो शुरू करें।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जालिम लोशन,
2: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
1: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए लगभग 3.5 साल बाद ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में आरबीआई की नीतिगत रेपो दर 5.25% है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के हिमाचल प्रदेश दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करेंगी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करने का कार्यक्रम है। वे सुरंग के उत्तर और दक्षिण दोनों पोर्टल पर जाएंगी और इस ऐतिहासिक टनल के बारे में सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से जानकारी हासिल करेंगी। दोपहर बाद राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मनाली, अटल टनल रोहतांग और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, मनाली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब प्रत्येक व्यक्ति की आवाज सुनी जाए। श्री बिरला ने पूर्वोरिम में गोवा विधानसभा परिसर के रजत जयंती समारोह में ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: गोवा ने अपनी विरासत और प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए देश की आर्थिक प्रगति के साथ कदम मिलाया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सहमति और असहमति दोनों लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। आजादी के बाद से भारत का लोकतंत्र इसलिए मजबूत हुआ है क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं ने विभिन्न विचारों, मतों और दृष्टिकोण को साथ लाने का काम किया है। श्री बिरला ने कहा कि देश और विदेश में आपदा के समय भारत के लोग हमेशा एकजुट होकर खड़े रहे हैं। उन्होंने युवाओं से लोकतांत्रिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी की अपील की।
0: विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक कल विरोध मार्च निकाला। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर जाते समय सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक दिया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों ने सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। बाद में शाम को SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आकाशवाणी भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 क्रिकेट मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। कल रात लखनऊ में खेले गए मैच में भारत की ओर से नमन धीर ने 3 और अक्षर पटेल तथा कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। नोवाक जोकोविच ने पेचिंग में एलेक्स डी मिनोर के चोट के कारण फाइनल से हटने के बाद 7वीं बार चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है। ये जोकोविच के करियर का 102वां टूर स्तर का खिताब है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है देवेंद्र त्रिपाठी।
3: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 साल पूरे होने को अखबारों ने मुखपृष्ठ पर दिया है। उपलब्धि शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, मोदी का अनूठा रिकॉर्ड, लगातार सत्ता में 25 साल पूरे, कोई चुनाव नहीं हारे। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने दैनिक जागरण में लिखा है, असाधारण जनसेवक है प्रधानमंत्री मोदी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अमर उजाला में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलाव को संभव बनाया है, उन्होंने अपने कामों से यह दिखाया कि सार्वजनिक जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे हल न किया जा सके। छोटे उद्योगों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना, हिंदुस्तान की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रूपये के SME विकास कोष को दी मंजूरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस समेत 8 स्थानों पर CBI के छापे को दैनिक ट्रिब्यून ने सुर्खी बनाया है। पंजाब और हरियाणा कोर्ट के निर्देश और प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री के ओएसडी सहित 6 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित होंगे अब नए वायुसेना प्रमुख। लोकसत्य में एयर मार्शल मौजूदा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे को प्रमुखता दी गई है। विश्व बैंक ने भारत का वृद्धि अनुमान बढ़ाया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया।
0: धन्यवाद देवेंद्र। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया। पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। कहा, प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। और मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत में कुछ बुंदेली लोक गीत। ये पहला लोक गीत है हल्लन भाई और साथियों की आवाजों में।

0: हलन भाई की आवाज में ये लोक भजन अभी आपने सुना।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: करमा गरम 287 चाय और साथ में मिस्टर 287 क्रिस्पी कुकीज, चाहे सुबह की शुरुआत हो या शाम का छोटा सा ब्रेक,
2: मिस्टर 287 कुकीज और 287 चाय,
1: स्वाद का परफेक्ट कॉम्बिनेशन।
3: और अब आइए सुनते हैं चंद्रभूषण पाठक की आवाज में ये लोक गीत।
4: रजऊ बोल लो नौने

0: दिवाली से पहले दिवाली धमाका।
1: स्वराज 742 XT सिर्फ 1,21,000 के डाउन पेमेंट पर, नियम व शर्तें लागू।
0: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
1: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स खेमलासा रोड बीना,
0: माणिक मोटर्स छोटा करीला सागर।
1: संपर्क करें 8720096977
0: 8720096977।
2: और अब आइए सुनते हैं ये लोक गीत केशव सुल्लेरे की आवाज में।

0: गुरुवार सुबह 10:55 पर सुनिए दीपक मेमोरियल एकेडमी मकरोनिया सागर द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम दीपक की ज्ञान ज्योत।
1: और अब आइए सुनते हैं ये लोक गीत सुरेंद्र सिंह परमार और साथियों की आवाजों में।
2: आज काल की चलन चली जा, आज

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच।

बढ़ेगा आपका व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में ये लोकगीत अशोक गुप्ता की आवाज में।

अशोक गुप्ता के गाए इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोक संगीत अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण FM 102.6 MHz पर। सुबह के 8:45 हुए हैं और आइए सुनते हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। बेताब फिल्म का ये गाना है, शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज है। आनंद बख्शी ने गीत लिखा है, धुन तैयार की है राहुल देव बर्मन ने।

श्रोताओं, एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। आज दिन बुधवार को हेलो ग्राम सभा की रिकॉर्डिंग दोपहर 1 बजे से की जाएगी। श्रोता, इस कार्यक्रम में फोन लगाकर स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से कृषि और पशुपालन से संबंधित समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 240-845। सागर का एसटीडी कोड है 07582, यानी 07582। और फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 240-845। तो श्रोताओ, हमें इंतजार रहेगा आपके फोन कॉल्स का आज दोपहर 1 बजे से। सूचना समाप्त हुई।

0: और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब समाप्त हुआ।
1: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770 43 22 97।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण FM 102.6 MHz पर सुबह के 9 बजने को है। अगला प्रसारण मुंबई से होगा बस कुछ ही देर में।

ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक और आपने ट्यून किया है विविध भारती। आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम सनक, आवाज श्रेया घोषाल की, रश्मि विराग की रचना है और जीत गांगुली का संगीत।

0: साथियों, क्या आपको पता है कपास का एक छोटा सा पौधा हमारे जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है? शायद हम अक्सर इस पर ध्यान नहीं देते। खेतों में उगने वाला यही सफेद रेशा हमारे कपड़ों से लेकर कई जरूरी उत्पादों तक पहुंचता है और किसानों तथा लाखों लोगों की आजीविका का आधार बनता है। अब आप सोच रहे होंगे, आज अचानक इस कपास की बात क्यों? तो ऐसा है कि 7 अक्टूबर को कपास यानी कि विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस इसी सफेद रेशे से जुड़े पूरे संसार को समझने का अवसर देता है, साथ ही ये कपास की खेती को अधिक टिकाऊ बनाने और किसानों के हितों पर ध्यान देने की भी जरूरत को याद दिलाता है। आइए सुनते हैं अगला गीत, पर उससे पहले ये संदेश।
1: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी।
1: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी, हाँ।
1: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
1: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
2: है ना, बोलो, बोलो।
1: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
1: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
0: तो इंस्टाग्राम पर विविध भारती के पेज को फॉलो किया या नहीं? अगर नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। और आपको सुनवाते हैं सूर्यवंशी फिल्म का ये गीत, अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाजों में। रचना रश्मि विराग की और धुन बनाई है कौशिक गुड्डू आकाश ने।

आपने ट्यून किया है विविध भारती, कार्यक्रम है चित्रलोक। साथियों, कुछ बातें कहने के लिए कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं और कुछ एहसास सिर्फ संगीत कह देता है। तो ऐसे ही खूबसूरत एहसास के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं शिद्दत फिल्म का गीत अंकित तिवारी की आवाज़ में। कुंवर जुनेजा ने इसे लिखा है और गौरव दास गुप्ता का संगीत।

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, इस फिल्म का गीत सुनिए वरुण जैन और राघव चैतन्य की आवाजों में। इंद्रनील ने इसे लिखा है, सचिन जिगर का संगीत।

आइए अब आपको सुनवाते हैं भूल भुलैया 3। इस फिल्म का गीत आदित्य रिखारी तुलसी कुमार की आवाजों में, आदित्य रिखारी ने इसे लिखा है और संगीत है लिजो सरिजो का।

आदित्य रिखारी और लीजो जॉर्ज डीजे चीट्स इनकी संगीत निर्देशन में ये गीत आपने सुना फिल्म भूल भुलैया 3 से। इसी के साथ दीजिए चित्रलोक कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को इजाजत। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवां बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

आज, जबकि संगीत तकरीबन चोर में बदलता जा रहा है, गजलों का वो सुनहरा दौर, गजलों की वो रोशन महफिलें बार बार याद आती हैं। हमारे जहन में अक्सर ये सवाल उठता है, वो शम्मा क्यों मद्धम पड़ गई।

दरअसल ये जमाना तेज रफ्तार हो गया। लोगों के भीतर वो सब्र नहीं रहा जो गजल सुनने के लिए लाजमी है। आइए आज के इन लम्हों को यादगार बना दें अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर की याद से।

0: जो हम।
1: अख्तरी भाई फैजाबादी का जन्म 7 अक्टूबर 1914 को फैजाबाद में हुआ था। बचपन से संगीत की तरफ रुझान था, परिवार इसके खिलाफ था, लेकिन चाचा ने साथ दिया। बेगम अख्तर ने फैजाबाद में सरंगी के उस्ताद ईमान खां और अता मोहम्मद खां से संगीत की शुरुआती तालीम ली। इसके बाद उन्होंने मोहम्मद खान और अब्दुल वहीद खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखा। बचपन की एक बहुत ही यादगार घटना है। उन दिनों अख्तरी बाई सही सुर नहीं लगा पाती थीं। उनके गुरु ने इसके बारे में कई बार सिखाया और जब वो सीख नहीं पाईं तो डांट दिया। उसके बाद बेगम अख्तर रोने लगीं और कहा, हमसे नहीं बनता नाना जी, मैं गाना नहीं सीख पाऊंगी। तब उनके उस्ताद ने कहा, बिटिया इतने में हार मान ली? नहीं बिट्टू, ऐसे हिम्मत नहीं हारते मेरी बहादुर बिटिया, चलो एक बार फिर से सुर लगाने में जुट जाओ। उनकी ये बात सुनकर बेगम अख्तर ने रियाज शुरू किया और सही सुर लगाए।

तीस के दशक में जब बोलती फिल्मों का दौर आया तो बेगम अख्तर के सामने कोलकाता की ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी ने अपनी फिल्मों में अभिनय की पेशकश की। इस तरह सन 1933 में बेगम अख्तर ने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद मशहूर निर्देशक महबूब खान ने उन्हें सन 1942 में आई अपनी फिल्म रोटी की नायिका बनाया। इस फिल्म में चंद्रमोहन और शेख मुख्तार जैसे कलाकार थे। इस फिल्म का संगीत अनिल बिस्वास ने दिया था और फिल्म के तकरीबन 6 गीत बेगम अख्तर की आवाज में रिकॉर्ड किए गए।

सन 1945 में जब बेगम अख्तर की शोहरत अपने शबाब पर थी, तब उन्होंने इश्तियाक अहमद अब्बासी से निकाह कर लिया और अख्तरी बाई फैजाबादी बेगम अख्तर बन गईं। वो गायकी छोड़कर पर्दा नशी हो गईं। उन दिनों में वो बीमार रहने लगीं। डॉक्टरों ने बताया कि बीमारी की एक वजह यह है कि वो अपने पहले प्यार यानी गायकी से दूर हैं और उनके शौहर ने उन्हें प्रेरित किया। सन 1949 में एक बार फिर वो गायकी की दुनिया में लौटी और आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से गाना गाने लगी।

रेडियो में गाना शुरू हुआ तो बेगम अख्तर संगीत सम्मेलनों में जाने लगी। इस बीच फिल्मों में भी वापसी हुई। महान संगीतकार मदन मोहन के कहने पर बेगम अख्तर ने 1953 में प्रदर्शित फिल्म दाना पानी का एक गाना गाया।

सन 1954 में उन्होंने फिल्म एहसान का एक गाना गाया। सन 1958 में सत्यजीत रे की फिल्म जलसा घर में भी उन्होंने गाना

बेगम अख्तर मदन मोहन को तब से जानती थीं जब वो लखनऊ रेडियो स्टेशन पर थे। बेगम अख्तर दिल्ली आई हुई थीं और उन्होंने रेडियो पर मदन मोहन का एक गाना सुना। फिर आधी रात को बेगम अख्तर ने मदन मोहन को फोन किया और कहा कि वही गाना सुनाओ, कदर जाने ना। मदन मोहन ने फोन पर ही गजलों की रानी बेगम अख्तर को ये गाना सुनाया और करीब 22 मिनट तक मदन मोहन फोन पर ट्रंक कॉल के जमाने में बार बार ये गाना सुनवाते रहे और बेगम अख्तर सुनती रहीं।

0: बेगम अख्तर की सबसे बड़ी खासियत है उनका क्लासिकी गजलों को गाना और क्लासिकी अंदाज में गाना। गजलों की शुद्ध दुनिया को उन्होंने बिल्कुल वैसा का वैसा रखा, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, नए साजों का कोई इस्तेमाल नहीं किया। बेगम अख्तर गजलों की दुनिया की एक क्लासिकी आवाज के तौर पर हमेशा बहुत इज्जत के साथ याद की जाती हैं।
1: बदलते हुए जमाने ने जहां हर चीज को कुछ नयापन दिया, वहां मौसीकी ने भी नई कदरों की कद्र की है। मैं नएपन की मुखालिफ नहीं, लेकिन ये नयापन वहीं तक मुनासिब है जहां तक आज के फनकार और मौसीकार नएपन के चक्कर में तहजीब का दामन न छोड़ें। गजलें पहले भी गाई जाती थीं, आज भी गाई जाती हैं, मगर असल में गजल वही कहलाने की मुस्तहक है जिसमें गजल का रवायती अंदाज मौजूद हो। मिसाल के तौर पर गजल की ये बंदिश सुनिए जो मुझे बहुत पसंद है।

0: भारत सरकार ने बेगम अख्तर को सन 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया। सन 1972 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला और सन 1975 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
1: गजल में एक ऐसी कैफियत है और अच्छे शोरा की गजलों में तो सुभान अल्लाह सुभान, यानी सुन के तबीयत खुश हो जाती है। तो बताइए ये सिर्फ पढ़ के जो लुत्फ आता है और गाने के बाद इसमें क्या लुत्फ पैदा होगा कि अगर वो उस अंदाज से गाई जाए जिस तरह गजल गाया करते थे, तो मेरा ख्याल है कि इंसान बगैर रोए तो नहीं उठना चाहिए उसको।

ये था बेगम अख्तर की याद में हमारा विशेष कार्यक्रम। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।

0: आज के फनकार।
1: भोपाल से प्रस्तुत है छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश प्रजापति का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। छिंदवाड़ा और पांडुना जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की। जिले के चंद्रिकापुर में आंगन मिलन कार्यक्रम में महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य, टीकाकरण और महिला कल्याण योजनाओं की जानकारी दी गई। पोषण का संदेश देने के लिए विटामिन वाले अनाज से रंगोली भी सजाई गई। वहीं अमरवाड़ा में 15 वार्डों का सामूहिक आंगन मिलन हुआ, जहां विधायक कमलेश शाह ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। वहीं त्योहारी सीजन में मिलावट के खिलाफ भी प्रशासन सख्त है। छिंदवाड़ा के चांद क्षेत्र के ग्राम सटोटी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुड़ बनाने वाली एक इकाई पर कार्रवाई की। जांच में पुराना और खराब गुड़ दोबारा तैयार कर बेचने की बात सामने आई। यूनिट के पास खाद्य लाइसेंस भी नहीं था, जिसके चलते यूनिट को सील कर दिया गया। अब बात उस वीरांगना की, जिसका साहस आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। रानी दुर्गावती की 502वीं जयंती पर छिंदवाड़ा में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजीव भवन में उनके पराक्रम और सेवा को याद कर श्रद्धांजलि दी गई, तो वहीं रानी दुर्गावती चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं दूसरी तरफ पांडुना के विकास को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जिले के विकास में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। जिला सलाहकार समिति की बैठक में रोजगार के लिए उद्योगों को बढ़ावा देने, कृषि और कौशल विकास का विस्तार करने और पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए। हनुमान लोक के अगले चरण के काम में तेजी लाने के लिए भी कहा गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी एक अच्छी पहल हुई है। छिंदवाड़ा के गोधुली वृद्धाश्रम परिसर में डे केयर सेंटर शुरू किया गया है। यहां बुजुर्गों के स्वास्थ्य परीक्षण, योग, ध्यान, मनोरंजन और आपसी संवाद की सुविधा रहेगी। इसके साथ ही डिजिटल और वित्तीय साक्षरता के जरिए उन्हें साइबर ठगी और ऑनलाइन लेन देन में सावधानियों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। अब बात करते हैं खेती और मौसम की। पांडुना में इस मानसून सत्र में अब तक 623.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि सामान्य से करीब 23% कम है। इसका असर खरीफ की बोनी पर भी पड़ा है और पिछले साल के मुकाबले बोनी क्षेत्र करीब 6.41% कम रहा। हालांकि ये कमी सूखे के 15% वाले संकेतक से नीचे है। कम बारिश को देखते हुए किसानों को अब रबी में कम पानी वाली फसलों पर जोर देने की सलाह दी गई है। कृषि विभाग ने सरसों, चना और अलसी को प्राथमिकता देने को कहा है। छिंदवाड़ा की कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा में भी किसानों को उपलब्ध नमी का बेहतर इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। वहीं सही किस्म के प्रमाणित बीज लेने और जीरो टिलेज तथा उतेरा पद्धति अपनाने की सलाह भी दी गई है। पानी की चिंता सिर्फ खेतों तक नहीं बल्कि आने वाली गर्मियों में पेयजल को लेकर भी है। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में गर्मी के लिए अभी से पेयजल और जल संरक्षण की तैयारी पर चर्चा की गई। सांसद विवेक बंटी साहू ने साल भर पेयजल उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अब छिंदवाड़ा की खूबसूरत वादियों की बात करते हैं। एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली 10 दिवसीय मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन सावरवानी और तामिया पहुंची। करीब 1520 किलोमीटर की इस यात्रा में देश विदेश के 22 राइडर्स शामिल हैं। सावरवानी में राइडर्स ने होम स्टे और स्थानीय लोक नृत्य का आनंद लिया, जबकि तामिया में पातालकोट समेत दूसरे पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी ली। पर्यटन को एक नया रंग देने के लिए धूसावानी को एस्ट्रो विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां पर्यटक खुले आसमान के नीचे चांद, ग्रह और तारों को देख सकेंगे। स्थानीय 25 युवक युवतियों को प्रशिक्षण देकर एस्ट्रो गाइड बनाया जा रहा है। सेवा और स्वच्छता की बात करें तो गांधी जयंती पर छिंदवाड़ा में सेवा मेरा योगदान अभियान चलाया गया। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने जिला अस्पताल से फव्वारा चौक तक सफाई की। गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद पार्क में पौधरोपण किया गया। नुक्कड़ नाटक के जरिए स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त परिसर का संदेश दिया गया और बेहतर कार्य करने वाले स्वच्छता कर्मियों को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में माय भारत वॉलंटियर्स का प्रशिक्षण भी हुआ। युवाओं से स्वच्छता, पर्यावरण, शिक्षा, खेल, कौशल विकास और जनसेवा से जुड़े कामों में आगे बढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर एजुकेशन की। प्रदेश के कृषि संकाय के विद्यार्थियों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्नातक काउंसलिंग में प्रवेश का रास्ता आसान हुआ है। अब ABC और इंटर एग्रीकल्चर स्ट्रीम के विद्यार्थियों को भी प्रवेश का अवसर मिलेगा। इससे कृषि स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की राह आसान होगी। और आखिर में बात करते हैं जंगल, वन्यजीव और बच्चों की। वन्यजीव संरक्षण सप्ताह के तहत सांवरी और छिंदवाड़ा वन परिक्षेत्र के स्कूलों में बीते दिनों निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 120 बच्चों ने जंगल, वन्यजीव और इंसान के साथ प्रकृति के सह अस्तित्व को अपनी कल्पनाओं के जरिए कागज पर उतारा। छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों की रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

इससे पहले कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, आज दिन बुधवार को हेलो ग्राम सभा की रिकॉर्डिंग दोपहर 1 बजे से की जाएगी। श्रोता इस कार्यक्रम में फोन लगाकर स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से कृषि और पशुपालन संबंधित समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 240-845 और सागर का एसटीडी कोड है 07582 यानी 075582। फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 240-845। तो श्रोताओ, हमें इंतजार रहेगा आपके फोन कॉल्स का आज दोपहर 1 बजे से। और अब आइए सुनते हैं, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: नमस्कार श्रोताओं, हम हाजिर हैं आपका चहेता और पसंदीदा कार्यक्रम फोन करें गीत सुने लेकर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जय शेखर, और आइए लेते हैं ये पहला कॉल।
1: हेलो,
0: स्वागत है आपका फोन करें गीत सुने में।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: खैरा तलैया से अमृत लाल अहरवाल।
0: ये खैरा तलैया कहाँ पर है आपका?
1: सर जी बसिया कनेरा है, आपने देखा होगा।
0: हाँ,
1: उसी के पास है सर।
0: अच्छा, हम आपको मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी जगहों के नाम बताना चाहते हैं जहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपको पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे अच्छे जगहों का दर्शन करने मिल सकता है।
1: जी सर।
0: तो हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हम जाके घूम सकते हैं, तीर्थ स्थलों पर जा सकते हैं, वहाँ पर दर्शन है हम वो कर सकते हैं। तो ऐसी जगह में से आपको कौन सी जगह याद है?
1: जलंधर ज्वाला देवी मंदिर।
0: बिल्कुल, जलंधर भी है। और हम आपको उज्जैन के बारे में भी बताना चाहेंगे कि उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, और ये एक परिसर ही बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है।
1: जी सर।
0: और यहाँ की बहुत सारी चीजें खासियत रखती हैं, और साथ ही यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है।
1: जी सर।
0: 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक है उज्जैन के महाकालेश्वर।
1: जी सर।
0: तो जब भी मौका मिले तो ऐसी जगहों पर जरूर जाना चाहिए।
1: जी सर, जाना चाहेंगे, जब मौका मिलेगा तब अवश्य करके जाएंगे।
0: चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो इमरतलाल, हमें बताएं कि गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
1: तेरी मिट्टी में मिल जावा, केसरी।
0: चलिए इमरत भाई, हम आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म केसरी का ये गीत।

0: दिवाली से पहले दिवाली धमाका।
1: स्वराज 742 XT सिर्फ 1,21,000 के डाउन पेमेंट पर, नियम व शर्तें लागू।
0: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
1: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स खेमलासा रोड बीना,
0: माणिक मोटर्स छोटा करीला सागर।
1: संपर्क करें 8720096977
0: 8720099677।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: हेलो
2: जी, स्वागत है आपका फोन करेंगी सुने में।
1: नमस्कार जी।
2: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: मैं ग्राम पोस्ट बरेठी से बोल रहा हूँ, टुंडे अहरवार।
2: टुंडे भाई, हमें बताएं क्या करते हैं आप बरेठी में?
1: बरेठी में जो माने मजदूरी करते हैं सर।
2: अच्छी बात है, मेहनत मजदूरी करते हैं। हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत पर्यटन स्थल हैं जहां पर जब आप मजदूरी मेहनत करके थक जाते हैं तो हमारे नज़दीक ही कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां हमें घूमने जाने से हमें ज्ञान की वृद्धि होती है, मनोरंजन होता है और साथ में आध्यात्मिक शांति भी मिलती है।
1: सर जी, तो जैसे अपन कहीं जाओ तो तीर्थों में जाओ तो अच्छे अच्छे स्थानों पर जाना चाहिए।
2: हाँ, ऐतिहासिक जगह के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे जिसका नाम है खजुराहो। आप जानते ही होंगे कि ये छतरपुर जिले में स्थित है और ये मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। इनका निर्माण चंदेल राजाओं ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में करवाया था और ये स्थान टुंडे भाई अपनी उत्कृष्ट नागर शैली और सूक्ष्म नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। साथ ही आप जानते हैं कि वहां पर कंदरिया महादेव मंदिर भी है जहां पर लोग जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो हमारे मध्य प्रदेश में हैं और पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। कभी गए हैं आप क्या?
1: ना भी तो नहीं गए सर, मैं तो अभी हरिद्वार तरफ ही गए थे सर।
2: जब भी मौका मिले तो खजुराहो भी जरूर जाएं आप। मध्य प्रदेश के जो भी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं उन पर यात्रा जरूर करनी चाहिए।
1: जी।
2: बताएं गाना कौन सा सुनवाएं?
1: मोहम्मद रफी का गाना सुनवा दो सर। अच्छा सा,
2: हम आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर मोहम्मद रफी द्वारा गाया ये गीत।

0: हेलो
1: स्वागत है आपका फोन करेंगी सुने में।
0: सर, हम बोल रहे जड़ुआ खेड़ा से जितेंद्र।
1: जितेंद्र भाई कुछ अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं आप जड़ुआ खेड़ा में?
0: सर दुकान ही करे हैं छोटी सी, सो अपने भाई चलाते हैं।
1: अच्छा जितेंद्र भाई, जब भी हम अपने कामकाज से फुर्सत मिले, फ्री हो, तो कुछ यात्राएं जरूर करनी चाहिए, और दूर ना जाएं तो अपने मध्य प्रदेश में भी विश्व पटल पर स्थान रखने वाले कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर आप जाएंगे तो आपको आत्मिक शांति जरूर मिलती है।
0: जी
1: उनमें से हम आपको बता दें ओंकारेश्वर के बारे में। ओंकारेश्वर खंडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ एक ऐसा स्थल है जहां पर भगवान शिव का दूसरा ज्योतिर्लिंग स्थित है, और
0: जी
1: यहाँ की खासियत के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। इसका आकार ओम के जैसा दिखाई देता है, जिसके कारण इसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा है।
0: जी जी सर, जाने का तो बहुत होता है, मन मनो काम से भी तो फ्री नहीं हो पाते हैं और समय नहीं मिलता उतना।
1: अगर हमारे मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हम घूमना फिरना जरूर कर सकते हैं। ये हमें रिचार्ज कर देता है, हमें नए
0: जी
1: सिरे से ताकत देता है, ऊर्जा से भर देता है अगले काम करने के लिए।
0: जी सर,
1: तो आप जब भी मौका मिले तो जरूर जाइए।
0: जी सर।
1: तो बता दें जितेंद्र भाई, गाना कौन सा सुनवाएं?
0: गाना सर कूली मूवी को सुनवा दे, जो
1: कौन सा
0: कूली
1: वाला?
0: नंबर 1 का कौन भी सुनवा दीजिए।
1: आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: गर्मा गर्म 287 चाय और साथ में मिस्टर 287 क्रिस्पी कुकीज।
1: चाहे सुबह की शुरुआत हो या शाम का छोटा सा ब्रेक,
2: मिस्टर 287 कुकीज और 287 चाय
0: स्वाद का परफेक्ट कॉम्बिनेशन।
3: हेलो, नमस्ते सर।
4: नमस्कार, फोन करें गीत सुने में स्वागत करते हैं आपका। अपना नाम बताएं।
3: हमारा दीपेश साहु नाम है, वो खुराई से बोल रहे हैं।
4: कुछ अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं आप खुराई में?
3: खुराई में किराने की दुकान है जी।
4: अच्छा अच्छा, तो दीपेश भाई, इस बार जो मुद्दे की बात है उसमें हम आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थलों के बारे में जानकारी देने और लेने का काम कर रहे हैं। तो हम आपको बताएं कि जब भी हम काम करके फ्री हूँ तो कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाना चाहिए।
3: हाँ।
4: कभी गए हैं आप?
3: हाँ, गए हैं जी।
4: कहाँ गए थे?
3: गए थे।
4: अच्छा अच्छा, तो हम आपको बता हाँ। दें कि आप सांची भी जा सकते हैं और हाँ। सांची एक विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। रायसेन हाँ। जिले में स्थित सांची का महान बौद्ध स्तूप सम्राट अशोक द्वारा ईसा पूर्व में 3री शताब्दी में बनवाया गया था और ये भारत की सबसे प्राचीन पत्थर की संरचनाओं में से एक है और बौद्ध धर्म का ये प्रमुख केंद्र है। तो कभी दीपेश मौका मिले तो सांची आपसे बहुत ही नजदीक भी है, तो आप सांची जा सकते हैं। तो वहां से निकले होंगे कई बार?
3: गए तो हैं जी।
4: सांची होके आए हैं?
3: हुआ है।
4: कैसा लगा वहाँ पे?
3: अच्छा लगा।
4: दीपेश भाई हमें बताएं, गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
3: तेरे नाम को।
4: आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म तेरे नाम का ये गीत।

0: श्री सिद्धि विनायक अस्पताल उच्चतम तकनीक और अनुभवी डॉक्टर्स के साथ यहाँ उपलब्ध है सभी प्रकार के स्त्री रोगों का इलाज, जैसे बच्चेदानी का ऑपरेशन, डिलीवरी सुविधा, सीजर ऑपरेशन से डिलीवरी, स्तन में गठान और निसंतानता का किफायती व आधुनिक इलाज।
1: श्री सिद्धि विनायक अस्पताल, मेन तिली रोड, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, सागर।
2: हेलो
3: जी, स्वागत है आपका, फोन करेंगी सुने मैं।
2: जी भल्लू बोल रहा है सर।
3: भल्लू कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: बसिया गंगे।
3: भल्लू क्या करते हैं बसिया गंगे में?
2: किसानी करते हैं साहब।
3: बहुत ही अच्छी बात है। भल्लू कहीं घूमने गए हैं क्या आप?
2: घूमने वैसे अपने एमपी में इंदौर है जैसे।
3: हाँ हाँ,
2: उज्जैन है, तो ये सब घूमे हैं।
3: क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताना चाहेंगे जो ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से बहुत ही अच्छी जगह है।
2: अच्छा,
3: उसका नाम है ओरछा।
2: ओरछा
3: आपने सुना होगा नाम?
2: हाँ।
3: ये निवाड़ी जिले में बेतवा नदी के किनारे बसा है।
2: अच्छा।
3: और यहाँ मध्यकालीन भव्यता और महलों के लिए बहुत ही खूबसूरत इमारतें बनी हुई हैं।
2: जी।
3: और हम आपको बता दें कि ओरछा का राम राजा मंदिर ऐसा हाँ। अनोखा स्थान है जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है।
2: अच्छा।
3: और भल्लू भाई, यहाँ एक जहांगीर महल भी है।
2: जी जी।
3: और राजमहल भी प्रसिद्ध है, तो नजदीक भी है, एक दिन में जाके आ भी सकते हैं। तो ऐसे स्थलों पर अपने परिवार के साथ जाएं और घूमें, मानसिक और आत्मिक शांति भी मिलेगी।
2: बिल्कुल सर, जरूर जाएंगे।
3: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। तो भल्लू भाई बताएं, गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
2: गाना सर वो सुनवा दीजिए, तुम कितनी भोली है।
3: तो भल्लू भाई सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।

0: हेलो,
1: स्वागत है आपका फोन करेंगी सुने में।
0: हम नन्हीलाल पटेल बोल रहे हैं, गोर जहां से रायली रोड से। पहली बार लगो सर फोन करेगी सुनी में हम।
1: अच्छा।
0: सर 2005 से हम रेडियो सुन रहे हैं सर, जब हम 5वीं पढ़ते
1: अच्छा।
0: थे।
1: तो नन्हेलाल अपने बारे में बताएं कुछ, क्या कर रहे हैं आप गौर झामर में?
0: अरे सब्जी का धंधा करते हैं सर।
1: बहुत ही बढ़िया है। तो सब्जी को ताजा रखने के लिए क्या करते हैं आप?
0: अब ताजा हो गया, अपन तो तोड़ते आज तोरी कल बेच दई सर।
1: सब्जी जब पक जाती है तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, तो उसमें दवा का छिड़काव बिल्कुल भी ना करें।
0: दवाई तो अपन काम करते, किसान बाड़ी धंधे सर हम।
1: अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। नन्हेलाल भाई कहीं घूमने जाते हैं आप क्या?
0: हाँ सर, हम 3 साल हो गए सर चित्रकूट गए थे।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और हम मध्य प्रदेश के एक ऐसे ही तीर्थ स्थल और एक प्राकृतिक स्थल के बारे में बताना चाहेंगे, उसका नाम है अमरकंटक। ये पवित्र स्थान अमरकंटक नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल है। यानी यहाँ से तीन नदियाँ निकली हैं और यहाँ कपिल धारा, दुग्ध धारा जैसे सुंदर झरने हैं, प्राचीन मंदिर हैं, और ये एक इतनी अच्छी जगह है कि जहाँ पर आप परिवार के साथ हमेशा जा सकते हैं।
0: जी सर, भगवान मेरे श्रद्धा रहा है, वो है घाट भी अच्छा देखने
1: हाँ,
0: लायक
1: वो
0: है,
1: भी बहुत
0: अच्छा
1: ही
0: लगता
1: बढ़िया।
0: है। जी
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: सर,
1: चलिए बहुत ही अच्छी बात। तो घूमने जरूर जाएं आप।
0: जी सर,
1: तो नन्हे भाई बताएं गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
0: सर गाना वो सुनवा दे सर, एक मोहम्मद अजीज की गायक कलाकार की आवाज में कोई भी सुना दे सर आप
1: हम आपको
0: तो।
1: सुनवाते हैं मोहम्मद अजीज का गाया हुआ ये गीत।

0: नमस्कार सर।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका। फोन करेंगी सुने में
0: ग्राम पथरिया हाट से यशवंत सिंह कुर्मी सर, आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही सर।
1: चलिए, हमें भी खुशी होती है। यशवंत, क्या करते हैं आप वहाँ पे?
0: सर कुछ नहीं, एक छोटी सी समोसे की दुकान करे हैं।
1: अरे वाह, और समोसे बनाते समय क्या क्या सावधानी रखते हैं? और
0: अब अपन समोसे बनाते समय उसकी सावधानी रखते हैं, जैसे तेल है तो उसको अपने वो थोड़ी देर के लिए रखते हो, उसे अलग कर देते हैं, गर्म मसाले मिलाते हैं, सब्जी में मिलाते हैं सर।
1: बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने कि ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, बार बार इस्तेमाल नहीं करते तेल का।
0: जी सर।
1: यशवंत, कभी घूमने जाते हो कहीं?
0: जी सर।
1: कहाँ कहाँ घूम के आए?
0: सर अभी हम बागेश्वर धाम है, ओमकालेश्वर है, उज्जैन के ओमकालेश्वर है, ओरछा है।
1: हाँ,
0: कितनी जगह घूमे?
1: चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। ये भी बताना चाहेंगे, हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, प्राकृतिक स्थल हैं, जहाँ पर जाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है।
0: जी सर।
1: ग्वालियर में भी बहुत कुछ देखने को है, जबलपुर में भेड़ा घाट, धुआंधार जलप्रपात, सागर के पास राहतगढ़ है, बरमान हुए, ये जगह ऐसी है कि यहाँ बार बार जाने को मन करता है अगर एक बार हम होके आए तो।
0: जी सर।
1: तो हमें इन जगहों पर घूमना चाहिए।
0: जी सर बिल्कुल जाएंगे।
1: तो अब बताएं यशवंत भाई कि गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
0: मेरा दिल भी कितना पागल है।
1: आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म साजन का ये गीत।

तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी थे अरुण जायसवाल, और इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपके इस दोस्त जय शेखर ने। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम फोन करें गीत सुने का पुनः प्रसारण। श्रोताओं एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। आज दिन बुधवार को हेलो ग्राम सभा की रिकॉर्डिंग दोपहर 1 बजे से की जाएगी। श्रोता इस कार्यक्रम में फोन लगाकर स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से कृषि और पशुपालन से संबंधित समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 240-845-240-845 और सागर का एसटीडी कोड है 075-82-07582 और फोन नंबर भी एक बार फिर सुन लें 240-845। तो श्रोताओं हमें इंतजार रहेगा आपके फोन कॉल्स का आज दोपहर 1 बजे से। सूचना समाप्त हुई।
1: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी के महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण FM 102.6 MHz पर। 11 बजे हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी और अस्मा नाज अंसारी जी ने। लिखते हैं,
2: ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान उससे सबक लेकर संभल जाए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है साहू पारा सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू और दुलीचंद साहू जी का। वो लिखते हैं,
3: प्रिय उद्घोषक जी मन ला जय जोहार पहुँचे, आपके उमंग एनसीईआरटी कार्यक्रम ला ध्यान लगा के सुनथन, बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपर कोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी जी का।
2: और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी।
3: और छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू के साथ साथ शिवम साहू लिखते हैं, सादर नमस्कार,
2: मैं उमंग कार्यक्रम का नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें मनोरंजन तो होता ही है और हमें ज्ञान और सीख व प्रेरणा भी मिलती है। और सफल प्रस्तुति के लिए उमंग परिवार और अजीत जी और विमलेश जी को हार्दिक बधाई।
3: अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर संतोष कायंदे, डॉक्टर अशोक इंगले, डॉक्टर संतोष वावगे और श्री संजय देशमुख लिखते हैं,
2: CIET द्वारा प्रस्तुत उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है
3: जी।
2: कल उमंग कार्यक्रम में दृढ़ संकल्प की धनी अरुणिमा सिन्हा के बारे में जानकारी दी गई जो हमें बहुत अच्छी लगी। हम लोग अकोट जिला अकोला में स्थित श्री शिवाजी महाविद्यालय में अध्यापक हैं। महाविद्यालय में जाने के लिए हर दिन हमें 50 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। उमंग कार्यक्रम में दी जाने वाली रोचक जानकारी से हमारी हर दिन की यात्रा बहुत सुखद और आनंददायी बन जाती है।
3: आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम से न केवल हमारी यात्रा सुखद बनती है बल्कि उससे हमारा अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया भी बहुत प्रभावी बन जाती है। उमंग कार्यक्रम हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गया है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी, अजीत जी, विमलेश जी और पूरी उमंग टीम को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
3: श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार की
2: जी।
3: आज हम आपको एशिया के एक ऐसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो विमलेश जी जरा श्रोताओं को ये तो बताइए कि आज हम किस पुरस्कार की बात करेंगे।
2: अजीत जी आज हम बात करेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार की।
3: बिल्कुल सही,
2: लेकिन इस पुरस्कार के पीछे की कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा फिलीपींस के इतिहास में। तो आइए श्रोताओं शुरू करते हैं
3: मैग्सेसे पुरस्कार की कहानी। तो विमलेश जी पहला प्रश्न तो ये है कि इस पुरस्कार का नाम मैग्सेसे पुरस्कार क्यों पड़ा।
2: अजीत जी सचमुच ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल रेमोन मैग्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 31 अगस्त 1907 को फिलीपींस में हुआ था। वे अपने सरल जीवन, जनता से जुड़ाव और सार्वजनिक सेवा के लिए जाने जाते थे और जनता में बहुत लोकप्रिय थे
3: जी। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शासन में ईमानदारी और आम लोगों की समस्याओं पर बहुत ध्यान दिया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रश्न ये भी है कि उनके नाम पर पुरस्कार शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। इसके पीछे एक दुखद घटना है। 17 मार्च 1957 को एक विमान दुर्घटना में राष्ट्रपति रेमोन मैग्सेसे की मृत्यु हो गई। बहुत कम उम्र में उनका जीवन समाप्त हो गया।
3: और श्रोताओं उनकी स्मृति को जीवित रखने और एशिया में ऐसे लोगों को सम्मानित करने के उद्देश्य से 1957 में रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई। पहला पुरस्कार समारोह 1958 में हुआ, लेकिन विमलेश जी श्रोताओं को हम ये भी बताना चाहेंगे जरूर कि ये पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है।
2: अजीत जी ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने एशिया में समाज और मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो, जैसे
3: सामाजिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता,

0: नहीं होती कि उसे कितने लोग देख रहे हैं, बल्कि इस बात से होती है कि उससे कितने लोगों के जीवनों में सकारात्मक परिवर्तन आया।
1: तो अजीत जी, अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो क्या हमें किसी बड़े अवसर का इंतजार करना चाहिए?
0: बिल्कुल नहीं विमलेश जी, बिल्कुल नहीं। शुरुआत अपने आसपास से ही की जा सकती है।
1: एक बच्चा पढ़ाना,
0: दूसरी बात किसी जरूरतमंद की मदद करना,
1: पर्यावरण की रक्षा करना,
0: ईमानदारी से अपना काम करना
1: और समाज में सकारात्मक सोच फैलाना,
0: ये सभी छोटे छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
1: जी तो श्रोताओ, आज की कहानी हमें एक सुंदर संदेश देती है कि
0: सम्मान पाने के लिए महान काम मत कीजिए। महान काम इसलिए कीजिए क्योंकि उससे किसी का जीवन बेहतर हो सकता है।
1: और शायद यही रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी एशिया के नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की। अब सुनिए आज का प्रश्न।
0: तो हमारा आज का प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है?
0: आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
1: जी,
0: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम है अपना अपना काम।
1: NCERT की तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि हम सबका अपने परिवार और समाज में एक विशेष उत्तरदायित्व और कार्य है, उसे हमें पूरे समर्पण के साथ निभाते हुए कार्य करना चाहिए।

0: अग्नि बैठी स्कूल का काम कर रही थी।
1: हल्कल चलती जाती चीटी, शम का राग सुनाती चीटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चीटी। ये हो गया मेरा स्कूल का काम। ओहो, मैं तो थक गई।
0: वो सोचने लगी,
1: इतना सारा लिखने पढ़ने का काम, स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो, कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता।
0: पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थीं।
1: मैं अभी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ।
0: भिन्न भिन्न करती मधुमक्खियां रुक गईं। वे अचंभित होकर बोली,
2: तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हमारे जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो?
1: मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ।
2: इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। और
0: सिमरन ने कान बंद कर लिए।
1: सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी।
0: फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़।
1: हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था। आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता।
0: पेड़ हंसने लगा।

0: मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूं बस। सुनो, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं।
1: सिमरन ने आंखें झुका ली।
2: सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। लेकिन इस चिड़ियों की मौज है।
1: सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा,
2: हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था।
3: नाना, ये क्या सोच रही हो? एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और तो और।
2: बस बस, मैं समझ गई।
1: वो सोचने लगी,
2: परिश्रम से ही सब जीते हैं। मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए।
1: उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई।
2: सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी।
4: तो बच्चों, सुना आपने? मधुमक्खी, चिड़िया, पेड़, चींटी सभी अपना अपना काम करते हैं। जरा सोचिए कि हमारा अपना काम पढ़ाई के अलावा और भला क्या क्या हो सकता है। अपना काम हो सकता है जैसे सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना, स्कूल से आकर बस्ता सही जगह पर रखना, और हाँ, माता पिता की जहां तक हो सके मदद करना। है ना ये हमारा अपना काम? तो आइए, जब सब करते हैं अपना अपना काम, तो क्यों ना हम सब भी करें अपना अपना काम।
5: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम

0: और आइए अब सुनते हैं भारत के प्रथम इंजीनियर सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जीवन और उपलब्धियों पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम।
1: भारत ने सभी क्षेत्रों में एक से एक विलक्षण प्रतिभाओं को जन्म दिया है। इन प्रतिभाओं का अमूल्य योगदान पूरी मानवता के लिए वरदान सिद्ध हुआ है।
2: ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। उन्हें भारतीय इंजीनियरिंग का जनक कहा जाता है। वो एक अद्भुत

0: प्रतिभा वाले विलक्षण अभियंता और युग दृष्टा थे। उनका जन्म कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर कस्बे में 15 सितंबर 1860 को हुआ था।
1: बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को मनाया जाता है। उनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री तथा माता का नाम वेंकचम्मा था। उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्षगुंडम से यहाँ आकर बस गए थे, इसलिए मोक्षगुंडम उनके पारिवारिक नाम में जोड़ा जाने लगा।
0: जब बालक विश्वेश्वरैया मात्र 12 साल के थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके जन्म स्थान पर स्थित एक प्राइमरी स्कूल में हुई। पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट ऐसा रहा कि उन्हें बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाना पड़ता था।
1: उन्होंने कठोर परिश्रम किया और परिस्थितियों से संघर्ष किया और आखिर आ ही गया वर्ष 1881, जब उन्होंने पूरे मैसूर राज्य में विज्ञान स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
2: बहुत अच्छा काम।
0: साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की सभा श्री मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के सम्मान में बुलाई गई है, जिन्होंने पूरे मैसूर राज्य में प्रथम श्रेणी में सबसे अधिक अंक लाकर विज्ञान में स्नातक की परीक्षा पास की है। उनसे निवेदन है कि मंच पर आकर प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें।
3: भाई वाह, कमाल कर दिया।
0: साथियों, इतना ही नहीं, आज ही विश्वविद्यालय में मैसूर राज्य के दीवान का संदेश आया है कि श्री मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की आगे की पढ़ाई और बाकी पूरा खर्च मैसूर सरकार ही वहन करेगी।
1: पूना के साइंस कॉलेज से उन्होंने सन 1883 में सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और महाराष्ट्र सरकार के नासिक लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। भवन निर्माण, जल और नगर प्रबंधन जैसे कार्यों में उनका सानी नहीं था।
0: उन दिनों भारत आजाद नहीं हुआ था। हुआ ये कि सक्कर में पानी की भारी समस्या खड़ी हो गई। बता दें कि सक्कर सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ सिंध प्रांत का एक नगर है, इसे सुकूर भी कहते हैं। समस्या के निदान के लिए विश्वेश्वरैया जी को विशेष सलाहकार के रूप में ब्रिटिश सरकार के मुख्य अभियंता द्वारा सक्कर बुलाया गया।
4: फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि आज की खास बैठक सक्कर नगर पालिका में पानी की समस्या पर बात करने के लिए बुलाई गई है। हमें इसका समाधान खोजना है।
5: जी सर, इन दिनों अखबारों में भी इसके बारे में बहुत छप रहा है और जनता बहुत परेशान है सर।
4: ये एक सीरियस बात है। हमें खुशी है कि हमारी खास गुजारिश पर आज हमारे बीच मिस्टर मोक्षगुंडम मौजूद हैं। आपने बहुत सी जगहों पर बहुत उम्दा काम किया है। मिस्टर मोक्षगुंडम, हम आपके विचार जानना चाहते हैं।
6: धन्यवाद सर। हमें नदी के आसपास हर 500 मीटर की दूरी पर गहरे गड्ढे खोदने होंगे ताकि बाढ़ के समय सिंधु नदी का पानी इन गड्ढों में भर जाए और वर्षा के जल का भंडारण हो सके। हमने बहुत से स्थानों पर इस तरीके को अपनाया है सर।
5: आप कहना चाहते हैं कि ऐसा करने से बाढ़ का पानी गड्ढों में भर जाएगा? इससे बाढ़ का पानी शहर में भी नहीं जाएगा और पानी जमा भी हो जाएगा, है ना?
6: जी सर। और इसके अलावा हमें शहर की सभी ऊंची जगहों पर बड़ी बड़ी टंकियां बनानी होंगी।
5: क्यों?
6: ताकि वहां भी वर्षा का जल जमा किया जा सके।
5: हो।
6: और हाँ सर, ऊंटों द्वारा टंकियों तक जल पहुंचाया जा सकता है।
4: यू मीन वॉटर हार्वेस्टिंग। बहुत अच्छा विचार है आपका। मैं आपके डिपार्टमेंट को आज ही लेटर लिखता हूँ कि आपका तबादला कुछ समय के लिए

0: शक्कर में कर दिया जाए।
1: थैंक यू सर, मुझे भी आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी सर।
0: ओके ओके ओके, वेलकम वेलकम।
1: थैंक यू।
2: साथियों, विश्वेश्वरैया के सुझाव का परिणाम बहुत ही प्रभावी रहा। बाढ़ की समस्या से भी छुटकारा मिला और सक्कर जैसे शुष्क प्रदेश में जल की समस्या बहुत हद तक दूर हो गई। ये परियोजना देश के बहुत से जल संकट का सामना करने वाले क्षेत्रों के लिए उदाहरण बन गई। इस समय उनकी उम्र मात्र 32 वर्ष थी। लोक निर्माण विभाग में रहकर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी ने कोल्हापुर, बेलगाम, धारवाड़, बीजापुर, अहमदाबाद और पूना समेत कई शहरों में जल आपूर्ति परियोजनाओं पर खूब काम किया था।
3: अब तक उनकी ख्याति पूरे देश में फैल गई थी। उन्हें मैसूर राज्य का मुख्य अभियंता नियुक्त कर दिया गया और साथ साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक संभाग का रेलवे सचिव भी। एक बार उनके साथ बड़ी रोचक घटना हुई। वो ट्रेन से लोक निर्माण विभाग के किसी सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेने जा रहे थे। ट्रेन में कई अंग्रेज भी थे।
2: सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे और ट्रेन तेज गति से चल रही थी। अचानक मोक्ष गुंडम उठे और ट्रेन की जंजीर खींच दी। लोगों को बड़ा गुस्सा आया। उनका अचानक उठना और तेजी से जाकर ट्रेन का जंजीर खींचना किसी की समझ में नहीं आया।
4: किसने खींची चेन?
5: सर, हमने नहीं किया। हाँ, हमने नहीं किया, इन्होंने किया है। हम तो मना कर रहे थे सर।
1: जी सर, मैंने ही चेन खींची है। सर, मुझे लगा कि आगे की पटरियां उखड़ी हुई हैं।
4: व्हाट? क्या मजाक है, ये आप कैसे कह सकते हैं?
1: श्रीमान, यदि विश्वास नहीं है तो चलकर स्वयं देख लीजिए।
4: आइए आइए, देखते हैं।
1: आइए, हम भी चलते हैं।
4: लेकिन मिस्टर, कान खोलकर सुन लीजिए, अगर बात आपकी गलत निकली ना तो आपको सजा हो सकती है। आइए।
1: ठीक है सर, मुझे मंजूर है।
2: और मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की बात सच निकली। कुछ दूरी पर उन्हें पटरियां उखड़ी हुई दिखाई दी।
1: आइए सर, आइए देख लीजिए।
4: अभी तक तो यहां भी ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अरे एक मिनट, यहां पटरियां तो सच में उखड़ी हुई हैं। ये देखिए, यहां पटरियां उखड़ी हुई हैं। मिस्टर, आपको कैसे पता चला?
1: सर देखिए, जब सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रेन की गति में अचानक परिवर्तन आ गया है और पटरियों की आवाज भी बदल गई है। सामान्य स्थिति में ऐसी आवाज प्राय सुनाई नहीं देती है, तभी मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है।
4: थैंक यू वेरी मच सर, आपने आज बहुत से यात्रियों की जान बचा ली।
5: We are so thankful to you. It's amazing. May I know your name, please?
1: I am Dr. Moksh Gundam Vishweshwaraiya.
5: Oh, the engineer in chief of Mysore state.
6: Aur railway sachiv bhi.
4: Namaskar sir.
7: See.
1: Ji, ji sir. Main wahi hoon.
5: Namaskar sir. Namaskar. We were actually going to attend your meeting only. It's actually our privilege to meet you personally. Thank you very much, sir. Thank you.
1: धन्यवाद।
2: तो ऐसे थे डॉक्टर विश्वेश्वरैया। बांध बनाने की प्रक्रिया में स्वचालित जल द्वारों का प्रयोग उनका अद्भुत नवाचार था। इस तकनीक को डॉक्टर विश्वेश्वरैया के नाम पर पेटेंट किया गया। आज भी ये प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जा रही है।
3: कृष्णराज सागर बांध के निर्माण के कारण मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का नाम पूरे विश्व में सबसे अधिक चर्चा में रहा। मैसूर राज्य में उनके योगदान को देखते हुए मैसूर के महाराजा ने उन्हें सन 1912 में राज्य का दीवान यानी मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया।
2: लोक निर्माण कार्य में उनके अतुल्य योगदान को देखते हुए उन्हें अनेकानेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। सन 1904 में उन्हें 50 साल तक लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स की मानद सदस्यता दी गई। 1921 में वो

0: कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस से सम्मानित किए गए।
1: सन 1955 में कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। जब सर एम विश्वेश्वरैया 100 साल के हुए तब भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 101 साल की उम्र में 14 अप्रैल 1965 को विश्वेश्वरैया का निधन बेंगलोर आज के बंगलुरु में हो गया।
0: सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की दूरदर्शिता के कारण मैसूर में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया और लड़कियों की शिक्षा के लिए पहल की गई। समाज के संपूर्ण विकास के उनके कार्यों के कारण ही उन्हें कर्नाटक का भगीरथ भी कहा जाता है। सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को उनके अतुल्य योगदान के लिए राष्ट्र और विश्व का आभार।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।
3: जी मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी, तो मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी, सिर्फ 1 मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

0: रात में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
2: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना,
1: कुसुमलता,
2: वीरेंद्र
1: और हमारी आज की विशेषज्ञ
2: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आपने सुना NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: यादें हमारी धरोहर हैं, यादें हमारे दिलों में बसती हैं, यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से हर माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10:05 से।
1: यादें याद आती हैं।
2: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 MHz पर। 11:30 होने को हैं। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई से रिले किए जाएंगे बस कुछ ही देर में।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अब आपको सुनवाते हैं वेणुगोपाल गोस्वामी की आवाज में ये पारंपरिक रचना, संगीत भी वेणुगोपाल का है।

0: संगीत के साधक।
1: ओ रे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: रीटा गांगुली की आवाज, संगीत विश्व मोहन भट्ट का।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति ऐसी बनी परवीन सुल्ताना और जगजीत कौर की आवाज़ें माया गोविंद के बोल खय्याम का संगीत एल्बम रजिया सुल्तान।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में आज 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा।

0: आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
1: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनसेवा को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया है और राजनीति को राष्ट्र सेवा का माध्यम माना है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं को केंद्र में रखकर कई योजनाएं बनाई और उन्हें लागू किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट पे कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जन केंद्रित नीतियों के कार्यान्वयन, निर्णय लेने में दृढ़ता, पारदर्शिता और परिणामों की गारंटी के माध्यम से शासन की परिभाषा को ही बदल दिया है, साथ ही प्रदर्शन की राजनीति के आदर्श की स्थापना की है। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों को विशेष महत्व दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। भारत ने जम्मू कश्मीर पर और पाकिस्तान में आतंकी ढांचों के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की टिप्पणियों को खारिज किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति में लोकसभा सांसद बिप्लव कुमार देव ने कहा कि टिप्पणी करने वाले पीड़ित और अपराधी के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। इस सिलसिले में चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जलंधर में 8 ठिकानों पर छापे मारे गए। इस दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन और दस्तावेज सहित कई महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की गई है। इनकी जांच की जा रही है। ये कार्रवाई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कल के आदेश के बाद हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। अब रेपो दर 5.25% से बढ़कर 5.5% हो गई है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की दर 5.25% तय की गई है। वहीं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक दर को भी बढ़ाकर 5.75% कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 72,906 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम का पहला गीत है आशा फिल्म से। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में लीजिए अब सुनिए मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, आर डी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम बुलंदी।
1: Hi, Bunch. Hi, let's go.

ब्रेक के बाद अब आपको सुनवाते हैं यादों की महफिल कार्यक्रम के बाकी गानों को। लीजिए अब सुनिए अली बाबा और 40 चोर इस फिल्म का गाना, किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है आरडी बर्मन का।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं, 3।
0: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
4: सखी सहेली।
5: यादों की महफिल इस कार्यक्रम का अगला गाना अग्नि परीक्षा। इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज, योगेश के बोल, सलील चौधरी का संगीत।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: येसुदास और आशा भोंसले की आवाज़ों में लीजिए अब सुनिए योगेश का लिखा हुआ गाना। बप्पी लाहिरी का संगीत, फिल्म का नाम है अपने पराए।

हमारे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है यादों के महफिल। लीजिए अब सुनिए दो प्रेमी, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: छनकी के ना
2: छनकी छनकी

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मल

0: विविधता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गाना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और फिल्म का नाम हम 5।

लीजिए अब सुनिए हरजाई फिल्म का गाना। आवाज़ किशोर कुमार की है, विट्ठल भाई पटेल ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बंदिश फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

नमस्कार श्रोताओं, सुरीला सफ़र इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपको आज की जो इबारत है, जो टेक्स्ट है, जो हमने विविध भारती के फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है, वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने पढ़ भी लिया है और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचा दी है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, उनके लिए हम एक बार पढ़ के सुना देते हैं। आज आपको कुछ सुनाना है, प्यार की दास्तान भी, दिल का हाल भी, पायलों के गीत भी और कहानियाँ भी। बाबू आना, तुम भी सुनते जाना, बाराती भी सुनो और बंधु मितवा तुम भी सुनो। सुनाना तो ये है कि ए मेरे दोस्त, तेरी यारी हमें जान से प्यारी है। इन गुलाबी कलियों ने भी हमारा रास्ता रोक कर यही कहा, यार हमारी बात सुनो। पर बात तो यही है कि अब कौन किसकी सुनता है। सुनना किसी को पसंद नहीं। कोई कहता है मैं क्यों किसी की सुनूं, पर सच तो ये है कि सुनना भी एक कौशल है। सुनना इसलिए है ताकि हम बोलने की तैयारी कर सके। जी हाँ, सुनना कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है और इसकी क्या आवश्यकता है, बस यही है हमारा आज का विषय। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज आपकी इस इबारत में जीवन का पूरा रंगमंच सिमटा है। जहाँ प्यार की दास्तान है, दिल का हाल है, पायलों की गीत है और यारी की वो मिठास है जो जान से भी प्यारी लगती है। पर इन सब के बीच सबसे गहरी बात यही है कि आज सुनना ही सबसे ज़्यादा कठिन हो गया है। हर दिल कुछ न कुछ सुनाना चाहता है, पर सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि हमने सुनने को केवल बोलने से पहले का एक ठहराव समझ लिया है। जबकि सच तो ये है कि सुनना एक साधना है, एक कौशल है, एक प्रेम है। जब हम सच में सुनते हैं तो सामने वाले के शब्द ही नहीं, उसके मौन को भी सुन लेते हैं और तभी यारी, प्यार और कहानियाँ सार्थक होती है। इसलिए बोलने की तैयारी के लिए नहीं, बल्कि दूसरे के अस्तित्व को सम्मान देने के लिए सुनने की कला को सीखना ही आज के शोर भरे समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। एक साथी हमारी ये भी लिख रही हैं कि सुनने की इच्छा हो तो खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, पर जब कोई सुनना ही नहीं चाहे तो हज़ार शब्द भी बेअसर हो जाते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। सबसे पहला जो गीत है वो फरार फिल्म का गाना है, प्यार की दास्तान। ये गीत है लता जी की आवाज़, कैफी आज़मी के बोल, संगीत किसका है ये आप हमें बताइए।

कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी ख़ास व्यक्ति के लिए होती है, किसी ख़ास व्यक्ति को सुनाने के लिए होती है, और जब वो व्यक्ति उन बातों को सुनता है तो दिल को सुकून मिलता है। एक हमारे साथी की ये बात कि फरार फिल्म का ये सदाबहार गीत लता मंगेशकर की मखमली आवाज़, हेमंत कुमार के शांत संगीत और कैफी आज़मी की बेहतरीन शायरी का एक अनूठा संगम है। ये गाना प्रेम के निजी और पवित्र एहसास को बहुत ही खूबसूरती से बयां करता हुआ गीत है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि किसी की सुनना सम्मान बोधक सूचक है, सुनना ही बोलने वाले को सम्मान देना होता है, सुनना एक कला है जो सहनशीलता और संवेदनशीलता का परिचायक है, खासकर अगर बातें दिलों की हो तो सावधानी सर्वोपरि रखनी चाहिए। बोलने वाले के संवाद चाहे व्यंग्यात्मक हो, कटाक्षपूर्ण हो, अनर्गल हो, असंवैधानिक हो, विरोधाभास हो या चुभने वाली हो, सुनकर ही अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। धन्यवाद आपका। चलिए हम अगला गाना अब आपको सुनवाते हैं। श्री 420 फिल्म का ये गाना है, मन्ना डे की आवाज़, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है शंकर जयकिशन का।

अब एक सीधी सी बात हमारे मन में ये है कि अधिक सुनने के क्या क्या फायदे हैं और अधिक बोलने के क्या क्या नुकसान है, ये हमारा सवाल भी है आपसे। अधिक सुनने के क्या क्या फायदे हैं और अधिक बोलने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये आप हमें बता दीजिए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सुनना ही आगे जाने का मार्ग है, आगे जाके सुना हुआ ही हम बोल सकते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि बोलना अपनी बात कहना है, लेकिन सुनना किसी के दिल को जगह देना है। रिश्ते वहीं खूबसूरत होते हैं जहाँ बोलने से पहले कोई सुनने वाला और चुप्पी में भी समझने वाला हो। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि सुनना सिर्फ शब्दों को सुन लेना नहीं है, बल्कि किसी के दिल तक पहुँच जाना है। कभी कभी इंसान की सलाह नहीं, बस एक ऐसा कंधा चाहिए होता है जहां उसकी बातें बिना किसी शिकायत के सुनी जाए। सच तो यह है कि जब कोई हमें दिल से सुनता है तो आधा दर्द वहीं खामोशी में पिघल जाता है, कुछ जख्म दवा से नहीं सुन लिए जाने से भर जाते हैं। और एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज कहने सुनने की बात है तो कुछ लोग कहते रहते हैं, ज़रूरी हो या ना हो उन्हें सुनने की आदत नहीं है, कहने से ज़्यादा सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि कुछ उपयोगी या ज्ञान की बातें मिले। दूसरों से बात करते समय सोच समझ कर बोलें, ऐसी कोई बात ना बोलें जिससे दूसरों को बुरा लगे, मुझे सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए धन्यवाद, अगला गाना अब आपको सुनवाते हैं। ये गाना लता जी की आवाज़ में है, शंकर जयकिशन का संगीत है। किस फिल्म का गाना है ये आप हमें बताइए।

ये जो गीत अभी आपने सुना, ये ससुराल फिल्म का गाना है। बहुत कम श्रोताओं ने इस बात का जवाब हमें दिया है, लेकिन जिन्होंने दिया है सही लिखा है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सिर्फ अपनी ही बात लगातार बोलना और किसी दूसरे को नहीं सुनना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे को सुनना भी और समझना एक बेहतरीन संवाद की नींव होती है। बोलना और सुनना संवाद के दो अहम पहलू है, क्योंकि सिर्फ अपने ही लगातार बोलने से बातचीत अधूरी रह जाती है और एक अच्छा श्रोता बनने से बातचीत अधिक प्रभावशाली और संतुलित होती है। इसलिए अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ बोलना ही नहीं सुनना भी सीखना चाहिए। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि दिल अपनी दास्तान सुनाने को बेताब रहता है, पर दिमाग हमेशा ये सोचता है कि क्या जो सोचकर हम बयान करेंगे उसे उसी तरह सामने वाला समझ सकता है, कहीं वो कुछ और समझ लिया तो हमारे मन की बातें कहने का अर्थ नहीं रह जाता है। यही दुविधा हमेशा ही दिल और दिमाग के बीच चलती रहती है। कहते हैं कि कह देने से मन का बोझ कम हो जाता है, पर कभी कभी खामोशी भी मन की पीड़ा को कम कर देती है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। राजपूत फिल्म का गाना अब आपके लिए लेकर आए हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। ये तीन कलाकारों पर फिल्माया गया गाना है। कौन से कलाकार हैं ये आप बताइए। और हाँ, हमारा जो सवाल था कि अधिक सुनने के क्या फ़ायदे हैं और अधिक बोलने के क्या नुकसान हो सकते हैं, इस पर भी हमारी चर्चा जारी रहेगी।

कुछ इसी तरह की कहानियाँ हमने भी अपनी दादी नानी और अपने पुरखों से सुनी और उन कहानियों को सुनने में बड़ा आनंद आता था और आनंद के साथ साथ हमें कई बातों की सीख भी तो मिलती थी ना, इसीलिए तो वो कहानियाँ बनाई और सुनाई जाती थी। एक साथी ने बहुत सुंदर बात लिखी है, उनकी ये बातें हमारे दिल को छू गई। लिखा है कि सुनना यानी श्रवण केवल एक शारीरिक क्रिया मात्र नहीं है बल्कि ज्ञानार्जन और आत्मिक विकास की पहली सीढ़ी है। हमारे देश में अनादिकाल से श्रुति परंपरा रही है। गुरु द्वारा कहे जाने वाले वेदों और उपनिषदों के मंत्रों और ऋचाओं को सुनकर अपने उनके गूढ़ अर्थ समझ कर चेतना में आत्मसात किया जाता था और एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ उस मंत्र में छुपे गूढ़ अर्थ और भावना से तादात्म्य स्थापित होता था। गुरु के द्वारा कहे जाने वाले मंत्रों के भाषा प्रवाह आरोह अवरोह और अभिव्यक्ति के सूक्ष्म भेदों को बहुत गहराई से आत्मसात किया जाता था जिससे सुनने वाले को वाक सिद्धि यानी प्रभावशाली रूप से अपनी बात कहने की कला में निखार आ जाता है। बहुत सुंदर बात आपकी। एक साथी लिख रहे हैं कि बोलना और सुनना ही व्यक्तित्व का परिचायक है। संक्षिप्तता में पूर्णता प्रकाशित करती वाणी कहनी चाहिए, भाषा में शालीनता परिपक्वता परमावश्यक है। एक साथी लिख रहे हैं कि अधिक बोलने से शब्दों का महत्व कम हो जाता है और अनजाने में दूरी बढ़ जाती है, पर ज़्यादा सुनने से हम बेहतर श्रोता बनते हैं और दूसरे को समझने के साथ उसके मन की बात भी जान पाते हैं, इसलिए अधिक सुनना समझदार होने की निशानी है। और एक साथी ने तो ये बात लिखी है कि मैंने तो एक कप चाय बना ली है और सुरीला सफ़र प्रोग्राम सुन रही हूँ। धन्यवाद आपका। चलिए अब बाबू आना सुनते जाना, ये गाना संगीत किसका है आप बताइए।

0: महंगा सौदा है इसका लुटना जाना,
1: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका,
0: चोरी का है माल इसका, धोखा न खाना। बाबू आना सुनते जाना,
1: महंगा सौदा है इसका लुटना जाना,
0: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका,
1: चोरी का है माल इसका,

लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी, ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी। तू जा ए जा जा जामू धो के आ, तू जा जा अरे जा जा जामू।

लड़की पहाड़ी है काटे की लाला।

0: अरे मत लड़ना मुझसे वरना मैं दूंगी गालियाँ।
1: सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ, सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ।
0: रुक जा निकालती मैं तेरा दीवाला,
1: जा रे तू पीत जाके गरम मसाला,
0: अरे
1: तू जा जा घर जाके आलू।

झुमरू फिल्म का गाना, इसमें संगीत किशोर कुमार का। एक साथी की बात, पहले हर परिवार में रिश्तेदारी में कहानी सुनाने वाले हुआ करते थे, जो बड़े तन्मय होकर कहानी सुनाते थे, और कहानी अगर एक दिन में ख़त्म ना हो तो फिर दूसरे दिन शुरू होती थी, और हम सभी भी सुनते थे, क्योंकि कहते हैं कि अधूरी कहानी सुनने पर रास्ता भटकने का डर रहता है, इसलिए पूरी कहानी सुनना ज़रूरी है। एक साथी लिख रहे हैं कि बोलना अगर चांदी है तो सुनना सोना है। एक अच्छा वक्ता होने के साथ आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा श्रोता बनकर आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। ये हुनर न केवल हमें एक बेहतरीन इंसान बनाता है, बल्कि समाज में संवादहीनता की खाई को भी पाटता है। केवल सुनना एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें आवाज़ें हमारे कानों तक पहुँचती है। ध्यान से सुनना ये एक मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है। इसमें हम सामने वाले के शब्दों के साथ साथ उसकी भावनाओं, लहजे और अनकही बातों, यानी कि बॉडी लैंग्वेज को भी समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए सुनना एक हुनर या कला कहा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वारंट फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत, दो कलाकार कौन हैं आप बताइए।

देव आनंद और जीनत अमान पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी हमारे लिख रही हैं कि सुनना जहां एक बड़ी कला है, वहीं समय पर सटीक उत्तर देना भी उतना ही ज़रूरी है, वरना लोग आपकी खामोशी को आपकी कमज़ोरी या सहमति समझ लेते हैं। सुनने और जवाब देने का संतुलन, पहले सामने वाले की बात को पूरे धैर्य और ध्यान से सुने ताकि आप उसके संदर्भ को पूरी तरह समझ सकें। जब बात पूरी हो जाए तो अपनी बात को स्पष्ट और संयम के साथ रखें ताकि गलतफहमी ना फैले। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि सुनना सुनाना जीवन के दो अनमोल पहलू है जो हमारे दिलों को आपस में जोड़ने वाला नाजुक रेशम धागा है। जब हम किसी को ध्यान से सुनते हैं तब दूसरों के अस्तित्व को, उनके जज्बात को, एहसासों को अपनाते हैं, निःशब्द मान्यता देते हैं तो दूसरी ओर सुनना यानी खुद की भावनाएं, अनुभव और सपनों को आवाज़ का लहजा देकर दूसरों तक पहुंचा देना, दिल में उतार देना ही जिससे मन हल्का हो जाता है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि जब मैं घर पर ही हूं और धर्म पत्नी कहे कि सुनिए जी, तो एक बार मैं न सुनने की एक्टिंग करता हूं, फिर कहती है सुनिए जी, ये सुनकर मैं आनंदित होकर प्यार से कहता हूं कहिए जी। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक चुप, और ये आगे लिख रहे हैं कि आगे क्या है मैं भूल गई हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये कि किसी भी चीज़ की अति नहीं करना है, न बोलने की ना चुप रहने की। चलिए अब हम अगला गाना आपको सुनवाते हैं, सुजाता फिल्म का गाना, एस डी बर्मन की आवाज़।

सुजाता फिल्म का गाना सुनील दत्त और नूतन पर फिल्माया गया। एक साथी लिख रहे हैं कि एक प्यारी सी बात, कम बोलना कमजोरी नहीं एक खूबसूरत समझदारी है। जब शब्द कम होते हैं तो उनकी कीमत बढ़ जाती है। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है, बस उसे सुनने वाला दिल चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि सुनना अमूल्य वरदान है, भगवान की तरफ से सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलता है, सुनाना ये ज़रूरी नहीं है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि बिना सोचे बहुत ज़्यादा बोलने पर वह बगुले वाली हालत हो जाएगी, मुंह से आया हुआ आहार ज़मीन पर गिर जाएगा। बगुला आसमान में चोंच में मछली पकड़ कर ले जा रहा था, किसी ने देखा और चिल्ला कर कहा, अरे बगुला सांप पकड़ा है कि मछली? बगुला सिर्फ सांप सुना, फटाक से बोलने के लिए मुंह खोला और मछली ज़मीन पर गिर गई। ये कहानी भी है और एक इसमें संदेश भी छुपा है। एक हमारे साथी की बात यह है कि कम कुछ सुनो और सुनाओ। मेरा मानना है कि यदि आप एक अच्छे वक्ता हैं तो एक अच्छे श्रोता भी बनिए, ये नहीं बस अपनी ढपली और अपना राग। तो ये बात इन्होंने लिखी है, धन्यवाद। और अगला गाना सुहाग फिल्म का ये गाना है, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और परवीन बाबी पर फिल्माया गया है। शैलेंद्र सिंह, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

एक साथी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि सच कहें तो रेडियो से हमें सुनने का संस्कार मिलता है। हम 24 घंटे लगातार बोल नहीं सकते मगर सुन ज़रूर सकते हैं। शायद इसलिए कुदरत ने हमें दो कान और एक जिह्वा प्रदान की है। सुनना भी वास्तव में एक कला ही है। प्रकृति के नज़दीक खामोशी से सुनिए तो सही, न जाने कितनी मधुर दिव्य आवाज़ें आपको अथाह असीम शांति और सुकून देती हुई महसूस होंगी। किसी फूल पर मंडराते हुए मधुकर के गुंजन, मंद मंद समीर में घुलती हुई रागिनी, बहते दरिया की लहरों की अटखेलियाँ की स्वर लहरियाँ, किसी गौरी की चूड़ियों के खनक और पांवों में बसती पायल के सरगम, कहने का अभिप्राय यही है कि अच्छा सुनने का कौशल हमें मानसिक अवसाद से राहत दिलाता है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि कई लोग कहते हैं कि मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, किसी को बुरा लगे या भला, पर मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। और एक साथी लिख रहे हैं कि इस समय मेरे ऑफिस में रखे रेडियो पर हाथ रख कर मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। मैं बचपन से रेडियो पर विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुनता था, आज भी सुनता हूँ और आगे भी अंतिम सांसों तक सुनता रहूँगा। और एक साथी हमारे ये बात लिख रहे हैं कि हमें तो विविध भारती जो भी सुनाती हम चुपचाप सुनते रहते हैं और कहते भी हैं, लिखते भी हैं, क्योंकि विविध भारती हमारी अपनी है। आपके इस प्यार के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सावन भादो फिल्म का ये गाना सुनवाते हैं। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है बताइए हमें।

एक हमारे साथी ने बहुत सटीक बात लिखी, लिखते हैं कि अगर देखा जाए तो हमारी सारी मन स्थिति सुनने पर ही निर्भर करती है। दूर बैठे किसी का फ़ोन भी आ जाए और कोई अच्छी खबर देते तो हम खुश हो जाते हैं, परेशानी कम हो जाती है। सुख दुख अच्छा बुरा सब कुछ सुनने पर ही तो निर्भर होता है। सबसे पहले अगर कोई मन स्थिति को बदलने में सक्षम है तो वो हमारी श्रवण शक्ति ही है। वहीं किसी सुंदर भजन या गीत को सुन ले तो मन आनंद से भर जाता है। कितनी सही बात है ना कि सुनकर ही तो हमें मन को, हमारे मन को खुशी मिलती है, और कोई बुरी खबर सुन ले तो मन उदास भी हो जाता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सुनना, शब्दों को सुनना भर नहीं, उसकी आवाज़ में छिपी उदासी को सुनना है, उसकी खामोशी में ठहरे अनगिनत सवालों को सुनना है। सामने वाला जब अपनी कहानी कहता है तो वो केवल शब्द नहीं कहता, वह अपने भीतर की परतें खोलता है, अपनी खुशियां, अपनी शिकायतें, अपने अनकहे एहसास हमारे सामने रख देता है। इसलिए खामोशी से किसी को सुनना बेहद ज़रूरी है। चलिए अगला गीत अब सुनते हैं, रोटी फिल्म का ये गाना किशोर कुमार की आवाज़।

एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आजकल के वृद्ध माता पिता जिनके बच्चे बाहर हैं और अकेलेपन से जूझ रहे हैं, घर में कोई बात करने वाला नहीं है, उनकी बातें सुनने वाला नहीं है, तो ऐसे में रिश्तेदार और पड़ोसियों को इतना तो करना चाहिए कि उनके पास बैठकर इत्मीनान से उनकी बातें सुने और उनको भी कोई साथी मिलेगा और उपयोगी बातें सुनने को मिलेगी। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज के दौर में प्रत्येक इंसान में जो एक चीज़ गायब दिखती है वो है सुनना। इंसान नहीं जानता कि सुनना भी एक तीर्थ है। ये विडम्बना है कि हर इंसान सिर्फ बोल रहा है, सुनना बिल्कुल अनचाही सी चीज़ हो गई है। एक सच जो इंसान नहीं जानता, जिसने सिर्फ और सिर्फ बोलने को तरजीह दी और सुनना छोड़ दिया, उसने अनजाने में धीरज, गहराई और रिश्तों का मोल खो दिया है। चलिए अगला और अंतिम गाना, उजाला फिल्म का गाना है ये, शम्मी कपूर और माला सिन्हा पर फिल्माया गया ये गाना।

यही था आज के सुरीला सफ़र कार्यक्रम का अंतिम गाना, और आपने इस कार्यक्रम को धैर्यपूर्वक ध्यान से सुना और विषय को लेकर बहुत सारी बातें आपने लिखी, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आपको ये सुनाना चाहते हैं कि अब ये कार्यक्रम संपन्न होता है। मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म बंदिश से। आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की हैं। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और इसके बाद आप सुनेंगे चितचोर फिल्म का गीत यशोदास और हेमलता की आवाजों में। इसके लिए गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना जरूर पूरा करेगा। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि कभी नीतिगत निष्क्रियता की चर्चा से जुड़ा भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्थिति पूरी तरह बदल गई है।
1: हमें भारत के सामर्थ्य को कभी भी कम नहीं आंकना है। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अपने संकल्पों को दुनिया के सामने रखा, तब भी भारत पर अविश्वास करने वाले बहुत थे, लेकिन भारत ने तय समय से पहले ही वो लक्ष्य हासिल किया। ऐसा करने वाला भारत G20 का इकलौता देश है। विकसित भारत का हमारा सपना भी है, हमारा संकल्प भी है और उसे पूरा करने का हमारे पास सामर्थ्य भी है।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष की जनसेवा यात्रा पूरी करने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुई प्रधानमंत्री मोदी की जनसेवा यात्रा राष्ट्र निर्माण और विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की निरंतर यात्रा रही है। मुख्यमंत्री ने कोरोना संकट से निपटने, अनुच्छेद 370, नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई और आयुष्मान भारत, उज्ज्वला और प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वस्थ, सुदीर्घ और यशस्वी जीवन की कामना की है। मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट का 7वां संस्करण आज से भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 4 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश के टूरिज्म पोटेंशियल को ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने के लिए भोपाल में शुरू हो रहा है मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्च 2026। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश का पर्यटन सेक्टर अब इन्वेस्टमेंट, रोजगार और नए बिजनेस अवसरों का हब बन रहा है। इसी कड़ी में 7 से 10 अक्टूबर तक भोपाल में आयोजित MPTM 2026 में 34 देशों के 100 से अधिक इंटरनेशनल और 15 राज्यों के 180 से अधिक घरेलू टूर ऑपरेटर सहित 600 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। 4 दिनों में होंगी 10,000 से अधिक B2B मीटिंग्स, जहां पर्यटन कारोबारियों, निवेशकों और स्थानीय स्टेक होल्डर्स के बीच नए कनेक्शन और नई साझेदारियां आकार लेंगी। यानी मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ, हेरिटेज, एडवेंचर, ग्रामीण पर्यटन और डिजिटल टूरिज्म के सेक्टर में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की लीडरशिप में प्रदेश की पर्यटन कहानी अब लोकल से ग्लोबल होने की ओर बढ़ रही है।
0: प्रदेश में मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने के लिए आज से 3 दिन

तक सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। संबंधित बूथ लेवल अधिकारी पात्र मतदाताओं से आवेदन लेकर नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने बताया कि फॉर्म 6 के अलावा किसी मतदाता से घोषणा पत्र नहीं लिया जाएगा। 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं के आवेदन लिए जाएंगे, जबकि 1 जनवरी 2027 को 18 साल के होने वाले युवा अग्रिम रूप से आवेदन जमा कर सकेंगे। मतदाता voters.eci.gov.in या ईसीआई नेट मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में आयोजित की जा रही 5 दिवसीय 70वीं राज्य शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के अंतर्गत खेल परिसर में विभिन्न संभागों के खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अक्टूबर माह में नवरात्रि, दशहरा, वाल्मीकि जयंती आदि त्योहारों को देखते हुए कल आगरमालवा में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। नर्मदापुरम में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 137 में SIR के बाद मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र मतदाताओं और पहली बार पात्र हो रहे युवाओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया को लेकर BLO का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। और भारत ने 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले आज फिजी में एक बैठक में पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है।
1: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इंपोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश अपनी चुनौतियों का स्थायी समाधान तलाश रहा है।
1: जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समस्या, ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है, लेकिन आज आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह

0: नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान लिया गया, लेकिन आज इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। जो आतंकवाद भारत के भाग्य को ही चुनौती दे रहा था, लेकिन यह भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है, हमने घर में घुसकर मारा और दुश्मनों को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है।
1: इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की पहल की भी सराहना की।
2: जब किसी व्यक्ति के साथ उनकी सोच, उनकी दृष्टि 140 करोड़ लोगों का संकल्प बन जाता है तो वो एक सामूहिक स्वप्न बनता है। जो आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं, वही विकसित भारत 2047 के सूत्रधार हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपके देश के लोगों को शक्ति की सप्तधारा का रोड मैप दिया है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नक्सलवाद की समाप्ति और देश के बुनियादी ढांचे को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं।
3: जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, ये 25 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे। ये 25 साल में गरीबी से मुक्ति, सुरक्षित भारत, धारा 370 हटाना, नक्सलवाद समाप्त करना, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाना, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपरी सीमा तक ले जाना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
1: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। उधर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज सभी जिलों में सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जीपीओ के पास पटेल पार्क में सेवा ज्योति यात्रा के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 25 वर्ष की जनसेवा में असंभव को संभव कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी द्वारा भारतीय कृषि के बदलाव पर लिखे गए एक लेख को साझा किया। ये लेख प्रधानमंत्री मोदी की 25 वर्षों की यात्रा को दर्शाता है। इसमें गुजरात सहित भारतीय कृषि के व्यापक परिवर्तन की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्ष की जनसेवा पूरी कर ली है। जापान, नाइजीरिया, डोमिनिका और बेल्जियम के नेताओं ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भारत के विकास में उनके नेतृत्व और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट टी वेवर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और भारत बेल्जियम के बीच साझेदारी को और गहरा करने की तत्परता व्यक्त की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भी बढ़ गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। एक रिपोर्ट।
5: डॉक्टर जयशंकर ने अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति को भी रेखांकित किया। उन्होंने भारत और अफ्रीका के युवाओं को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री जयशंकर ने ईंधन, खाद्य, उर्वरक और वित्त के लिए अनुकूल आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व पर बल दिया और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी में व्यापार, अवसंरचना, क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता और आपदा राहत, कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा शामिल हैं। उन्होंने घाना में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत ने फिजी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना और वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए लगभग 4 वर्ष बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
6: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
7: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं। समिति ने 2 के मुकाबले 4 मतों से अपने रुख को सोच समझकर मौद्रिक शक्ति की ओर बदलने का भी फैसला किया है।
6: कैलिब्रेटेड टाइटनिंग बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 4-2।
1: रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन का ये आयोजन आज शुरू हुआ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का विषय है, बिना किसी सीमा के विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में लखपति दीदी योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है।
8: ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना संचालित की जा रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न सतत आजीविका गतिविधियों के माध्यम से हर वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की आय अर्जित करने में सक्षम बनाना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, ऋण की सुविधा, उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि देश भर में अब 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
9: 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है।
8: परभणी जिले की शिल्पा देशमुख ने इस संबंध में अपने अनुभव आकाशवाणी के साथ साझा किए।
10: ड्रोन की वजह से मुझे अलग ही पहचान मिली है और मेरे उत्पन्न में बढ़त हुई है। इसकी वजह से मेरी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से अधिक हो गई है, इसलिए मुझे अब सिर्फ ड्रोन दीदी ही नहीं बल्कि लखपति दीदी के नाम से ही बुलाया जाता है।
8: ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से परिवारों, गांवों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करने में लखपति दीदी महत्वपूर्ण पहल है। समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी समाचार, छत्रपति संभाजीनगर।
1: दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाश

0: आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति के प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी ओएसडी राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में विभिन्न स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आज गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग चार वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदा बहार नगमे। कार्यक्रम का पहला जो गीत है ये आज और कल, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रवि का।

0: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है, दैट इज अ प्लस वन। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए बहुरानी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज़, साहिल उद्यानवी के बोल, संगीत सी रामचंद्र का।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घनश्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है मीरा।

लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ब्लफ मास्टर फिल्म का गाना, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

यार हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना। हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना। प्यार की कसम।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाज़ों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, रवि का संगीत, फिल्म का नाम भरोसा। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली के लिए कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

0: की सहेली।
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सहेलियों को चंचल वर्मा का नमस्कार
2: और सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का भी बहुत बहुत नमस्कार।
1: तो कैसी हैं मंदाकिनी जी?
2: भाई मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसी हैं?
1: मेरे भी हालचाल बहुत अच्छे हैं और हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी सुनने वाले भी खुश होंगे और अभी जो ये माहौल चल रहा है उत्सव का, तैयारियों का, इसमें लगे होंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल लगे होंगे। और देखिए उत्सव तो हर बात में है। अभी हमारे देश की जो चार बेटियों ने गोल्ड मेडल जीता है उसका अभी पूरा देश जो है उत्सव मना रहा है ना। देखिए चार बेटियां 400 मीटर की चार चार जिम्मेदारियों को लेकर, एक तिरंगे का सपना था उनका।
1: क्या बात।
2: और यही थी भारत की महिला जिन्होंने 4x400 मीटर रिले टीम की जो कहानी हमारे देश को दी है, जिस पर आज हम गर्व कर रहे हैं। किरण जी हैं वो, किरण पहल ने दौड़ की शुरुआत की और उसके बाद एमआर पुवम्मा, फिर प्राची चौधरी और आखिर चरण में विथ्या रामराज ने मोर्चा संभाला। और चंचल शुरुआत में भारत तीसरे स्थान पर था लेकिन पुवम्मा ने रफ्तार बढ़ाकर टीम को आगे पहुंचाया और प्राची ने उसकी बढ़त को कायम रखा और आखिरी 400 मीटर में विथ्या पर सबसे बड़ा दबाव था और बहरीन की धाविका लगातार करीब आ रही थी लेकिन विथ्या ने आखिरी पलों में हिम्मत नहीं छोड़ी और कुल मिलाकर इन चार बेटियों ने 3:29.69 में पूरा किया अपना राउंड और स्वर्ण पदक जीत लिया।
1: तो हम भी बधाई देते हैं इन चारों बेटियों को और देश की सभी बेटियों को जो इतनी लंबी दौड़ लगाने का, ऊंची छलांग लगाने का, पंख फैलाकर उड़ने का सपना देख रही हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे खूबसूरत बात यह है चंचल कि इन चारों की कहानियां अलग है, संघर्ष बिल्कुल अलग है ना, लेकिन मंजिल एक थी। क्या? कि भारत के लिए गोल्ड मेडल लाना। और ये जो जीत है हर उस लड़की के लिए, हर उस महिला के लिए, युवती के लिए, स्त्री के लिए एक संदेश है कि रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, अगर कदम रुकते नहीं है, हौसला बनाए रखती हैं बेटियां, तो मंजिल की रफ्तार बिल्कुल आप पा सकती हैं।
1: और इसमें सबसे बड़े साथ की जरूरत होती है परिवार के, तो बेटियों का हौसला बढ़ाइए, उनके हौसले को कभी भी गिरने मत दीजिए। और बता देते हैं कि आज किस विषय पर सखी सहेली में बात होगी, तो महत्वाकांक्षा की बात होगी और जब महत्वाकांक्षी होती हैं बेटियां या कोई भी, तो उनका भविष्य निर्माण भी बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है, इस बारे में बात होगी। और आज साड़ियों का दिन है यानी बुधवार के दिन हम किसी एक खास साड़ी की बात करते हैं, तो नंदना साड़ी की बात की जाएगी और फिर हम हमारे जो श्रोता हैं किसी एक शब्द पर अपने विचार हमें देने वाले हैं, तो वो शब्द है प्रकृति। यानी
2: क्या बात है,
1: शब्द हमारा और विचार आपके।
2: बिल्कुल। तो प्रकृति के बारे में ये बताइए कि वो आप प्रकृति से प्रेम कितना करते हैं। अभी आप प्रकृति का डेफिनेशन तो लिख देंगे कि प्रकृति ये है, हम आप प्रकृति से कितना प्यार करते हैं, आपने अपने जीवन में कितने पौधे लगाए, पेड़ लगाए कि नहीं, अपने घरों के आसपास आपने प्रकृति को स्थान दिया कि नहीं।
1: और प्रकृति का अर्थ हर जगह जाकर थोड़ा सा बदल जाता है। कहते हैं ना कि भाई आग की प्रकृति है जलाना, तो यहाँ भी प्रकृति का अर्थ बदल जाता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि तीन तरह की प्रकृति के शरीर होते हैं, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। तो प्रकृति का जो शब्द है वो वहीं कहीं कहीं उसका अर्थ भी बदलता है।
2: आप इसको बड़े डेफिनेशन में ले सकते हैं। अब हमारे श्रोता किस अर्थ में प्रकृति को लेकर अपने विचार लिखेंगे उसका हमें इंतजार रहेगा।
1: बिल्कुल। इसके अलावा विश्व कपास दिवस है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और गुड़ की मिठाई यानी कि जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान उनका होता है, वो गुड़ की मिठाइयां किस तरह बनाते हैं, खाते हैं, इस पर बात होगी। लेकिन मिठाई की बात और मीठा सा गीत ना हो
2: बिल्कुल ही गीत होना चाहिए।

0: हाँ जी, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा।
1: और हमारे जो साथी हैं सुनने वाले, वो भी हर जगह हमारे साथ होंगे। बहुत सारे संदेश वो हमें भेज रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं महत्वाकांक्षा और भविष्य निर्माण के बारे में। तो मंदाकिनी जी, महत्वाकांक्षा का मतलब होता है कुछ बड़ा सोचना या बड़ी अपेक्षाएं रखना। और देखा जाए तो एक सफल इंसान बनने के लिए ये जरूरी भी होता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर हम एक दायरे में सिमट कर रह जाते हैं ना, तो किसी बड़े लक्ष्य को पाना मुश्किल हो जाता है।
0: मुश्किल हो जाता है। और चंचल, महत्वाकांक्षा या आवेग दोनों ही जो है हमारी एनर्जी होते हैं। बस दोनों में फर्क इतना ही है कि महत्वाकांक्षा में एक दिशा होती है और आवेग जब आता है तो उसमें गति होती है। और जब गति बिना दिशा के हो जाती है तो भविष्य नहीं बनता, बिखर जाता है। और महत्वाकांक्षा अकेली भी खतरनाक हो सकती है। तो परेशानी कब शुरू होती है? तब शुरू होती है जब महत्वाकांक्षा कब और कैसे को भूलकर सिर्फ क्या चाहिए पर अटक जाती।
1: बहुत सही बात बताई आपने मंदाकिनी जी। और इसी तरह की बड़ी इच्छाएं या महत्वाकांक्षाएं अगर आपकी हैं, जैसे भाई आपको इंजीनियर बनना है, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, या बहुत बड़ा बिजनेस करना है, आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, इस तरह की जो भी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, कई बार ये जिंदगी में बोझ भी बन जाती है।
0: बिल्कुल,
1: भविष्य आदमी भविष्य की तरफ एक कल्पना के चित्र में ही जीने लगता है। उसे लगता है कि जब वो मिल जाएगा तब मुझे खुशी होगी, और वो जो दिन है ना कि ये मिलने पर खुशी होगी या ये महत्वाकांक्षा पूरी होने पे खुशी होगी, वो दिन जिंदगी में कभी भी नहीं
0: आता नहीं है, क्योंकि हम वैसी मेहनत नहीं करते ना चंचल। उस दिशा में हम अपना कार्य कर नहीं रहे होते, केवल ख्वाबों की दुनिया में बैठे होते हैं। इसलिए निराधार जो महत्वाकांक्षाएं होती है वो हमें थकाती हैं, क्योंकि हम हर दिन खुद को असफल महसूस करते हैं। और आवेग जो है महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा दुश्मन है। आवेग का अर्थ ही है बिना सोचे तुरंत एक्शन रिएक्शन दे देना, प्रतिक्रिया दे देना।
1: और इसीलिए केवल आवेग में जो निर्णय लिए जाते हैं वो हमें बहुत ज्यादा भविष्य में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जैसे हर थोड़े समय के बाद अपने करियर की फील्ड को बदल लेना, जॉब को बदलना, दिखावे में आकर ईएमआई की सुविधाओं पर चीजें लेते जाना, गुस्से में इस्तीफा दे देना अपने नौकरी पर, किसी से रिश्ता तोड़ देना। तो आवेग में किसी भी तरह का निर्णय हो, चाहे वो निजी तौर पर हो या आपके कामकाजी तौर पर हो, ये आपको तकलीफ तो देगा ही देगा।
0: बिल्कुल देगा। और आपका जो एक हर्डल आपकी जिंदगी में हमेशा आती रहेगी आपके इस व्यवहार से भी।
1: जी,
0: ऐसी तमाम समस्याओं का समाधान यही है चंचल कि महत्वाकांक्षा में अनुशासन को हम जोड़ें। सबसे बड़ी बात है कि भविष्य न तो सिर्फ सपने देखने से बनता है और न ही जोश से बनता है। एक सूत्र याद रखें हम कि महत्वाकांक्षा दिशा है, अनुशासन मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है, और आवेग जो है वो स्पीड ब्रेकर है।
1: हाँ, यानी कि जब भी आवेग आए तो थोड़ा थम जाइए, रुक जाइए, अपनी गति को धीमा कर दीजिए। और महत्वाकांक्षा सिर्फ दिखावे के लिए ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है मंदाकिनी जी।
0: बिल्कुल,
1: असली महत्वाकांक्षा शोर नहीं करती, वो चुपचाप से रोज हमें जगाती है। क्योंकि हमारी अगर कोई सच्ची महत्वाकांक्षा है तो वही हमारा भविष्य बना सकती है, अगर तीन चीजों से हम उसको जोड़ दें, अनुशासन, धैर्य और भविष्य।
0: बिल्कुल, और भविष्य में कुछ अच्छे आपको नतीजे चाहिए तो अपनी महत्वाकांक्षा

0: वो थोड़ा छोटा कर ले, छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। 5 साल का लक्ष्य सीधे न देकर उसे 6 महीने के टुकड़ों में तोड़कर आप तैयारी कर सकते हैं, है ना।
1: और कोई भी बड़ा फैसला अगर आपको लेना है, जैसे नौकरी छोड़ना है, कोई बड़ा निवेश करना है, किसी को गुस्से में जवाब देना, इन सब के लिए अपने आप को हमेशा 2 से 3 दिन का समय दे देना चाहिए कि चलिए थोड़ा रुक जाए, फिर ये काम करेंगे। अगर नौकरी छोड़ने का झट से मन में विचार आए तो नहीं, कुछ रुक जाते हैं, आज ही नहीं छोड़ना। कोई बहुत बड़ा निवेश करने का सोचा तब भी थोड़ा रुक जाइए। तो जैसे शेयर मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ बहुत जल्दी अप डाउन आ जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो कोई भी बड़ा निर्णय है थोड़ा सा रोक लें अपने आप को, क्योंकि मनोविज्ञान भी कहता है कि 90% आवेग जो है वो 72 घंटे में मर जाता है। इसी तरह से कोई बड़ा नुकसान अगर हमारा होने वाला है तो उससे भी हम बच जाते हैं।
0: बिल्कुल, आपने सही बात कही। शेयर बाजार की तरह जो सेंसेक्स ऊपर नीचे होता है ना, उस तरह से हमारे विचार भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन अगर आपका फैसला जो है दृढ़ है तो वो कभी ऊपर नीचे नहीं होगा, अटल होगा वो इरादा। तो भविष्य बनाने वाले काम का 80% समय बोरिंग होता है, रोज वही अभ्यास है, वही बचत है, वही पढ़ाई है, लेकिन जो व्यक्ति इस बोरियत को सह गया वो ही आगे निकल जाता है।
1: और हर इंसान सोचता है कि बड़ा आदमी बनना है, ये कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती, ना ही फैंटेसी है। महत्वाकांक्षा होती है हमारे भविष्य का नक्शा बनाना। और जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और नियोजनबद्ध तरीके से उस पर काम भी करते हैं तो वही महत्वाकांक्षा है जो हमारा भविष्य बनाती है, क्योंकि इसमें क्या, कब, कैसे,
0: तीनों चीजें आती है। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही चंचल तूने। और पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या कहा था,
1: क्या कहा?
0: जो हमारे कितने बड़े आइडियल हैं, आज भी
1: हम सबके लिए किसी ना किसी तरह से वो प्रेरणा के स्रोत हैं।
0: बिल्कुल, उन्होंने कहा था, सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो नींद न आने थे।
1: क्या बात,
0: मतलब सपना बड़ा रखो पर उसे पूरा करने के लिए रोज नींद कुर्बान करने की तैयारी में भी रखो।
1: बिल्कुल। और इसी तरह से हमें अगर इसे आसानी से समझना चाहें तो महत्वाकांक्षा हमें गाड़ी में बिठाती है और आवेग उसका स्टेयरिंग छीन लेता है और अनुशासन जो है वो हमें
0: मंजिल तक पहुंचा देता है। और इसलिए बड़ा सोचो पर आज के छोटे फैसले को हल्के में मत लो, क्योंकि भविष्य कल नहीं बनता, वो आज के आवेग पर काबू पाने से बनता है।
1: और देखिए हमारे साथी लिख रहे हैं कि महत्वाकांक्षा और भविष्य निर्माण, महत्वाकांक्षा वो जीवन को आगे बढ़ने के लिए दिशा देती है। सपने तभी सार्थक होते हैं जब उन्हें मेहनत, धैर्य और सही दिशा का साथ मिलता है। भविष्य अचानक से नहीं बनता, वो आज के छोटे छोटे प्रयासों और निर्णयों से आकार लेता है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण उन्होंने भी दिया है और आगे लिख रहे हैं कि साधारण परिस्थितियों से आगे बढ़कर उन्होंने भी अपने ज्ञान, परिश्रम, दृढ़ संकल्प के बल पर ही देश के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बनने का गौरव भी प्राप्त किया था।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और उनका जीवन तो हमें सिखाता है चंचल कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, बड़े सपने और निरंतर प्रयास ही हमारा भविष्य बदल सकते हैं।
1: और भी आगे संदेश हैं?
0: बस अभी तो हमने इतने ही पढ़े हैं, एक गाना सुन ले ताकि कार्यक्रम की थोड़ी दिशा बदल जाए।
2: वो है कि मर कर भी तुमको जुदा

0: चंचल
1: हाँ, तो बड़ा प्यारा गीत तुमने सुनवाया अभी, और हमारे श्रोता भी बहुत पसंद करते हैं इस गीत को, और साथ ही हमारी जो सखियाँ हैं वो पसंद करती हैं नंदना साड़ी को भी।
2: हाँ, और कई सखियाँ ऐसी भी हैं जिन्हें नंदना साड़ी के बारे में नहीं पता था। हमारी एक सखी ने लिखा भी है कि इस साड़ी के बारे में भैया इसका नाम जो है उन्होंने
1: पहली बार सुना है।
2: तो चलिए बताते हैं कि नंदना साड़ी या नंदना प्रिंट मध्य प्रदेश के कोई एकदम गुमनाम 400 साल पुरानी ये कला है। और ये साड़ी मध्य प्रदेश के नीमच जिले के तारापुरा और उम्मेदपुरा गाँव की एक कला है, और इसे वहीं के खास समुदाय के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी से आज भी जिंदा रखा हुआ है।
1: तो ये नंदना जो प्रिंट है बुनाई नहीं है चंचल, बल्कि हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग और डाबू रेजिस्ट प्रिंट की तकनीक है। यानी पहले के समय में कुछ खास जनजाति की महिलाओं के मोटे सूती घाघरे लेंगे इसी प्रिंट के बनते थे, पर अब साड़ी सूट दुपट्टा बेडशीट और सब इसी से बनने भी लग गए हैं। साथ ही नंदना साड़ी की खासियत यही है कि ये 100% प्राकृतिक और इको फ्रेंडली है। इसमें केमिकल नहीं लगता, इसके रंग बनते हैं नील यानी इंडिगो, अनार के छिलके, हरड़ा, अलेजरीन और लोहे के जंग जैसी चीज़ों से ये साड़ी बनती है, और कपड़े को नरम करने के लिए अरंडी के तेल और सोडा के पानी में इसको गलाया जाता है।
2: और देखिए ना, हमारी एक सखी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। वो कहती हैं कि मैं गुस्ताखी के लिए माफ़ी मांगते हुए अपनी सखियों को इस सखी से लेके मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगी।
1: क्या?
2: कि साड़ी के बारे में मेरा ये कहना है कि गूगल से हमें सभी तरह की जानकारी मिल जाती है, लेकिन कुछ चीज़ों की जानकारी व्यक्तिगत रूप से हम सभी बांटेंगे तो वो ज़्यादा परफेक्ट होती है। तो अगर किसी के पास इस टाइप की साड़ी या इस टाइप के कपड़े होते हैं तो वो अपनी बात को साझा करें, और ये बड़ी अच्छी बात लिखी है।
1: हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात, इन्होंने हमारी बात कह दी एक तरह से। हम भी अपनी सखियों से अक्सर कहते हैं कि भाई आपके पास ये नंदना या कोई भी साड़ी है तो उसका जिक्र कीजिए। अभी भी हम कहेंगे अगर आपके पास नंदना साड़ी है और या आप कभी लेने गई थी, आपको पसंद आई, आपने किसी को गिफ्ट दी, तो उसका जिक्र अभी आप कर सकती हैं, तो हम उन्हें शामिल कर लेंगे।
2: तो ये जो साड़ी है इसका लॉट जो है वो लगभग 800 मीटर का होता है, और उसे तैयार करने में करीब करीब 18 स्टेप और 25-30 दिन की मेहनत लग जाती है। इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें कपड़े को गलाना, अरंडी के तेल में भिगोना, सोडे से धुलाई करना, हरड़ा का पाउडर लगाना, बिछलाई यानी कि गोंद और मिट्टी की छपाई होती है ना, उसको रोकना, ब्लॉक की छपाई, नील में रंगाई, धूप में सुखाना, फिर अंत में धुलाई, और इतने स्टेप से होकर जब ये गुजरता है ना, तभी कपड़ा जो है वो पक्का
1: होता है। यानी ये वो हीना की तरह हो गई, पिसकर ही हीना जो है पहनती थी। अंबा का मतलब है कि इसे साड़ी और गर्भावस्था के समय शुभ माना जाता था, और जलम यानी बूटा का मतलब है समृद्धि का प्रतीक। तो आजकल इनमें अमरूद, यूकेलिप्टिस, सागवान, नीम के पत्तों के इको प्रिंट भी

0: बन रहे हैं।
1: और इस साड़ी में जो है रंग का विज्ञान और इसकी मान्यताएं वो भी अलग अलग हैं। नीले और हरे रंग जो हैं वो इसीलिए खेत में जो काम करने वाले होते हैं उनके लिए होता है ताकि वो गंदा कम दिखे।
0: अच्छा।
1: और नील को सबसे शुभ भी माना जाता है, इसीलिए कारीगर भी ये मानते हैं कि गाय जो है वो नील का पानी पीती है तो ताकतवर बनती है, और नील के लगे हाथ से खाना खाने से पेट की बीमारियां भी नहीं होती, कुछ पारंपरिक मान्यता है वहां।
0: अच्छा, ऐसा। तो ये साड़ी बनाते समय इन सब बातों का भी ख्याल रखते हैं। और नंदना साड़ी में जितनी बारीकी से काम किया जाता है तो साड़ी की कीमत भी उतनी ज्यादा, यानी एक असली हाथ की बनी नंदना साड़ी 2500 से लेकर 8 से 10 हजार तक की होती है। और पहले तारापुर उमेदपुरा में लगभग 100 से ज्यादा परिवार ये काम करते थे, और अब सिर्फ 8-10 परिवार ही बचे हैं, क्योंकि ये बहुत थकाऊ और समय लेने वाला काम है, और बाजार में इसका केमिकल प्रिंट भी मुश्किल से मिलता होगा, तो कम लोग अब इसको बनाते हैं।
1: हाँ, क्योंकि कई बार कारीगरों को भी लगता है ना कि मेहनत बहुत ज्यादा है और उसकी अपेक्षा में जो दाम है वो उनको नहीं मिल पाते, और इस तरह से जो बहुत सारी कलाएं हैं वो लुप्त होती जा रही हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो हम सभी को मिलकर इनको बढ़ावा देना चाहिए, और इसीलिए सरकार अब इसे GI टैग दिलाने की प्रक्रिया में है और इसका जरिया बना रही है। बनवारी जरिया, पवन जरिया को राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 और स्टेट अवार्ड 2002 और 2022 में भी मिल चुका है। व्यवसाय, राजनीति, फिल्म जगत, हर क्षेत्र में काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो भी इस साड़ी को अपनी पसंद में शुमार करती हैं।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर है नंदना साड़ी। तो हमारी सखियां बताएं कि उनके पास नंदना साड़ी है भी कि नहीं।
1: तो हम एक गीत सुन लें।
0: हाँ।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं।
1: बिल्कुल, तो चंचल, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस इन दिनों हम मना रहे हैं, विश्व कपास दिवस, और इसकी बड़ी महत्ता है। हम सभी जानते हैं कि ये दिन जो है आज के दिन खास मनाया जाता है, और कपास को सफेद सोने के नाम से भी हम जानते हैं।
0: हाँ।
1: क्योंकि ये सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों की रोजी रोटी भी है।
0: सही कहा मंदाकिनी जी। और इस दिन का आयोजन, इसकी जो पहल की गई थी वो 7 अक्टूबर 2019 को जिनेवा में हुई, जब विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय में पहली बार कपास दिवस मनाया गया था। और इसे शुरू करने की मांग अफ्रीका के 4 सबसे कम विकसित कपास उत्पादक देशों ने की थी। ये 4 देश हैं, बेनिन, बुर्किनो फासो, चाड और माली। और इन देशों ने कॉटन फोर को, इन देशों को कॉटन फोर भी कहा जाता है। आगे चलकर बाद में कोट डी या आईवोर भी इसमें शामिल हो गए।
1: हाँ बिल्कुल, 30 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी और एक प्रस्ताव पारित करके 7 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में मनाने का फैसला किया। और ये दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कपास दुनिया के 5 महाद्वीपों में करीब 75 से ज्यादा देशों में उगाई जाती है
0: जी।
1: और दुनिया भर के 10 करोड़ परिवार सीधे कपास उत्पादन से जुड़े हैं और लगभग 28 करोड़ लोग टेक्सटाइल सेक्टर में भी काम करते हैं।
0: बिल्कुल, जब भी हम कोई कपड़ा पहनते हैं तो इस बात के महत्व को हम जरूर समझें कि बहुत सारे परिवार हैं जो इससे रोजी रोटी भी कमाते हैं, और बहुत सारे कहते ना कि अलग अलग कड़ियों से होकर कोई कपड़ा हम तक पहुंच पाता है।
1: वही तो अभी आपने कहा ना कि देखिए करीब 75 से ज़्यादा देशों में ये कपास होती है, कितना महत्वपूर्ण है ये और कितना रोजगार मिलता है इससे ना।
0: और बहुत सारे कम विकसित देश हैं उनके लिए कपास का कुल निर्यात 50% तक हिस्सा है। कपास से सिर्फ कपड़ा नहीं, कपास के बीज का तेल, पशु आहार और कागज़ भी बनता है। महिलाओं की भी बहुत बड़ी भागीदारी होती है इसमें। कपास चुनने, उसकी प्रोसेसिंग में 40% से ज़्यादा काम जो है वो महिलाएँ ही करती हैं। खाद्य और कृषि संगठन का हर प्रयास हर साल जैविक कपास, कम पानी वाली खेती और किसानों को उचित दाम मिले, इसी पर होता है।
1: हाँ, और अगर हम अपने देश की बात करें भारत की, तो भारत और कपास का बहुत ही गहरा संबंध है चंचल, और इसीलिए ये दिन भारत के लिए बहुत खास है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। दुनिया की 26% कपास ही उगती है। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, ये मुख्य उत्पादक राज्य हैं। और भारत की कपास को काली मिट्टी में उगने के कारण उच्च गुणवत्ता का भी माना जाता है।
0: बिल्कुल, कपास की खेती में किसानों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां होती हैं ना, वो है जलवायु परिवर्तन, कीटनाशकों का ज़्यादा उपयोग, किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कम दाम मिलना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं वो होती हैं, चुनौतियां होती हैं। इसीलिए विश्व कपास दिवस मनाने का उद्देश्य यही होता है कि कपास को सिर्फ एक वस्तु या पदार्थ या नहीं समझा जाए, बल्कि गरीबी उन्मूलन और सतत विकास के साधन के रूप में भी इसको हम देखें।

0: और वैसे भी संयुक्त राष्ट्र ने इसकी परमानेंट थीम है, स्थाई थीम जो रखी हुई है वो है कॉटन फॉर गुड, लेकिन इस साल इसे एक उप शीर्षक इसके साथ जोड़ा गया है, यानी 2026 के लिए जो थीम है वो है कॉटन फॉर गुड बिल्डिंग प्रॉस्पेरिटी थ्रू ट्रेड ट्रांसफॉर्मेशन एंड पार्टनरशिप। इसका मतलब है कपास अच्छाई के लिए व्यापार परिवर्तन साझेदारी के माध्यम से समृद्धि का निर्माण
1: करना। बिल्कुल,
0: तो चलिए अभी गीत सुन ले
1: जी।

0: बहुत ही सुंदर गीत तुमने सुनवाया है चंचल, और हमारी सखियां और सखा इस गीत का आनंद भी ले रहे होंगे जैसे कि हम प्रकृति का आनंद लेते हैं।
1: हाँ। और प्रकृति जो शब्द है ये संस्कृत का बहुत गहरा शब्द है जो प्र और क्र इनसे मिलकर, जो इसके मूल शब्द हैं उनसे मिलकर बना है, और इसके कई मतलब अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से। प्रकृति का सामान्य अर्थ वैसे अगर देखा जाए तो हम सभी जो समझते हैं वो नेचर या प्रकृति कुदरत से ज्यादा समझते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और प्रकृति मतलब वो जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया है, जैसे पेड़ पहाड़ नदी जानवर मौसम पर्यावरण ये सब चीजें, या हम कहते हैं ना अपनी प्रकृति के बारे में कि हम अगर किसी
0: प्रकृति ये है
1: तो वो भी हमने नहीं बनाई है। प्रकृति का मतलब ही ये है जो कुदरत
0: ने बनाया है। जी, तो आज हमने शब्द जो दिया था हमारे श्रोताओं को प्रकृति, और श्रोताओं ने अपने अपने विचार हम तक पहुँचाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिसका निर्माण प्रकृति, जिसका निर्माण इंसान ने नहीं ईश्वर ने किया है, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, जिसमें इंसान पेड़ पौधे जीव जंतु नदियां पर्वत समुद्र वायु मिट्टी समेत प्राकृतिक प्रक्रियाएं सभी शामिल हैं। संस्कृत में प्रकृति शब्द में प्राकृ से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है मूल स्रोत या मूल आधार जिससे कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, और इसे कायम बनाए रखने में हम इंसानों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। प्रकृति ने अपनी गोद में बिठाकर हर जीव को उनकी जरूरत के अनुसार सुख सुविधा दी है, उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी हम इंसानों की बनती है। इंसान का प्रकृति से हो भाईचारा, यही है पैगाम हमारा।
1: क्या बात है, अच्छा संदेश है। और प्रकृति शब्द पर हमारे जो श्रोता है वो विचार अपने अपने प्रकट कर रहे हैं। एक संदेश में लिखा गया है, प्रकृति का व्यापक अर्थ है संपूर्ण भौतिक जगत ब्रह्मांड और

0: इसमें पेड़ पौधे नदियां पहाड़ जीव जंतु पर्यावरण शामिल है जो इंसानों द्वारा नहीं बनाए गए प्रकृति प्रदत्त है। किसी भी प्राणी वस्तु का जन्मजात गुण उसका स्वभाव या प्रकृति कहलाता है। आग की प्रकृति गर्मी देना है। मनुष्य का शरीर भी प्रकृति के 5 बुनियादी तत्वों क्षिति यानी मिट्टी, जल पावक अग्नि, गगन आकाश और समीरा यानी वायु से मिलकर बना हुआ है। साधु और बिच्छू का डंक मारना उसकी प्रकृति है और उसके बाद साधु को उसी को
1: पानी से बचाना
0: ये साधु की प्रकृति।
1: बहुत सुंदर बात, इन्होंने एक शब्द से कितनी ही बातें निकाल दी हैं जिनका हमने कहा था कि आप किस अर्थ में प्रकृति को लेते हैं। प्रकृति, एक श्रोता लिखते हैं कि प्रकृति केवल हमारे चारों ओर फैले पेड़ पौधे नदियां पर्वत और खुले आसमान का नाम नहीं है बल्कि जीवन का मूल आधार है। मनुष्य का अस्तित्व पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है क्योंकि ये हमें बिना किसी भेदभाव के सांस लेने के लिए, हवा पीने के लिए पानी और जीने के लिए भोजन भी देती है।
0: मतलब प्रकृति कहते हैं ना कि हमारे स्वभाव को प्रकृति कहा जाता है कि भाई इस इंसान की प्रकृति है बहुत गुस्सा करना, इस इंसान की प्रकृति है बहुत नरम शांत है ना, तो हमारे स्वभाव को भी प्रकृति कहा जाता है। तो इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था कि प्रकृति के अलग अलग अर्थ अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हो सकते हैं। प्रकृति, एक संदेश में पढ़कर सुना रही हूं मंदाकिनी, जिसमें लिखा है कि प्रकृति केवल हमारे चारों ओर पेड़ पौधे पर्वत नदियां खुले आसमान का नाम नहीं बल्कि ये जीवन का मूल आधार है। मनुष्य का अस्तित्व पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है क्योंकि ये हमें बिना किसी भेदभाव के सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और जीने के लिए सबसे जरूरी चीज भोजन देती है।
1: बहुत अच्छा आपने लिखा है, कम शब्दों में गहरी बात लिख दी है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति बड़ा बेमिसाल मुद्दा है, प्रकृति के साथ रहना और बड़ा होना सभी को लुभाता है। शाम को अस्त हुआ सूरज के नीचे सिर पर पगड़ी बांधा गडेरिया जब अपनी भेड़ बकरियों को हांकता है तो बड़ा लुभावना लगता है। सुबह में सिर पर डोकरी लेकर निकलती है मलान कितनी बेमिसाल लगती है, जब उसके हाथों में चूड़ियाँ और सिर पर धानी चुनरियाँ उड़ी हो, गली से जब वो जाती हैं नैनाभिराम लगती हैं।
0: एक संदेश में लिखा है, प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, हमारी माँ के समान है। यदि प्रकृति स्वच्छ सुंदर रहेगी तभी हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।
1: वहीं एक श्रोता का कहना है कि हमारे घर के आसपास पेड़ बहुत ही कम है इसलिए मैंने तो छत पर ही करीब 40 गमले रख लिए हैं, नियमित देखभाल करती हूँ और इस तरह प्रकृति के बीच कुछ समय गुजार लेती हूँ। बिल्कुल अच्छा कहा आपने, गुजर जाता है आपका वक्त ऐसे तो।
0: और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि वो प्रकृति के बीच में आनंद लेते हैं, तो भाई इस प्रकृति की रक्षा सुरक्षा हमारे ही हाथों में है।
1: बिल्कुल,
0: और अब हमारे हाथों में है कि हम
1: गीत सुनवा दें।

0: अब हम क्या ढूंढने वाले हैं कि गुड़ हमने कहाँ रखा है रसोई
1: हाँ,
0: में।
1: हाँ भाई, और इतने मीठे मीठे गाने सुन रहे हैं, थोड़ी सी मिठाई की बात ना हो, वो भी ऐसा मीठा जो हमारे सेहत के लिए नुकसान भी ना पहुंचाए, वो थी गुड़ की मिठाई।
0: बिल्कुल वही तो हमने कहा कि गुड़ एक पारंपरिक और कहते हैं कि अपरिष्कृत जो है प्राकृतिक मीठा ठोस पदार्थ इसको माना जाता है, जिसे गन्ने के रस या ताड़ या खजूर के रस को उबालकर और गाढ़ा तैयार करके बनाया जाता है, है ना। तो ये गुड़ जो है सफेद चीनी के बिल्कुल विपरीत होता है, प्राकृतिक गुड़ है। इसमें आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है और जिंक जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ मौजूद रहते हैं।
1: तो चलिए क्यों ना व्यंजन भी इस कहते हैं ना कि सेहतमंद जो चीज़ है गुड़, उसे ही बनाया जाए।
0: बिल्कुल।
1: तो गुड़ के शक्करपारे बनाने के लिए एक बाउल में एक कटोरी आटा ले लें और एक बड़ा चम्मच भर के मोयन डालें। एक बाउल में थोड़ा सा पानी डालकर गुड़ को गला दीजिए ताकि वो पहले से ही पिघल जाएगा,
0: ठीक है।
1: और गैस पर जलाकर इसको या तो पिघला भी सकते हैं अगर आपने पहले से नहीं रखा है तो। इस पिघले हुए गुड़ के आटे से पानी को गूंदना है।
0: इसके पानी से आटा को गूंदना है, हाँ। गुड़ के आटे से नहीं गूंदना
1: हाँ।
0: है।
1: गुड़ का जो पानी हुआ है ना, हाँ। जो गाड़ी गाड़ी चाशनी
0: लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि फटाफट बनाऊं और खाऊं।
1: तो ये जो गुड़ की चाशनी बनाई, इसे आपने आटा गूंद लिया और कढ़ाई में गर्म गर्म घी या तेल डालकर उसमें धीमी धीमी आंच पर तलिए तो शक्करपारे तैयार
0: हो जाएंगे। वाह क्या बात है, इच्छा हो गई है खाने की। और एक देखिए गुड़ की लापसी भी हमारे घरों में बनती है चंचल। गेहूं के दलिये को घी डालकर हल्का भूरा होने तक थोड़ा हम सेक लेते हैं, फिर उसमें गर्म पानी डालकर कुकर में एक सीटी दे देते हैं और गुड़ में पानी डालकर पिघला लें, फिर छानकर कुकर में बने दलिये में डालें, थोड़ा और पकाएं, देसी घी डालें, इलायची डालें, कुछ मेवा डालना चाहें तो डाल दें। पौष्टिक और स्वादिष्ट जो है लापसी तैयार हो जाती है और पुराने समय में गाँवों में शादी ब्याह में भी ये बहुत ज्यादा बनाई जाती थी।
1: सच्ची में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है।
0: मीठा मिष्ठान के रूप में लापसी ही बनाई जाती थी। बचपन में हमने बहुत जगह लापसी का सेवन किया है।
1: और जब हम कहते हैं ना कि जब किसी का स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो पेट को हल्का रखने के लिए भी खिचड़ी और लापसी इसी तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं, विकल्प होते हैं खाने के लिए। तो गुड़ की खीर के बारे में भी हमारे श्रोताओं ने लिखकर भेजा है कि हमारे प्रांत में छठी और जन्मदिन की नई बहू, जन्मदिन या हो या कोई नई बहू आती है तब त्योहारों पर चने की दाल पूरी गुड़ की खीर जरूर बनती है और छठ पूजा में भी जो गुड़ की खीर है वो बनाई जाती है और इसी से सूर्य देवता का भोग लगाया जाता है। तो बासमती चावल में दूध को पकाना है और जब खीर गाढ़ी हो जाए पककर तब गुड़ को अलग से पिघलाकर थोड़ी ठंडी होने पर ऊपर से पिघले हुए गुड़ को मिला देना है, फिर इलायची नारियल और किशमिश मिला देने या जो भी आप मेवे डालना चाहें वो मेवे डाल सकते हैं। इसी तरह से स्वादिष्ट खीर तैयार हो जाती है। एक दूसरा तरीका इन्होंने बताया है कि गुड़ के पानी में चावल को पका सकते हैं, क्योंकि चावल पकने में बहुत ज्यादा समय लगता है और जब चावल पक जाएगा तो ऊपर से गाढ़ा किया हुआ रबड़ी नुमा दूध है वो मिला दीजिए तो खीर तैयार हो जाती है। इस तरह की खीर में ये ध्यान रखा जाता है कि गर्म गर्म खीर में या दूध में जब गुड़ डाला जाता है तो फट जाता है, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है।
0: हाँ मतलब बनाते समय हमें ध्यान तो रखना ही पड़ता है, देखिए कि कोई चीज़ से किसी तरह का नुकसान नहीं हो जाए। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि गुड़ के पुए भी बनते हैं।
1: हाँ।
0: अरे मन हो गया है पुए खाने का। हमें अपना बचपन याद हो है जहाँ हमारी माँ हमें गुड़ के पुए खिलाया करती थी। ये लिखते हैं कि आटे के साथ मिलाकर और जो मुझे पसंद है वो है पूरन पोली, जिसमें चने की दाल को भिगाकर उसको उबालकर गुड़ के साथ घी में सेकते हैं और उसमें गुड़ डालते हैं, साथ में जो सूखे मेवे पसंद हो वो डाल दें, पेस्ट तैयार करें, आटे की लोई में भरकर घी से सेकें और जो बहुत ही स्वादिष्ट भी लगती है।
1: तो भाई इतने मीठी चीजों की बात चल रही है तो मीठा गाना भी तो होना चाहिए।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ तो चंचल, हमारे श्रोताओं को भी इंतजार है कि आगे हम गुड़ के लेकर क्या रेसिपी बताने वाले हैं, है ना।
1: तो गुड़ को लेकर हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि गुड़ हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, खासकर आने वाली पीढ़ियों के लिए। और कुछ मिठाइयां हैं जैसे गुड़ के शक्कर पारे, गुड़ का रसगुल्ला, ये इन्हें हमारे जो श्रोता लिख रहे हैं इनको बड़े पसंद है। और चीनी के रसगुल्ले जो तैयार किए जाते हैं, इसमें चाशनी की जगह अगर गुड़ की चाशनी बना दी जाए तो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। और गुड़ की तो हम पंजीरी भी बनाते हैं, और ये पंजाबी हैं शायद लिख रहे हैं कि पंजाबी में तो ये बहुत ज्यादा बनाई जाती है। और गुड़ को भून कर इसकी पंजीरी तैयार की जाती है, घी डाला जाता है, भूना जाता है, पूरे तरीके से इसको बनाया जाता है, तो बहुत स्वादिष्ट लगती है।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सर्दियों में गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं, तो गुड़ से बनाने से वो पौष्टिक हो जाते हैं। गुड़ के गुलगुले बनाइए, और गुड़ के भजिए कह रहे हैं, और मीठे भजिए बना सकते हैं। गुड़ को गर्म पानी में पिघलाकर उसे छानकर उसमें आटा, नारियल की कतरन और इलायची डालकर घोल बनाकर तेल में पुए तल लीजिए। गुड़ और चने की दाल की पूरन पोली भी आप बना सकते हैं, है ना।
1: इसी तरह से जब भाई चाय का समय होता है ना, तो बहुत सारे लोगों को
0: 3 बजे चाय चाहिए होती है। इन्होंने मेरे मन की बात कह दी, मैं जब से सोच रही थी कि गुड़ की चाय जब हम पीते हैं, या कई बार चाय फीके रखते हैं और हाथ में गुड़ की डली लेकर भी सर्दियों के दिनों में हम लोग ऐसा चाय का सेवन करते थे, तो लिख रहे हैं कि ऐसे भी गुड़ की चाय बनाकर पी जा सकती है
1: जी। और बिना फटे स्वादिष्ट और परफेक्ट गुड़ की चाय बनाने की आसान सी विधि भी इन्होंने लिख कर भेजी है कि इसके लिए सामग्री चाहिए 2 कप चाय आप दोनों दीदियों के लिए।
0: क्या बात है।
1: 1 कप पानी, 2 कप दूध जो कि अलग से गर्म किया हुआ है, यानी कि पूरी तरह से औंटाया हुआ खौलाया हुआ ये दूध है। चाय पत्ती चाहिए 2 छोटे चम्मच, और चाय पत्ती की मात्रा आप अपने हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा कम कर लीजिए, आपको बहुत कड़क पीनी है तो ज्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें चाहिए गुड़ थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ या पाउडर के फॉर्म में बनाया हुआ, 2 से 3 चम्मच चाहिए, या फिर स्वाद के अनुसार थोड़ा सा कम और ज्यादा भी कर लीजिए। अदरक चाहिए 1 इंच कुचला हुआ, हरी इलायची चाहिए 2, वो भी अच्छे से कुचली हुई या पाउडर बनाया हुआ। इसे बनाने के लिए एक पैन में या सॉस पैन में 1 कप पानी डालना है, कुचला हुआ अदरक और हरी इलायची डालकर पानी को अच्छी तरह से उबलने देना है। जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें चाय की पत्ती डालनी है, 2-3 मिनट तक इसे भी उबालें ताकि अच्छा रंग और स्वाद चाय पत्ती का आ जाए। अब इसमें पहले से गर्म किया हुआ दूध है वो डाल देना है। दूध को हमेशा उबाला हुआ या गर्म किया करके ठंडा किया हुआ दूध डालने से चाय फट सकती है, ऐसा ही होने आगे लिखकर बताया है।

0: और दूध डालने के बाद चाय को धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, फिर गैस को बंद कर देना है। बंद करने के बाद जो कद्दूकस किया हुआ या पाउडर के फॉर्म में लाया हुआ गुड़ है वो डाल देना है, फिर अच्छी तरह से मिला लीजिए। छान कर गर्मा गर्म गुड़ की चाय का मजा
1: आनंद ले सकते हैं। तो आपने 2 कप चाय भेजी है ना, ये दोनों कप मुझे ही पीने पड़ेंगे क्योंकि चंचल दीदी जो है चाय नहीं पीती है।
0: तो चलिए आपके लिए डबल चाय हो जाएगी, लेकिन मैं जो है ना गानों की मिठास से ही काम चला।
1: चलिए फिर।

0: मन ही मन में लड्डू फूटे, अगर ये लड्डू गुड़ के होंगे ना तो ज्यादा सेहतमंद होंगे।
1: और अभी तो हम गुड़ के लड्डू की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि गुड़ की बात है तो लड्डू भी गुड़ के ही होंगे। गुड़ की बात निकली है तो एक श्रोता लिखते हैं, कह दूं कि दोपहर के भोजन के साथ गुड़ जरूर लेता हूं, भोजन के पूरा होने के बाद गुड़ के साथ एक रोटी खा लेता हूं और भोजन के अंत में गुड़ खाने से पाचन क्रिया आसानी से हो जाती है,
0: क्योंकि गुड़ ही गुड़ है।
1: गुड़ ही गुड़ है।
0: और आगे एक श्रोता लिखते हैं कि हम भी गुड़ और आटे के मालपुए खाने हैं और आपकी बातें सुनकर हमें भी लग रहा है कि हम इसे जरूर बनाएंगे।
1: वहीं एक श्रोता लिख रही है कि अब सर्दियां आने वाली हैं और गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में ये बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है।
0: तो भाई आप जरूर गुड़ के व्यंजन का मजा लीजिए, लेकिन कार्यक्रम का समय क्योंकि पूरा हो चला है तो हमें जाने की इजाजत भी दे दीजिए।
1: बिल्कुल। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
0: और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुनने वाले हैं उन्हें जिनकी फिल्म हनुमान अंश इन दिनों हमारे मन को छू रही है, खास तौर से इसके कुछ गीत जैसे कि ये
1: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: और ये गीत तो हमारे दिल में घर ही कर चुका है।
2: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: तो आज हनुमान अंश फिल्म की शूटिंग और सृजन से जुड़ी बातें हमसे साझा करने आए हैं निर्देशक विशाल चतुर्वेदी। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता
3: सिंह।
0: आइए सुनते हैं इस दिलचस्प बातचीत की पहली कड़ी।
4: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे लेखक निर्देशक की आमद है जो इन दिनों बहुत चर्चा में हैं। ये हैं युवा लेखक निर्देशक और आजकल इनके नाम के दीवाने हो रहे हैं लोग, वो हैं जाने माने निर्देशक और लेखक विशाल चतुर्वेदी जी। उनकी फिल्म बहुत हिट हुई है। विशाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
5: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए ममता जी।
4: विशाल जी, सबसे पहले तो बधाई लीजिए अपनी फिल्म की हनुमान अंश। हमने भी देखी और समूह के साथ देखी, बहुत अच्छी लगी, तो बहुत बहुत बधाई।
5: धन्यवाद।
4: और अब हमें बताइए कि ये हनुमान अंश की कहानी ने कैसे आपके दिल में दस्तक दी, कैसे आपके मन में विचार आया?
5: तो एक तो हनुमान अंश टाइटल है और दूसरा हनुमान अंश की जो कहानी है वो श्री नीलकंठ बाबा महाराज जी के बारे में है, जो भारत के पिछले सदी के आई थिंक सबसे रिवर्ड संत आज की डेट में कहे जा सकते हैं। साईं बाबा भी थे और इसके अलावा बहुत सारे श्री अरविंदो, ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं जिसमें श्री नीमकरवी बाबा की जो कहानी है वो मुझे बहुत खास तौर पे इंटरेस्ट इसलिए करती है क्योंकि बहुत सादगी से भरी हुई है और किसी तरह का कोई आडंबर उनके जीवन में था नहीं
4: जी।
5: इसके अलावा वो मतलब हर तरह की चमत्कारों से वो हरदम भागते रहे और किसी एक स्थान पर रुक के उन्होंने किसी तरह का एक अपना एक साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश नहीं की। उनका उद्देश्य सिर्फ जगह जगह पे हनुमान जी के मंदिर बनाना और लोगों को भूखों को भोजन, भक्तों को प्रसाद, ये उनका एक टोटल आइडिया था। और भी उनकी कुछ सीख थी जो जीवन में देते थे पर वो आध्यात्मिक सीख होंगे, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में, एक मानव के रूप में मुझे वो बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं इंटरेस्ट करते हैं। प्लस उनकी चेहरे पे जो एक एक अजीब सी कोई ऐसा अट्रैक्शन है कि हर व्यक्ति आभा है, कुछ तो है ऐसा जो कि हर व्यक्ति उनको देख के ना देखते ही रह जाता है, तो ये भी एक चीज़ थी। इसलिए मुझे लगा कि ये होना चाहिए। पर मैं खुद से उनको फॉलो करता हूँ कुछ पिछले 20 साल से, और जब मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था, पहली पोस्टिंग मेरी हल्द्वानी में थी, वहाँ से एक मेरे साथ भी कुछ ऐसा इवेंट हो गया था जिसकी वजह से मैं नया पर्सपेक्टिव मिला लाइफ को लेकर कि ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं उनकी कहानी बहुत समय से फॉलो कर

0: जी हनुमान अंश टाइटल मुझे नीप करोरी एक गांव है उत्तर प्रदेश में जहां पे उन्होंने साधना अर्ली एज में की, वो अपने फिल्म में दिखा
1: हुआ। बिल्कुल।
0: तो वहां पे जब मैं गया था रिसर्च के लिए तो वहां के लोग उनको आंशिक हनुमान और आंशिक अवतार हनुमान का बोलते थे, हनुमान जी का बोलते थे, जिस वजह से मुझे वो टाइटल बहुत अच्छा लगा और मैं उनके नाम से फिल्म नहीं बनाना चाहता था। पहले दिन से क्लियर था कि मुझे उनके नाम से फिल्म नहीं बनानी क्योंकि वो इतने पॉपुलर हैं कि वो ऐसा कहीं से प्रतीत ना होने लगे कि मैं उनके नाम पे राइड कर रहा हूँ। और प्रतीत होने से ज़्यादा खुद से स्वयं से भी अंदर से भी वो इच्छा होती है ना कि आप एक कॉन्सेप्ट को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ना कि किसी तरह की बायोपिक पे आप राइड करके कि भाई बड़ा व्यक्ति है उसकी बायोपिक बनाने मिल गई तो अब ये अच्छा उसमें नंबर्स आएंगे, यू विल ऑलवेज गेट मीन लॉट ऑफ, आपको बहुत तालियां मिलेंगी, अप्रिशिएशन मिलेगा। इंस्टेड ऑफ दैट क्या हम समाज को क्या दे रहे हैं कॉन्सेप्ट लेवल पे, आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट के लेवल पे, तो ये आई थिंक उद्देश्य था। इसलिए हनुमान अंश और श्री नीम करोली बाबा, दिस इज द रीजन एंड दिस इज हाउ उनकी आमद हुई।
1: तो नीम करोली बाबा को एक भक्तिभाव से लोग देखते हैं और कुछ चमत्कार के रूप में भी देखते हैं, भले ही वो चमत्कार ना करते हों, और रहस्य के रूप में भी। तो ये उनके पूरे व्यक्तित्व को फिल्म में आपने उतारने की कोशिश की है, तो किस तरह की चुनौतियाँ आई, कौन सा भाव पक्ष आप ज़्यादा लाना चाहते थे और आपको लगा कि ये सही हुआ?
0: मुझे लगता है कि उनकी मैंने एक मानवीय कहानी बोलने का ज़्यादा प्रयास किया है, चूंकि वो स्वयं चमत्कारों से बचते थे तो हम भी चमत्कारों से फिल्म में बचे हैं
1: जी।
0: लीलाएं होती हैं जब आपके कोई कोई संत महात्मा आपके जीवन को देख लेता है, वो अकाल जो बोलते हैं ना कि वो उनको उनको त्रिकालदर्शी होते हैं, वो समय को देख सकते हैं, आपके पास्ट को भी देख सकते हैं, आपके फ्यूचर को देख सकते हैं, तो वो आपको आपके अंदर एक ऐसा छोटा सा चेंज लेके आते हैं जो ऑन अ ट्रेजेक्ट्री लेवल, अगर वो आज उन्होंने 0.5% का अगर उन्होंने एंगल चेंज किया आपकी लाइफ का, डायरेक्शन रीडायरेक्ट किया आपको, तो इन द कोर्स ऑफ टाइम 10 years और 20 years कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। लाइक मेरा अपना स्वयं का एक वो है कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाज़ा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम 20 इयर्स बैक। तो इसको लीला बोलते हैं, तो इसको चमत्कार नहीं बोल सकता मैं, चमत्कार तो कोई जादूगर भी कर सकता है, वो होते ना कि हवा में ऐसे कुछ करते हैं, कुछ ले आते हैं, तो चमत्कार ही व्यक्ति लोग उनके उनको चमत्कारी बोलते हैं पर वो कभी एक्सेप्ट नहीं करा उन्होंने। उन्होंने हरदम बोला कि हनुमान जी ने किया होगा, आपका राम जी कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई, ऊपर वाली कृपा हो गई, तो इस तरह से। तो मैं मानवी उनके साइड को ज्यादा तवज्जो देने का प्रयत्न मैंने किया
1: जी। ये फिल्म में आपने दर्शाया भी है जब वो क्रांतिकारी अंदर कमरे में है और वो बेल बजाते हैं तो वो पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला कि मुझे भूख लगी है, तो ये क्लियर है कि जैसे वो चेहरे के भाव पढ़ लेते हैं या इंट्यूशन हुआ है, इस बात को आपने दर्शाया भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आज का जो युग है इसमें ज़रूरी है कि चमत्कार से दूर जाया जाए। और आपने बताया कि, और हम सभी जानते हैं कि आपने मेडिकल की पढ़ाई की, MBBS पढ़ रहे थे और अचानक फिल्मों की ओर रुख कर लिया, कैसे ये संभव हुआ, कहाँ से आपके मन में ये बदलाव आया?
0: मुझे लगता है कि लखनऊ, जब मैं रहने वाला बुंदेलखंड का हूँ, वहीं पढ़ाई पला बड़ा भी वहीं पे हूँ और मैं पढ़ाई भी वहीं से की है, जालौन जिले में एक छोटी सी जगह है कोंच, वहाँ पे मैंने अपनी 10+2 तक पढ़ाई की, उसके बाद एक साल ग्वालियर था, वहाँ से लखनऊ आ गए और लखनऊ में जो एक जैसे बोलते हैं वहाँ की जो सभ्यता है, वहाँ की जो अपनी अपनी तहजीब है
1: जी।
0: वो कहीं ना कहीं मैंने उसको इम्बाइब करना शुरू किया, तो पहले तो भाषा सुधरी वहाँ जाके, एक ठेठ बुंदेलखंडी और खड़ी हिंदी बोलने वाला व्यक्ति, एक थोड़ी नफासत आ जाती है, एक आपकी जबान में थोड़ा उर्दू आ जाती है, तो पोइट्री वहीं से फूटी, वहीं से मैंने म्यूज़िक में इंटरेस्ट मेरा आया। मैं जिस गली में रहता था वहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र जी जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं उनकी हवेली जस्ट घर के सामने थी, छन्नूलाल जी मिश्रा और ये सब लोग जो है ना वो गली का ही पार्ट थे, तो उसमें बहुत सारा इन्फ्लुएंस हुआ। फिर मैं भातखंडे जाना शुरू किया, फिर मैंने भातखंडे में कुछ एक साल विशारद का प्रथम वर्ष भी किया, मतलब संगीत में गायकी में।
1: अच्छा।
0: और वो एक साल ने मुझे काफी हद तक जो है ना परिवर्तित कर दिया, एक मेरा जो एक क्रिएटिव साइड होगा जो मुझे पता नहीं था वो सडनली स्फुटित हो गया, और उस वजह से मुझे लगता है कि लखनऊ हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। तो बेसिकली वो मेडिकल का सिलेक्शन होने से पहले ये सब मेरे अंदर इम्बाइब हो गया था, तो तैयारी करता था शाम को 6 बजे से वहाँ की क्लास होती थी, तो शाम को 6 बजे तक सब फिनिश हो जाता था, तो वहीं से अपने कोचिंग से लौटता था मैं और 1 घंटे की वो क्लास करके घर आता था, और उसी बीच में आगे कहीं प्ले हुआ कोई तो देख लिया या कुछ ऐसा कार्यक्रम चलता रहता है, अमरनाथ बलि नाम का एक वहाँ पे एक प्रेक्षागृह है, तो वहाँ पे प्रेक्षागृह में कुछ ना कुछ चलता ही रहता था
1: जी।
0: तो वो एक रूटीन बन गया। और फिर वो सिलेक्शन होने के बाद में मैं नहीं चाहता था कि मैं MBBS करने

0: जाऊं।
1: हाँ जी,
0: तब तक मेरा काफी इंटरेस्ट चला गया था इसमें। तो मेरी माता जी ने मुझे बोला कि तुम ये कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना हो तो कर लेना। एंड मेरा जब मैं गया, मुझे कॉलेज जो मिला वो गोरखपुर था
1: जी,
0: तो गोरखपुर का

0: लगे तो आपको वो भी अच्छा लगने लगता है। तो मैं लास्ट फाइनल प्रोफेशनल तक मैं सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ता था।
1: जी जी।
0: फाइनल प्रोफेशनल में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे सडनली मेडिसिन अच्छी लगने लगी, एज एन जब वे पीपल जब वो अच्छे हो जाते हैं, जब वो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट होता है, प्लस आप जो मानवीय शरीर है उसको आप बहुत डिटेल में देख रहे हो और कैसे रिएक्ट करता है, ऑल ऑफ दैट, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया।
1: जी।
0: तो फिर मैंने कहा कि अब जॉब भी करते हैं, और पहला जॉब इसीलिए हल्द्वानी में, पिथौरागढ़ में था एक्चुअली, कुछ महीने के बाद मैंने वो छोड़ के हल्द्वानी में आ गया था मैं, और वहाँ से ये नई ट्रेजेक्ट्री शुरू हुई, जिसे हनुमान अंश की यात्रा जिसे बोलेंगे, वहाँ से शुरू हुई। जी।
1: तो अब यहाँ पर आपने बहुत सारा जिक्र किया, गाने का भी जिक्र किया, मतलब कि ऐसा लगा कि आप गाते भी हैं, और हनुमान अंश में आपकी आवाज़ में एक गाना है जो काफ़ी प्रचलित भी है और लोग पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनना।
0: आप जो कहेंगे वो सारे गाने मुझे बहुत प्रिय हैं, हृदय में जिनकी सीताराम जो मैंने गाना गाया है वो भी बहुत क्लोज टू माई हार्ट है, और वो बहुत ही कमाल की बात है कि उसको मैंने कंपोज नहीं किया, वो अचानक से मेरे दिमाग कहीं से उतर आया हूँ।
1: जी जी।
0: और वो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी फिल्म में अपने म्यूजिक को ना इंक्लूड करूँ, मैं आया तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने ही था सबसे पहले मुंबई में, और विशाल भारद्वाज मेरे लिए बहुत, जिसे बोलते हैं ना कि वो बहुत ही मेरे लिए आइडियल थे।
1: जी जी।
0: लेकिन विशाल जी को मैंने बहुत ज़्यादा उनकी फिल्म जो है ना मकबूल को मैंने 27-28 बार देखा, मतलब लिटरली उनकी वो जो सीडी थी मेरे पास में वो घिस दिया था, मतलब ऐसा हो गया था कि स्क्रैच आ गए थे उसमें, इतना देखा मैंने मकबूल।
1: क्या बात है।
0: तो कहने का मतलब ये कि होता ये है कि आप जब आते हो कुछ करने के लिए फिर आपको समझ में आता है कि नहीं आपका अल्टीमेट गोल ये है, फिर आप ये क्यों कर रहे हो। कोशिश मैंने बहुत की कि अपने आप को अवे रखूं म्यूजिक से, क्योंकि वो मेरे लिए मेरी अपनी आत्म शांति के लिए मैं म्यूजिक करता हूँ। मेरा सुबह का रूटीन अभी पिछले एक साल से तो बिगड़ गया, लेकिन सुबह का रूटीन मेरा एक हनुमान चालीसा जो मैं गाता हूँ अपनी खुद से, मैंने कंपोज की थी वो मैं अपने लिए गाता हूँ, उसको रिलीज ही नहीं किया मैंने, इट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई लोगों को बहुत सारों के पास। तो हृदय में जिनके सीताराम आई विल से कि इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बट यू स्पेसिफिकली आस्क मी एनी ऑफ द सॉन्ग, आई लव ऑल द सॉन्ग्स, आई कैन सिंग एनी वन ऑफ इट, आई वोंट माइंड।
1: लेकिन मैंने आपकी आवाज़ के गाने का जिक्र इसलिए किया कि वो गाना तो हम सुनवाएंगे, लेकिन आपकी आवाज़ में यहाँ पर हम चाहते हैं कि श्रोताओं को भी सुनवा दें।
0: चलिए, तो मैं पहले हृदय में जिनकी सीताराम ही गा देता
1: हूं। जी, एक लाइन सुना दीजिए।
0: एक ही लाइन है, उसमें दूसरा लाइन है भी नहीं।
1: जी।
0: हृदय

0: क्या बात है, एक साधक की मुद्रा में आप आ गए थे और वो ऐसा लग रहा था कि कहीं आपने जैसे साधना की हो बैठ के। तो यहाँ पूरी फिल्म में हनुमान अंश में हनुमान चालीसा को कथा के रूप में कहीं कहीं पिरोया है आपने, तो ये कहाँ से आपके मन में विचार आया? कुछ पहले से सोच रखा था या फिल्म बनते समय?
1: तो एक तो वो इवेंट जो है वो रियल इवेंट है
0: जी,
1: जो फिल्म में आपने देखा है। लेकिन मैं 2021 में जब कोविड बहुत पीक पे था और मेरे बहुत परिवार के और मेरे दोस्तों के, मेरे मित्रों के फैमिली मेंबर्स एक एक करके जा रहे थे, तो मेरे फर्स्ट कज़िन, मेरे लोकल गार्जियन थे कॉलेज में, वो ऐसे करते करते मेरे मामा जी, मेरे बेस्ट फ्रेंड रघुवेंद्र सिंह हैं, उनकी माता जी, ऐसे बहुत सारे लोग, कुछ 5-7 दिन के अंदर ही बहुत सारे लोग चले।

0: और वो एक एज ए डॉक्टर मुझे जो है ना, मैं घर पे बैठा था, मैं क्योंकि मेडिसिन प्रैक्टिस छोड़ के बहुत साल हो गया है और बाकी सब तो कुछ कर नहीं रहे हैं। अब मैं एज अ मेडिकल मतलब डॉक्टर आई शुड डू समथिंग, मुझे कुछ करना चाहिए था और मेरे पास कोई सच कोई डायरेक्ट कनेक्ट बचा नहीं था, तो जितना हेल्प कर पा रहा था मैं कर रहा था। लेकिन मुझे ऐसा एक क्लब हाउस नाम की एप्लीकेशन थी जहाँ पे बहुत सारे दोस्त मिलना शुरू हो गए थे, क्योंकि वो एक अलग चीज़ बन गई थी जहाँ पे सब लोग वॉइस में बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे ऐसा दिल में ऐसा ख्याल आया कि जितने लोगों को शांति चाहिए है वो शायद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो वो शायद होप देगी लोगों को। तो हमने हनुमान चालीसा नाम का एक क्लब चालू किया 2021 में, अप्रैल का महीना था। पहले दिन ही लोग 8 घंटे तक उसमें हनुमान चालीसा होते हैं, लोग आईसीयू में लेटे हुए हैं और वो हमारे क्लब को सुन रहे हैं। पीपल रिकवर्ड फ्रॉम देयर आईसीयू, जो कि आईसीयू से बहुत कम लोग निकलते थे उस वक्त, तो आईसीयू से बाहर निकले, फिर वो हमारे मॉडरेटर्स बन गए। तो वो क्लब आज भी वो क्लब चला रहे हैं।
1: जी
0: तो
1: जी
0: एक एक 12,000 से ऊपर उसके सब्सक्राइबर हो गए, लोग अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आते थे और वो हनुमान चालीसा। तो ऐसे में मेरा एज अ फाउंडर ऑफ दैट क्लब मेरा रूटीन बन गया कि 2-2.5 घंटे तो हनुमान चालीसा को डिकोड करना शुरू किया मैंने।
1: जी जी जी
0: उसके पहले तो पढ़ना होता था, फिर हनुमान चालीसा को डिकोड करना, वो मेरी एक एक एक तरह से मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड बन गया। तो कहें तो हनुमान अंश का कोर जो है वो हनुमान चालीसा है। अगर आप वो उसमें भी एक डायलॉग है फिल्म के अंदर जहाँ पे बच्चा पूछते हैं मान जी उससे के, मान जी पूछते हैं कि आपका जो है क्यों हनुमान जी का ही पाठ क्यों है, ओके ओके,
1: बिल्कुल
0: तो कहते हैं क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा है। तो क्या तो तुम्हारे भजन राम जी को पावे, तो वो कहते हैं किसी से प्रेम नहीं है, तो कहते हैं कि नहीं माँ से था क्यों, बोले माँ राम जी के पास चली गई। और
1: बहुत
0: करना क्या
1: बढ़िया
0: चाहते हो, कि राम जी के पास पहुंचना है क्योंकि मुझे अपनी अम्मा के पास पहुंचना है। तो ये पूरी फिल्म को हनुमान चालीसा में क्या लिखा है और एक बच्चे की भावना अपने माँ के प्रति क्या है और वो कितना अकेला अपने को महसूस कर रहा होगा कि वो जो है ना अपनी माँ से इतना प्रेम था कि वो उन तक पहुंचना चाहता है क्योंकि किसी ने बोल दिया कि राम जी के पास चली गई, तो उसने पूरा अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि मुझे राम जी तक पहुंचना है क्योंकि मुझे अपनी अम्मा तक पहुंचना है। एंड प्रॉब्ली दिस इज़ वन ऑफ दी मोस्ट, जिसे बोलते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जो लाइन लोगों को पसंद आती है, स्पेशली मदर्स हैं,
1: जी जी
0: बच्चे हैं, बच्चे इमीडिएटली कनेक्ट हो जाते हैं उस लाइन से। वो हुआ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आई सॉर्ट ऑफ डिकोडेड हनुमान चालीसा फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अभी भी मुझे बहुत मजा आता है। अब अगर आप मुझसे आप बात करेंगे तो आई विल लव टू चैट अबाउट हनुमान चालीसा फॉर आवर्स।
1: अभी सुनाइए
0: नहीं हनुमान चालीसा चैट एज इन
1: थोड़ा सा तो सुना सकते हैं। देखिए वहाँ एक बात मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहती हूँ, वो जो दृश्य है जिसका आपने जिक्र किया सचमुच बहुत मार्मिक दृश्य है कि एक पिता अपनी दूसरी शादी करके आ रहे हैं और बच्चा बोलता है कि मुझे राम जी के पास जाना है, तो ये बहुत मार्मिक था और हम सबको यहाँ पर इमोशनल भी किया आपने, मतलब देखा कि लोग रो रहे हैं वहाँ पर। और इस पूरी फिल्म में कई जगह ऐसे लगता है कि हाँ हम कहीं आपने जो साधक के रूप में दिखाया वो साधना में हम सब लीन हो रहे हैं, कई ऐसे दृश्य आए।
0: जी जी
1: तो यहाँ फिर से वापस लौटते हैं हनुमान चालीसा पर, तो वो अगर आप गाते हैं तो
0: नहीं
1: तो
0: हनुमान चालीसा तो मैं गा दूंगा, पर मैं हनुमान चालीसा को जो डिकोड करता हूँ मैं हनुमान चालीसा को, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। आई विल ऑल्सो सिंग कपल ऑफ लाइन्स। मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा जो है ना बहुत ही मल्टीपल कॉस्मिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका संकलन है। और आपके जीवन में आप कैसे आध्यात्म की तरफ जब आप बढ़ते हो और आपको जब अल्टीमेट को जो आप पाना चाहते हो, भगवत प्राप्ति जो आप करना चाहते हो, तो उसका राह वो आपकी सुगम करती है, आपके जीवन को भी बहुत सॉर्ट करती है। जैसा कि श्री नीपकोली बाबा भी बोलते थे कि वो कहते थे राम नाम का जप करते रहना, राम नाम लिखते रहना, और हनुमान जी की भक्ति के लिए हरदम बोलते थे। तो आप भक्त क्या होता है वो आप हनुमान जी से सीख सकते हो कि वो अपने ईस्ट से ज्यादा बलशाली है, पर वो सरेंडर उनको ही करते हैं,
1: ईस्ट
0: को ही करते हैं। भक्ति इसको बोलते हैं कि आप किसी भी, तो ये एक तो चीज है और प्लस जो है ना उसमें तीन और कोड्स हैं कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे। तो हनुमान जी की भक्ति के बिना, हनुमान जी को समझे बिना, उनकी आज्ञा के बिना आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। दैट इज वन। द अनदर लाइन इज दैट राम रसायन तुम्हारे पासा, सो यू हैव दी द कॉस्मिक कोड और द कोड द फॉर्मूला टू रीच राम, सदा रहो रघुपति के दासा। तीसरी लाइन है तुम्हारे भजन राम जी को पावे, एज एन अगर आप हनुमान जी को भजते हो या आप हनुमान चालीसा करते हो तो आप भगवान राम को की प्राप्ति आप कर सकते हो। ये तीन लाइनों के अलावा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय भसों सुरभूप, हृदय भसों सुरभूप का मतलब क्या है कि आपको उनको दिल में, आपको दिमाग में नहीं रखना है, आपको हृदय में रखना है, इसलिए वो हृदय में जिनके सीताराम जैसा लाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट अष्ट सिद्धि नवनिधि दाता, 8 सिद्धियां आप ही दे सकते हैं, और यही प्रॉब्ली नीम गौरी बाबा के उनकी लाइफ में भी आप देखें जो सिद्धियां जिनके प्रचलित सिद्धियां हैं वो कहीं ना कहीं उनको हनुमत भक्ति से आई हैं। कोई हनुमत भक्ति जो है ना कलयुग में शायद वही एक भक्ति है जो आपको सुगम तरीके से, क्यों, क्योंकि अगली लाइन उसकी है अष्ट दिन असबर दिन ऐसा वर सीता दीन दीन जानकी माता, तो जो जगत जननी माता सीता है उन्होंने आपको ये वरदान दिया कि आप ये सिद्धियां जो आपके पास ऑलरेडी हैं वो आप किसी को भी दे सकते हैं। ऐसा ही एक एक भगवान राम ने भी उनको वरदान दिया कि सहस बदन तुम रोज जसगावे अस्क श्रीपति कंठ लगावे, जब लाए सजीवन लखन जी आए जब वो संजीवनी लेके आए तो उन्होंने ऐसा वरदान दे दिया सहस बदन तुम रोज जसगावे। इसलिए आज भी भगवान राम से भी ज्यादा पॉपुलर हनुमान जी हैं
1: जी,
0: क्योंकि हनुमान जी को सब जानते हैं। तो आपको साउथ अमेरिका चले जाएंगे आपको वहाँ पे जो टेम्पल्स हैं वो पेरू वगैरह में वहाँ पे भी आपको हनुमान जी की मूर्ति मिल जाती है जो कि 5,000-5,000 साल पुराने टेम्पल्स हैं
1: जी, बिल्कुल।
0: ही वाज सो पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड एंड स्टिल इट ही इज पॉपुलर कि आपका जो अमेरिका का राष्ट्रपति जो पिछले राष्ट्रपति थे वो हनुमान जी की मूर्ति जेब में रखते थे बराक ओबामा,
1: बिल्कुल।
0: तो
1: हनुमान चालीसा लोग अपने पास रखते हैं, सिरहाने रख के सोते हैं, पर्स में रखते हैं डर से निजात पाने के लिए। हम सब भी वो करते डर लगता
0: था, डर लगता था हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू
1: करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अंधेरे कमरे में पार करना है तो हनुमान चालीसा पढ़ते जाना
0: है। वो फिल्म में वो सीन जो है ना वो डेडिकेटेड टू दैट लाइन है कि आप पढ़ते तो हनुमान चालीसा इसलिए हो क्योंकि आपको भूत पिशाच निकट नहीं आवे उस लाइन के लिए पढ़ते हो आप, लेकिन वो लाइन तो बीच में आती है तो आपको पढ़नी तो पूरी है
1: जी जी।
0: तो मन से पढ़ना बहुत आवश्यक है, इंटरनलाइज करना, और आपको जिस भी आप देवता जिस भी भगवान को आप ईष्ट हैं आपके उनको अंदर से मन से उनका ध्यान करना, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे, संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे जी,
1: बिल्कुल सकारात्मक भाव पैदा होता है। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का, कौन सा गाना सुनते
0: हैं? मैं आपको हनुमान चालीसा ड्यू है, मैं आपको दो कम से कम लाइनें सुनाता हूँ
1: जी जी, प्लीज सुनाइए
0: जी जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, जय सिया राम जय सिया राम। हाथ बज्र और

0: अभी मतलब मैं तो गाता रहूंगा तो 15 मिनट इसी में निकल जाएंगे, बट
1: गाने की बात चलिए हनुमान चालीसा आप गा ही रहे, तो हम आपके पीछे की ओर बचपन की ओर ले चलते हैं, बचपन की गलियारों में। वहाँ आपने जिक्र भी किया कि आप विशारद करना चाहते थे, पंडित चन्नूलाल मिश्र का जिक्र किया, तो क्या बचपन में आपने सोचा था कि आप गायकी की दुनिया में आएंगे, या फिर सोचा था उस समय क्या सपना था आपका?
0: मुझे लगता है कि बचपन में सपने तो थे पायलट बनने के, फिर लग गया चश्मा, फिर पता चला कि वो तो नहीं कर सकते, फिर लगा के, फिर ऐसा लगा कि आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो सुदूर जो जगह है वहाँ पे
1: डॉक्टर
0: इंजीनियर आईएएस, तो मेरा थोड़ा पायलट पायलट सोचता था, मैं थोड़ा आगे की सोचता था, लेकिन वो शायद एनीवेज। तो हुआ ये कि लखनऊ आने से मैंने डिस्कवर किया कि आई कैन सिंग, उसके पहले तो मुझे पता ही नहीं था, 17 साल तक की उम्र तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं गा सकता हूँ या मैं एक पोइट्री लिख सकता हूँ, ये भी नहीं मुझे पता था। तो लखनऊ आके वो परस्यूट्स डेवलप फिर से वापस स्फुटित हुए, अंकुरित हुए, या मुझे आई डिस्कवर्ड देम, सेल्फ डिस्कवरी हुई मेरी, हनुमान जी की तरह से उनको अपनी शक्तियाँ पता चली वैसे मुझे, एंड दैट टुक मी। वरना बचपन चंबल में बीता, तो वहाँ पे बुंदेलखंड में, तो जहाँ पे ये आपने जो बैंडिट क्वीन देख रहे हैं, पान सिंह तोमर देख रहे हैं, वो एक और फिल्म थी टिशू की, एक और टिशू के बाद में अभिषेक चौबे की एक फिल्म आई थी, फॉरगॉट द नेम, सुशांत सिंह राजपूत की थी, वो सारी फिल्में, वो सारी दुनिया जो है ना बुंदेलखंड है, वो है जो हमने जिया है देखा है। से कॉन्ट्रास्टिंग आई रीच्ड लखनऊ, और लखनऊ में जो जीवन जैसे बोलते हैं कि परिवर्तन हुआ, तो वहाँ पे मैंने विशारद के लिए एडमिशन के लिए मैंने टेस्ट दिया, जिसमें 30 सीटें थी, 30वां नंबर रैंक मेरा आया।
1: अच्छा।
0: और वो तेज सिंह ताकजी वहाँ पे मेरे टीचर थे, और उन्होंने जो भी सिखाया वो इतना काम भविष्य में आया कि मतलब एक ही साल किया था मैंने, 5 साल में से एक ही साल करके फिर आई टू गो फॉर द मेडिकल मेडिसिन। तो 4-5 साल वहाँ पे फिर वो रॉक वॉक गाते थे और पॉप रॉक में दुनिया में चले गए, फिर क्लासिकल भूल गए। क्लासिकल को दोबारा से मैंने पिछले 4-5 साल में फिर से दोबारा से आई स्टार्टेड यू नो practicing and working on it, and I do it primarily for myself. तो मतलब वो completely मेरे उसको commercialize करता नहीं हूँ, music को कुछ भी commercialize नहीं करता. So it's a very soul satisfying sort of an event for me every day. लेकिन neck for music, finding great music, recognizing great talent, musical talent is probably one art I developed over the period of मतलब multiple years, decades I'll say. तो अनुभव सिन्हा जी के साथ में मैंने करीबन 3 साल काम किया, उसमें भी ऐसा हुआ कि वो साल भर के बाद उनको पता चला कि मेरा म्यूजिक सेंसिबिलिटीज़ ऐसी हैं, तो उन्होंने फिर मुझे म्यूजिक भी सारा दे दिया करने के लिए। तो बनारस बीट नाम का उनका एक अपना एक छोटा सा वो था, तो बनारस बीट मैं हैंडल करता था,
1: उसी के नाम से उन्होंने अपना रखा, फोन नंबर भी।
0: हाँ जी जी जी। तो बनारस बीट जो है मैंने काफ़ी समय तक वो भी चलाया, बहुत सारा म्यूजिक मैं सेलेक्ट करता था उनके लिए, या एटलीस्ट चूज करता था कि सुनिए आपको क्या अच्छा लगता है, एंड दैट्स हाउ प्रॉब्ली आई थिंक द फिल्म बिकेम अ म्यूजिकल, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, एंड आई बिलीव द ग्रेट म्यूजिक, ग्रेट साउंड, 45% विजुअल्स होते हैं, 55% जो है ना वो साउंड होता है, और वही आपको सबकॉन्शियस लेवल पे हिट भी करता है, अफेक्ट भी करता है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द डायलॉग डिलीवरीज, विच ऑल्सो इंक्लूड्स

0: द डायलॉग संबोधन जो है उसमें भी जो पॉकेटेड इन्फॉर्मेशन होती है अपार्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड म्यूजिक एंड द सॉन्ग्स विच वी सिलेक्ट एंड वी गो फॉर. तो मुझे लगता है कि म्यूजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मेरे मैं सारे फिल्म मेकर्स को ये सजेस्ट करता हूँ जो हम सडनली गानों से दूर भागने लगे हैं एज एन इंडस्ट्री के लिप सिंक नहीं करना है, बैकग्राउंड में कहीं कहीं गाने डाल देना है. गानों से पूरा वाइब क्रिएट होता है फिल्म का. थर्ड वीक ऑनवर्ड्स गाने चिपके हैं. अच्छा आप अच्छा या खराब है मुझे पता नहीं, पर पहले दो वीक तक कोई गाना चला ही नहीं और वही कारण था कि फिल्म भी डिप करी थी. फिर फिल्म के बारे में भी लोगों ने बात करनी शुरू हुई, फिर गाने भी डिस्कवर होना शुरू हो गए चौथे वीक से
1: और गाने बजने
0: और फिर गाने ऐसे बजने लगे कि फिल्म को उन्होंने उठा दिया.
1: हाँ, और रील बनने लगे,
0: रीले बनने लगे, हजारों की संख्या मतलब अनगिनत है, तुम गिन भी नहीं रहे, गिनना बंद कर दिया. अब जो मिलता है उसको रीशेयर कर देते हैं, वरना तो हाँ निकल ही रहा है, मतलब कॉन्स्टेंट इतना बन रहा है कि हम वी कांट सी. 24 घंटे भी देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे,
1: बिल्कुल
0: इतना कॉन्टेंट बन रहा है.
1: तो यहाँ पर गानों का जिक्र चला है और आपकी फिल्म के गाने के रील बन रहे हैं और ज्यादातर इस गाने के पार्वती
0: जी
1: जो है तो वो सुना दें श्रोताओं को.
0: जी मतलब वैसे साधु तिवारी जी का गाना है, उनसे परमिशन लेके मैं गाता हूँ वैसे, लेकिन चलिए मैं सुनाता हूँ. जब जिद पे आ गई पार्वती, पार्वती पार्वती, समझाने पहुंचे सप्त ऋषि, सप्त ऋषि ही सप्त ऋषि. अरे काय जिद कर रही, अरे काय खुमर रही, अरे काय जिद कर रही, काय खुमर रही, ऐसे वर के लाने, काय जिद कर रही, काय खुमर रही, ऐसे वर के लाने. जाके शीस पे गंगा और गले में डारे फिर रहे सांप, जाके शीस पे गंगा और गले में डारे फिर रहे सांप. इतने सीधे सादे हैं सब कहते भोलेनाथ, भोलेनाथ शंभो, शिव शंभो.

0: बम भोले, भोले बम भोले।
1: इस गाने के बाद हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी आपने बातचीत के दौरान जिक्र किया अनुभव सिन्हा जी का
2: जी।
1: अनुभव सिन्हा जी विविध भारती के स्टूडियो,
2: अरे वाह क्या बात
1: है, उनसे सौभाग्य मेरा कि उनका भी इंटरव्यू मैंने ही लिया था, बातचीत की थी
2: जी।
1: तो उनसे कुछ निर्देशन की कुछ बारीकियां भी आपको मिली क्या गानों के बारे में ही?
2: मुझे लगता है कि उनके सानिध्य में काम करना, मैं उनके अंडर तो काम करने का मुझे मौका नहीं मिल पाया
1: जी, जी।
2: उनके सानिध्य में काम किया
1: जी,
2: पर बहुत सारी जो जिस तरह से उनकी वो जिस तरह से इलेवेट करते हैं चीजों को ना सिनेमा, हाँ सिनेमा में इलेवेशन क्या होता है कि आप जब हम फिल्म देखते हैं तो आप जब जिस तरह से हीरो को पोजीशन करते हो, जिस तरह से एलिवेट करते हो, बहुत बारीक बारीक नज़र है उनकी, बहुत सुंदर सुंदर, वो भी उनके बहुत कान बहुत तेज हैं, उनके भी म्यूजिकल तेज, तुम बिन उनकी पहली फिल्म भी इतनी बड़ी ह्यूज म्यूजिकल हिट थी
1: बिल्कुल।
2: और आप चाहे वो रावण का म्यूजिक सुने या मुल्क का, हाँ थप्पड़ के गाने, मुल्क के भी गाने बहुत सुंदर थे, पर मुझे लगता है कि रावण के गाने बहुत सुंदर थे और उसके पहले भी जितनी फिल्में उन्होंने की हैं, मतलब आप चाहे कैश पकड़ लो, फिर उसके पहले एक और फिल्म थी उनकी
1: अनेक भीड़
2: तो ये अभी की फिल्म है, लेकिन एक वो जो कमर्शियल फिल्म बनाते थे उनके म्यूजिक एल्बम, ओ माई गॉड क्या क्या एल्बम उन्होंने चूज किए, तो कहीं ना कहीं वो मेरा अनुभव सर का ये बहुत ही, जैसे बोलते ना कि हमारे बहुत सारे विचार, लेकिन हम बहुत, मैं उनका इतना सम्मान है हृदय में, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि वो कभी भी आपके, आप क्या सोचते उस पर इंटरफेयर नहीं करते। और मैं उनके उनके ऑफिस में बैठ के मैंने एक फिल्म लिखी थी जो उनकी पसंद की फिल्म थी, उन्होंने कहा कि इस फिल्म को लिख पूरा, शॉर्ट फिल्म सुनाई थी जिसपे उन्होंने कहा कि इसको तो पूरा फिल्म बना के लिख, फिल्म का नाम था उस वक्त, उसका नाम डीमो था, फिर उसका नाम भसाड़ हो गया, कॉमेडी फिल्म थी, एक रात की कहानी, दो दोस्त मिलते हैं और क्या होता है उस रात को, लेकिन उन्होंने उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो प्रॉब्ली उनको हो सकता ना ही पसंद आई हों, पर उन्होंने उसमें मेरे कभी काम में इंटरफेयर नहीं किया। और यही एक सबसे बड़ी फिल्म मेकर की खासियत होती है कि वो आप क्या सोच रहे हो वो आपकी सोच है, मैं क्या सोच रहा हूँ मेरी सोच है, हम दोनों एक सब्जेक्ट को डिबेट कर सकते हैं पर मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा जो चीज सीखी है उनसे मैंने वो यही सीखी है, और मैं इस बात के लिए मतलब सदैव उनको याद करता हूँ और हर बार यही बात बोलता हूँ, और मेरी बात उनसे दो साल दो बार ही होती है, और लेकिन तो मतलब मेरा सम्मान उतना ही उनके लिए हृदय में उतना ही सम्मान है जी।
1: बेहतरीन बातचीत हुई थी और बेहतरीन इंसान। यहाँ पर आपकी फिल्म का हम गाना सुनना चाहते हैं, मतलब उसका जिक्र करना चाहते हैं, मैंने तेरे ही भरोसे
2: जी,
1: ये सुनील लोधी बुंदेलखंड के
2: जी जी,
1: तो ये कैसे मिले आपको, कहाँ से, क्यों बुंदेलखंडी गाते हैं वो?
2: हाँ तो मैं बुंदेलखंड में पैदा हुआ, जैसे मैंने बताया बुंदेली मुझे बहुत पसंद है, अभी भी सोते मेरी पहली फर्स्ट लैंग्वेज भी आप बुंदेली बोल सकते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, फर्स्ट बोली है, क्योंकि बोली है वो तो लैंग्वेज नहीं है, तो बुंदेली मुझे चूंकि, तो मैं क्या हो रहा था पिछले 2-3 साल से ना, एक बुंदेली दुनिया नाम का एक चैनल था
1: जी,
2: तो मैं बहुत सारे ऐसे बुंदेली गीतों को के लोग जो बनाते तो उनको फॉलो कर लेता था, तो उसमें देखा कि मैंने ये लड़का जो है ना ट्रेन में गाता है और उसका
1: नेत्रहीन है
2: वो है। और वो ट्रेन में गाता है या ट्रेन में ट्रेवल करते किसी ने वीडियो बनाया तो इसलिए वो फेमस हो गया कि ट्रेन में लगा गाता है। अच्छा मैं काफी दिन से फॉलो कर रहा था, एक दिन मैंने दिखाई दिया कि वो इंस्टाग्राम पे उसे कोई पिक्चर दी वर्सोवा बीच पे है वो, मैंने कहा ये कहां से वो आ गया, एंड मैं उसको अप्रोच करने के लिए बहुत दिन से सोच रहा था कि इसको किसी को बोलता हूँ कि इसको अप्रोच करके बुलाओ मुंबई, पर मुंबई बुलाने के लिए संसाधन चाहिए होते हैं और हमारी बहुत छोटी फिल्म है, हम ऐसा नहीं है फ्लाइट टिकट देंगे भाई आ जा तू, बट चूंकि ये मौका था कि वहां पे था तो मैंने उसको रात में ही 11:30 बजे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा, और हैपेंस सो दैट इन हाफ एन आवर ही वाज इन द स्टूडियो, इन आवर ऑफिस एंड स्टूडियो, फिर हमने उसके बाद में सेटल किया कि

0: कब जा रहे हो, क्या है कैसा, तो पता चला कि वो 11 बजे सुबह निकल रहा है 12 बजे। तो उसके पहले हमने एक स्टूडियो बुक किया और सारे जो भी उसके जो गाने थे उसके पास में वो उसने सुने उससे हमने, और ये गाना मैंने तेरे ही भरोसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने कहा कि इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो उसने अपने ही उस पर तंबूरे पे एक तारे पे अपने उसने रिकॉर्ड किया, एक ही इंस्ट्रूमेंट के साथ में रिकॉर्ड किया। मैंने कुछ उसमें लाभ लगे बट कुछ किया ही नहीं, इट्स जस्ट दैट। और वो लोग बोले थे इसके ऊपर कुछ म्यूजिक नहीं करोगे, इनफैक्ट उसने भी बोला मुझे कि सर आपने इस पर कुछ कराया नहीं, और तो मैंने कहा कि नहीं इस पर कुछ कराने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे ही वर्क कर रहा है और ऐसे ही वर्क करेगा क्योंकि स्ट्रेट इट द वॉइस गोज डायरेक्टली टू योर हार्ट, कोई दूसरा कोई माध्यम है ही नहीं, स्ट्रेट टू द हार्ट कि मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, बहुत गूढ़ शब्द हैं उसमें।
1: जी जी,
0: सागर में नैया डाल दी, कौन उसमें लाइनें हैं कि मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल दई, अरे काहे की वो नाव बनाई काहे की पतवार,
1: जी जी बिल्कुल याद आई,
0: और काहे की लगा दई जंजीर सागर में नैया डाल दई। सो बेसिकली इज अ क्वेस्ट कि दैट मैं सागर में नैया डाल दी क्या, और हनुमत कौन है खेवनहार, तो पार कौन लगाएगा लेकिन खेवनहार कौन है, देखिए दो अलग अलग चीजें। अब आंसर क्या है, सीता सखी वहां में बैठन हारी
1: जी।
0: शक्ति उसमें बैठेगी, रामा पार लगाए वो आपको पार लगाएंगे, लेकिन खेवनहार कौन है, हनुमत खेवनहार सागर में नैया डार दे, मैंने तेरे ही भरोसे आप ही खेवनहार हो, यू विल टेक मी दैट साइड। सो इतनी सिंपलीफाइड एंड इतनी गूढ़ और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पॉकेटेड एक इतने खूबसूरत अगर गीत में है, तो मैं उसमें क्यों लाग लपेट करूं, क्यों उसमें मैं इंस्ट्रूमेंट डालूं और क्यों उसको भरूं और क्यों उसको ग्रैंड बनाने की कोशिश करूं, व्हाइल इट इज वर्किंग सो वेल, स्ट्रेट हार्ट टू हार्ट वर्क करता है, इधर से आवाज निकली सीधे दिल में लगती है, दैट्स हाउ इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन इंटरनेट, यू कैन सी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड एंड थाउजेंड। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 15 दिन पहले मैंने देखा था 2.5 लाख रील्स थी उसकी, पिछले 15 दिन पहले 2.5 लाख रील्स से भी पता नहीं हुई, अभी देखेंगे तो लगता है मिलियन हो गई या 500 के हो गए।
1: बिल्कुल, बहुत तेजी से ये चर्चित हो रही फिल्म और गाने हिट
0: गाने,
1: गाने लोगों के जुबान पर, बहुत मुश्किल है आज के इस युग में गाने को हिट करना, और गाने हिट हो रहे हैं, रीलें बन रही, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर वही गाना हम श्रोताओं को सुनवाते हैं
0: जी।

0: गाने के बाद हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने सुना है कि आज के इस डिजिटल युग में भी आप कलम से कागज से लिखते हैं और ये पूरी फिल्म आपने कलम और कागज से लिखी है, तो ये क्या मामला है? आपको पसंद नहीं है डिजिटल मतलब लैपटॉप पे टाइपिंग करना, या आप कागज कलम को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्या बात है?
1: हुआ ऐसा कि मैं सारे जीवन में डिजिटली ही लिखते आया हूँ, तो मैं पेन एंड पेपर पे लिखता नहीं था, कभी कभी लिख दिया तो लिख दिया, पर वो ऐसा रहा था कि जब फिल्म हमने अनाउंस कर दी और मैंने जो भी मेरे दिमाग में सीन्स थे उनको उतारने के लिए जब मैं लिखने बैठता था तो मैं ऑब्वियसली द डिजिटल डिवाइसेज आर सो डिस्ट्रैक्टिव बिकॉज ऑल द टाइम कुछ ना कुछ आ रहा है, या तो कोई कॉल कर रहा है या तो किसी मैसेज कर रहा है उसको आपको रिप्लाई करना है, इंस्टाग्राम पे कुछ आ रहा है, तो इट्स डिस्ट्रैक्टिंग एंड ऑल्सो आप अगर उसको सर्च करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी जाते हो इंटरनेट पे तो वो भी आपको कहीं से कहीं ले जाता है,
0: दिख जाता है
1: और समय बहुत जाता है उसमें। तो मैं एकदम तंग आके और गुस्से में मैंने आके सारी डिवाइसेस बाहर निकाल दी।
0: क्या बात है,
1: मैं सब कमरे से बाहर। तो हमारे ऑफिस में एक छोटा सा स्पेस है जो स्लीपिंग पॉड है, जो उसको हम गुफा भी बोलते हैं कि हम, तो मैं वो गया, वो शट हो जाता है, पूरा पैक हो जाता है, सारी डिवाइसेस बाहर की, पेन पेपर पकड़ा और मैंने लिखना शुरू किया। पहला सीन जैसे क्रैक हुआ मैं गया अंदर, मैंने लिखना शुरू किया। इन 15 दिन में रिकॉर्ड 15 डेज टाइम में मैंने पूरी स्क्रिप्ट फिनिश कर दी। आपको बिलीव नहीं होगा कि पहला ड्राफ्ट ही है जो मैंने शूट किया है, देयर इज नो चेंज इन द फिल्म, इज स्ट्रेट एक बार में। तो मेरा सजेशन लोगों को यही है कि डिजिटल डिवाइसेस आर सो डिस्ट्रैक्टिव, जब भी आपको लेखन करना है, जैसे आपने भी पेन पेपर पे लिखा है सब,
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: मोबाइल में है, जबकि
1: मोबाइल में आप लिख सकते हो, पर आप जो आपको जैसे बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन से कनेक्ट फील होता है ना आपको, आपका माइंड वो बोलते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बोलिए जो भी बोलिए, कि आपको कहीं ना कहीं एक लूप है वो, हाथ से जब लिख रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन से जो निकल रहा है वो हो रहा है, और उसमें किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो डिवाइस आपके आंख में रोशनी नहीं छोड़ रही है, वो ऊपर से एक मैसेज नहीं आ रहा उसमें और बीच में से कॉल नहीं आ रही है, ऑल दैट हैपेंस एंड देयर आर पीपल जो कि सिर्फ जो है ना मोबाइल फोन पे लिख लेते हैं, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना वो सैंक्टिटी चली जाती है,
0: बिल्कुल कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन
1: होते रहते हैं।
0: सही कह रहे हैं, और ये बात है कागज पे लिखा हुआ भले दिमाग में लिखा हुआ लेकिन कागज रखा है साथ में, हाँ। ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनाएं?
1: मुझे लगता है कि फूलों के रंग से इज माय ऑल टाइम
0: फेवरेट,
1: हाँ। प्रेम पुजारी का गाना है,
0: साहब का लिखा हुआ, सचिन देव बर्मन संगीतकार,
1: तो
0: सुनते हैं।

0: प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना था, और इस गाने के साथ एक बार हम आपको फिर बुंदेलखंड ले चलते हैं
1: जी।
0: बुंदेलखंड की कोई ऐसी यादगार घटना हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: बुंदेलखंड में जब मैं पढ़ने से पहले भी, मतलब मुझे लगता है मैं स्कूल में भी नहीं गया था, तो मैंने हमारी मैं मेरे पेरेंट्स के साथ में, मेरे माता जी पिताजी के साथ में ट्रैवल कर रहा था एक कालपी से उरई के बीच में, और वहाँ पर रास्ते में एक भवानी मंदिर, भवानी जी का माता का मंदिर होता है। फर्स्ट मेमोरी मेरी वही है सबसे स्ट्रॉन्ग। और अचानक से वो गाड़ी रुक जाती है, बस रुक जाती है, और सब लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि अरे मतलब डकैत डकैत ऐसा नहीं। एंड गाड़ी रुक जाती, सब सहम जाते हैं, पर मैं बहुत इंटरेस्ट से आगे चला जाता हूँ। लिटरली वो था ग्लास जो होता है उसके पास, मैं बच्चा हूँ मैं, वो मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी है। जहाँ पे फिर मैं देख रहा हूँ बड़ा सा घोड़ा और उस पर एक छोटी सी महिला, उसने जो है ना पट्टा बांध रखा है, उसके हाथ में बंदूक है। वो बड़ा फैसिनेटिंग था, मतलब फॉर अ किड अचानक से इतना कि कोई आया है जिसको, और ऐसी वेशभूषा में किसी को देखा नहीं। तो वो फिर वो दर्शन वर्शन करती हैं, वो भवानी मंदिर में अपने सर झुकाती हैं, और फिर वो चली जाती हैं वहाँ से। किसी को कुछ होता नहीं है, मतलब ऑब्वियसली वो लूट के नहीं आई थी, वो दर्शन करने के लिए आई थी। तो एक वो है, और दूसरा जब मेरे स्कूल के समय, जब मैं स्कूल और कॉलेज जब मैं पढ़ रहा था, कौंच भी जो ना कुंच ऋषि की धरती थी, वो मुझे बहुत लेटर समझ में आया। वहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जब वहाँ से निकली थी और वो चोटिल थी, घायल थी, तो कौंच में एक जगह थी जहाँ पे उन्होंने रात गुजारी थी, मलहम वगैरह भी वहीं पे हुई थी उनकी। तो ये सारी चीज़ें जो थी, और प्लस बुंदेलखंड में वो जो भाषा है बहुत ही, मतलब ब्रिज की लठमार और थोड़ा सा उसके अंदर हल्का सा भाव और प्रेम भी आ जाता है
0: जी, जी।
1: तो वो लहजा जो है ना मुझे हरदम से बहुत फैसिनेट करता है, स्पेशली पान सिंह तोमर और बैंडिट क्वीन वगैरह जो फिल्म्स हैं, इन सब के अंदर इनफैक्ट वो नत्था वो यूज टू स्पीक उसमें पीपली लाइव में, वो भी बुंदेली बोलता है। फिर वो एक एक और बहुत भाभी जी घर पे हैं, वो एक सीरियल है, वो मेरे बहुत क्लोज मित्र थे जिनके अभी उनका देहांत हो गया, जिन्होंने जो राइटर थे उसके, वो उन्होंने एक कैरेक्टर हप्पू सिंह। तो ये सब बहुत बुंदेली बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, एक्चुअली पॉपुलर बोली है, पर वो कभी ऐसा मेन स्ट्रीम में वो गाने मेन स्ट्रीम नहीं हुए थे। और ऐसा नहीं कि मैंने बुंदेली ढूंढने के लिए बुंदेली ढूंढा था, मुझे तो उत्तर प्रदेश और मध्य भारत की बोलियों में गाने चाहिए थे। तो लगभग 50% सॉन्ग से ऐसे जो है ना, सासा आले हंसा चाले अवधि है, फिर ये ब्रिज है, आवागमन थोड़ा ब्रिज और इसके बीच का है, आवागमन मिटा दो भोले शंकर। तो ये सारे गाने जो है ना एक एक करके, वो आइडिया ये था कि जितना हो सके हम मिट्टी की खुशबू इस फिल्म के अंदर लेके आए।
0: तो यहाँ पर गाना सुनवाते हैं। हर हर महा

0: आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हनुमान अंश, फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी। इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी सुनिएगा अगले सप्ताह इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के मेहमान।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। चार दिन का ये आयोजन आज शुरू हुआ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का विषय है बिना किसी सीमा के विस्तार। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्ष की जनसेवा पूरी कर ली है। जापान, नाइजीरिया, डोमिनिका और बेल्जियम के नेताओं ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राहली सिलासागर में आयोजित वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के समापन समारोह में विभिन्न टाइगर रिजर्व की इको विकास समितियों को चेक वितरित किए। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले वन्य कर्मियों को सम्मानित भी किया। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि आज देश की महिलाएं देश के विकास में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। नई दिल्ली में सुरक्षा अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुश्री देवी ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब देश की माताओं, बहनों और बेटियों को सशक्त और सुरक्षित बनाया जाएगा। और रतलाम में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस सिंह के माध्यम से सहभागिता की। उन्होंने कहा कि महोत्सव किसानों को नई तकनीक, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों और समृद्धि के नए अवसरों से जोड़ने का व्यापक अभियान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। युवा श्रोता सुने अपना कार्यक्रम युवा वाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी सिंपल सी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगे हों? जैसे किसी ने आपसे पूछा और उस वक्त आपके पास कोई जवाब नहीं था, आपने बस कह दिया पता नहीं, लेकिन उसके बाद दिमाग में उस पता नहीं को लेकर एक पूरी मीटिंग सी बैठ गई। शायद मुझे पता होना चाहिए था, बाकी सबको तो पता होता है, मैं इतना कन्फ्यूज्ड क्यों हूँ? कभी कभी किसी सवाल का जवाब हम नहीं जानते, लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंता हमें इस बात की होती है कि हमें जवाब पता क्यों नहीं है। क्या हर सवाल का जवाब पता होना ज़रूरी है? क्या हर सिचुएशन में हमें तुरंत तय कर लेना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या? और अगर हम थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा सोच लें या बस कह दें कि मुझे अभी नहीं पता, तो क्या ये कोई कमज़ोरी है? क्या ये एक जवाब नहीं हो सकता? क्या हमेशा परफेक्ट होना ज़रूरी है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त हरिप्रिया, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आज की चर्चा कोई करंट अफेयर्स या सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन सवालों की जो हम अक्सर दूसरों से नहीं खुद से पूछते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सवालों का कोई फिक्स्ड जवाब नहीं होता। आज हम ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। तो मैंने शुरुआत में आपसे पूछा था कि क्या हमें सच में हर चीज़ का जवाब पता होना चाहिए? हमारी लाइफ में सवालों की कोई कमी नहीं होती। हम बहुत छोटे होते हैं तब से ही हमें सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा ABCD सुनाओ, चलो पोएम सुनाओ, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? और ये सब सवाल तब पूछे जाते हैं जब हम धीरे धीरे चीज़ें सीख रहे होते हैं, महज 2-3 साल के होते हैं। और फिर थोड़ा धीरे धीरे बड़े होते हैं तो स्कूल आ जाता है। स्कूल से आते ही मम्मी पूछती है, आज स्कूल में क्या हुआ था, होमवर्क क्या मिला है, अच्छा तुम्हारा टेस्ट कैसा गया। और हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, फिर हम कॉलेज में आते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, और धीरे धीरे शायद हमारी आदत बन जाती है कि हर क्वेश्चन का मतलब है आंसर करना। लेकिन लाइफ थोड़ी अलग है। लाइफ के क्वेश्चंस के सामने अक्सर ऑप्शंस नहीं होते, कोई आंसर की नहीं होती, और हमेशा कोई टीचर नहीं होता जो लाइफ के सवालों का क्या जवाब देना है हमें बता सके। इसी वजह से लाइफ के कुछ सवाल हमें

अनकंफर्टेबल कर देते हैं और हम बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज होने लगते हैं, डाउट करने लगते हैं खुद पर। अभी हमसे पूछा जाता है कि आगे क्या करना है, तुम्हारा प्लान क्या है, और कभी कभी हम खुद से ही पूछते हैं कि हम एक्चुअली क्या चाहते हैं, और हमारे पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं होता। लेकिन शायद हमें एक चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, दैट नॉट नोइंग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नोइंग। हर चीज़ पहले से क्लियर नहीं होती, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस के बाद समझ आती हैं। कभी हम कोई डिसीजन से इतने परेशान हो जाते हैं कि हम खुद को सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, और बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि ये हमारे लिए सही नहीं था।

कभी कोई डिसीजन उस वक्त गलत लगता है और कुछ समय बाद समझ आता है कि नहीं, इससे हमने बहुत कुछ सीखा। तो फिर ज़रा सोचिए कि ये राइट आंसर एग्जैक्टली क्या है, और क्या हमारी लाइफ में हर डिसीजन का सिर्फ एक राइट आंसर होता है?

0: पर नहीं मिलते। हाँ, अगर आप मुझे क्या करना चाहिए यह गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको हज़ार जवाब मिल जाएंगे, लेकिन उसमें से आपका कौन सा जवाब है ये आपको कैसे पता? और चलो, देख के लग भी रहा है कि हाँ ये मेरा जवाब है, तो आपका जवाब आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो जवाब है किसी और का, बस आपको देख कर लग रहा है कि हाँ मैं भी सेम सोचता हूँ तो मेरे लिए भी यही सही है। तो इस चीज़ को आपको खुद ही समझना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या सच में जो देख के लग रहा है वही मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ। और शायद इसी प्रोसेस को पेशेंस कहते हैं। हर चीज़ का जवाब तुरंत ढूंढने की जगह कभी कभी सवाल के बारे में थोड़ा सोचना भी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब हम सोचकर नहीं, देखकर और समझकर देते हैं। जैसे आपको किस टाइप के लोगों के साथ रहना पसंद है, या आपको किस किस माहौल में शांति मिलती है, आप किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, या आपको किस तरह की लाइफ मीनिंगफुल लगती है। इन सब का जवाब एक दिन में नहीं मिलता, और अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से पीछे हैं। मे बी यू आर स्टिल फिगरिंग इट आउट, और ऑनेस्टली फिगरिंग इट आउट भी लाइफ का एक प्रॉपर फेज होता है। हम अक्सर अनसर्टेनिटी को प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी कभी कभी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अगर मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज़ और अच्छी हों। लाइफ में किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती, तो शायद हमें हर जवाब के पीछे भागने की बजाय एक और स्किल डेवलप कर लेनी चाहिए, अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल हो जाना, और इतना कंफर्टेबल हो जाना कि हम आसानी से कह सकें अभी मुझे नहीं पता, बिना यह सोचे कि मुझे जज किया जाएगा या मेरी इमेज पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। और मुझे नहीं पता कहने के बाद सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये उठता है कि अगर मुझे नहीं पता तो दुनिया मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, मैं खुद से क्या एक्सपेक्ट करती हूँ। इसका हम नहीं सोचते, पता नहीं क्यों हम खुद से ज़्यादा दूसरों की सोचते हैं। हमें दूसरों की चीज़ें सुनते सुनते कभी कभी अपने आप पर ध्यान देना ही नहीं हमें नहीं हम आएगा सॉरी हम दूसरों की चीज़ें सुनते सुनते कभी कभी अपने आप पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं। हम सबसे पहले बस ये सोचते हैं ये करूँगी तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन अगर एक मिनट के लिए हम सारी चीज़ें साइड में रख दें तो शायद एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल सामने आएगा कि हम खुद क्या चाहते हैं। हम इस पर अभी और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना।
1: Your present to ruin a beautiful future.

0: सबसे अलग
1: लग रहा है, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे कि लाइफ के हर सवाल का जवाब हमें तुरंत पता होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब एक नया सवाल सामने आया है कि हम खुद से क्या चाहते हैं। अच्छा मान लीजिए एक दिन के लिए दुनिया में कोई भी आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहा, कोई जज नहीं करेगा, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना और किसी को कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को खुश नहीं करना या किसी से कोई भी सलाह नहीं लेनी, तो आप अपना दिन कैसे स्पेंड करेंगे? आप क्या सीखेंगे, किस चीज़ के लिए टाइम निकालेंगे और किस चीज़ को खुलकर दिल से करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट आप किस तरह का इंसान बनना चाहेंगे? ये सवाल सुनने में थोड़ा फिलोसफिकल लग सकता है, लेकिन हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो इसका हमसे बहुत इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है, क्योंकि हम फैसले सिर्फ अपनी मर्ज़ी से नहीं लेते, कभी कभी हम इमेजिन करते हैं कि दूसरे लोग हमारे डिसीजंस को कैसे देखेंगे और उसकी वजह से हमारा डिसीजन बदल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को कुछ नया ट्राई करना है लेकिन वो सोचता है कि लोग हंसेंगे, किसी को किसी डिफरेंट फील्ड में इंटरेस्ट है लेकिन उसे लगता है कि ये करूँगा तो घर वाले नाराज़ हो जाएंगे, किसी को अपनी लाइफ का पेस स्लो रखना है लेकिन आसपास के लोग फास्ट मूव कर रहे हैं तो उसे लगता है कहीं मैं पीछे तो नहीं रह जाऊँगा, और यहीं से कंपैरिजन शुरू होता है। हम अक्सर अपनी लाइफ के बिहाइंड द सीन्स को किसी और की हाईलाइट रील से कंपेयर कर देते हैं और फिर खुद से ही निराश हो जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर कोई देख ही नहीं रहा हो तो तब भी आप वही लाइफ चूज़ करेंगे? अगर आंसर हाँ है तो मुबारक हो, आप किसी और के ज़रिए या किसी और की सलाह से सिर्फ किसी और को खुश करने के लिए वो लाइफ नहीं जी रहे हैं। और अगर आपका जवाब ना है तो शायद एक बार रुक कर सोचना चाहिए कि हम ये कर किस लिए रहे हैं। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी अंतर है कि अपनी मर्ज़ी से जीने का मतलब ये नहीं होता कि किसी से एडवाइस ही नहीं लेना। पेरेंट्स की बात बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है, टीचर्स की एडवाइस काफ़ी यूज़फुल हो सकती है, फ्रेंड्स का पर्सपेक्टिव ज़रूरी हो सकता है, लेकिन एडवाइस और डिसीजन में अंतर यह है कि एडवाइस दूसरे दे सकते हैं पर डिसीजन इवेंचुअली आपको ही लेना है। समझने के लिए सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। अब सेल्फ अवेयरनेस कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ बस इतना नोटिस करना कि किस चीज़ के बाद हमें ऐसा लगता है कि आज का दिन बहुत वर्थ वाइल था, हम किस चीज़ को सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब कर रहे हैं। ये सवाल हमारे लिए आईने की तरह हो सकते हैं और शायद सबसे कठिन भी। अगर हमें किसी को प्रूव नहीं करना हो तो हम क्या चूज़ करेंगे, क्योंकि कभी कभी हमारी लाइफ में अचीवमेंट से ज़्यादा वैलिडेशन ज़रूरी हो जाता है। कुछ अचीव किया है तो अप्रूवल चाहिए, हाँ ये नॉर्मल भी है क्योंकि आजकल सब यही कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया के ज़माने की जनरेशन है, हमें एप्रिसिएशन अच्छा लगता है, मगर एप्रिसिएशन ही हर डिसीजन का रीज़न बन जाए ये तो सही नहीं। अच्छा हम सबसे पूछते हैं इससे, नहीं नहीं हमें खुद से पूछना चाहिए कि इससे मुझे क्या मिल रहा है, पर हम

पूछते हैं, इससे लोग मुझे क्या समझेंगे? और दोनों सवालों में बहुत अंतर है। इसलिए कभी कभी सिर्फ अपने लिए कुछ करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे कुछ पढ़ना, वॉक पर जाना, म्यूज़िक सुनना, घर वालों के साथ टाइम बिताना, या कुछ देर सिर्फ और सिर्फ चुप बैठकर अपने साथ वक्त बिताना, ताकि हमें पता चले कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। हम सिर्फ दूसरों के एक्सपेक्टेशन से नहीं जी रहे हैं, हम खुद एक इंडिविजुअल हैं और हमारी लाइफ चॉइसेस भी अलग हो सकती हैं। कभी कभी मन कर सकता है कि सबसे ब्रेक लेके सिर्फ घूमने निकल जाए, लेकिन अगर हम ये सोचें कि और कोई वो नहीं कर रहा, या अगर मैं ब्रेक लूँगा तो कोई मुझसे आगे निकल जाएगा, तो शायद हम किसी और की वजह से खुद के डिसीजंस को डाउट कर रहे हैं, लाइफ में बस भाग रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भी वैसा ही सोचें जैसे सब सोचते हैं। सबकी लाइफ चॉइसेस और डिसीजंस अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए हमें वो करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिले और आसपास के लोग भी उससे खुश रहें। इसलिए हमें हमारे दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, और उस आवाज़ को सुनने के लिए हमें दुनिया की वॉल्यूम को कम करना पड़ सकता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आएगी? कि डिसीजन तो ले लिया, पर रिज़ल्ट कब होगा, कब मिलेगा रिज़ल्ट? रिज़ल्ट की वजह से हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। इतना टाइम क्यों लग रहा है, सबसे ज़रूरी सवाल। तो अब हम आते हैं सेल्फ डाउट पर। बार बार खुद से ही सवाल करते हैं कि सबकी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, मगर मेरी लाइफ में क्यों नहीं? और शायद ये बात हमारी पूरी लाइफ पर लागू होती है। हर चीज़ का अपना टाइम होता है, ये बात सुनना आसान लगता है, लेकिन उस टाइम का वेट करते करते हमें हार नहीं माननी चाहिए, और शायद यही असली चैलेंज है।

तो आज हमने खुद से तीन सवाल पूछे। क्या हर चीज़ का जवाब हमें पता होना ज़रूरी है? और अगर कोई जज नहीं कर रहा तो हम क्या चूज़ करेंगे? हम चूज़ कर लेंगे, लेकिन क्या हम उसका इंतज़ार कर सकते हैं? बैठकर सोचिएगा, खुद से पूछिएगा, हम जो लाइफ जी रहे हैं क्या हम उसके इसलिए चूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम सच में चाहते हैं, या क्योंकि हमें लगता है कि बस चूज़ करना चाहिए? और अगर इसका जवाब आपको ना मिले तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने आज की बात ही यहीं से शुरू की थी। हर चीज़ का जवाब मिलना ज़रूरी नहीं है। मे बी सम क्वेश्चंस नीड टाइम, मे बी सम आंसर्स नीड एक्सपीरियंस। शायद कुछ जवाब तब मिलते हैं जब हम उन्हें ढूंढना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अपना ख्याल रखिए, खुद को कंपेयर करना बंद करिए और अपनी लाइफ की जर्नी को वक्त दीजिए। ऐसे ही कुछ रोचक बातें लेकर आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

युवा श्रोता सुन रहे थे युवाणी कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में ये गीत अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ में। इस गीत को मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था, संगीत निर्देशन आशा भोसले का था।
1: गुरुवार सुबह 10:55 पर सुनिए दीपक मेमोरियल एकेडमी मकरोनिया सागर द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम दीपक की ज्ञान ज्योत।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब सुनिए एल्बम दीवाना से सोनू निगम की आवाज में गीत। फैज अनवर ने इस गीत को लिखा है, संगीत साजिद वाजिद का है।

0: से लेकर चंद्रमा के अनदेखे।
1: कर्मा करम 287 चाय और साथ में मिस्टर 287 क्रिस्पी कुकीज,
2: चाहे सुबह की शुरुआत हो या शाम का छोटा सा ब्रेक,
3: मिस्टर 287 कुकीज और 287 चाय
1: स्वाद का परफेक्ट कॉम्बिनेशन।
2: दिवाली से पहले दिवाली धमाका,
4: स्वराज 733 FE रोटावेटर के साथ मात्र 6,49,000 रुपए में, नियम व शर्तें लागू।

0: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
1: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स खेमलासा रोड बीना,
0: माणिक मोटर्स छोटा करीला सागर।
1: संपर्क करें 8720096977
0: 8720096777।

श्रोताओं, कार्यक्रम में ये गैर फिल्मी गीत अभी आप सुन रहे थे एल्बम सुनो से। लकी अली की आवाज़ और संगीत था, शब्द रचना सईद असलम नूर की थी। कार्यक्रम में अब सुनिए एल्बम बूंद से ये गीत, गायक कलाकार गीतकार और संगीतकार जल दी बैंड।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रही है एल्बम तेरा मेरा प्यार से श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये गीत। इस गीत का संगीत तैयार किया है प्रेम और हरदीप ने।

0: श्री सिद्धि विनायक अस्पताल उच्चतम तकनीक और अनुभवी डॉक्टर्स के साथ यहाँ उपलब्ध है सभी प्रकार के स्त्री रोगों का इलाज, जैसे बच्चेदानी का ऑपरेशन, डिलीवरी सुविधा, सीजर ऑपरेशन से डिलीवरी, स्तन में गठान और निसंतानता का किफायती व आधुनिक इलाज।
1: श्री सिद्धि विनायक अस्पताल, मेन तिली रोड, पंजाब नेशनल बैंक के सामने सागर।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू की आवाज़ में ये गैर फिल्मी गीत। संगीत हरदीप सांधू और प्रेम हंस का है। शब्द रचना प्रवीण भारद्वाज की है।

गैर फिल्मी गीत और संगीत पर आधारित कार्यक्रम संगीत सरिता अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने को है, बस कुछ ही पलों के इंतज़ार के बाद आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। करते हैं थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: ताकत रहा है। नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और उसके 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 साल में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को एक विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम एशिया में संकट पैदा न होता तो अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से भारत दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल हो जाता। श्री सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ रही है। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 साल बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह जानकारी दी। इससे पहले फरवरी 2023 में रेपो दर को 6.25% से बढ़ाकर 6.5% किया गया था। वर्ष 2023-24 में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया, हालांकि 2025 से इसमें कटौती शुरू की गई थी। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त किया है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार GST व्यवस्था में अगले चरण के सुधारों के लिए 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बगैर अनुमति के प्रवेश के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हिंदी को बढ़ावा देने का आधार भाषा के इस्तेमाल को थोपने के बजाय इसमें अधिक अवसर और भागीदारी को बढ़ावा देना होना चाहिए। हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक में उन्होंने कहा कि जब हिंदी रोजगार और पेशेवर अवसर सृजित करेगी तो इसका इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। इस अवसर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की कौशल पत्रिका का लोकार्पण भी किया गया। रूस ने कल रात यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इन हमलों में 4 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत हो गई और करीब 60 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के अनुसार उत्तरी चेरनिहिव क्षेत्र का प्रिलुकी सबसे अधिक प्रभावित हुआ। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केंसो सुआई को दिया गया है। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने यह सम्मान उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटालिसिस की खोज के लिए दिया है। उन्होंने रसायन विज्ञान में मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब चुनने की प्रक्रिया पर काम किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने, तराने नए पुराने। इस कार्यक्रम में आप सभी का समाचार के बाद फिर स्वागत करते हैं।

0: शुक्रिया।
1: लता मंगेशकर की आवाज में आपने आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गीत सुना। संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम था शारदा।
2: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
3: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
2: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
4: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
2: विविध भारती से

0: आनंद बख्शी का लिखा हुआ एक और गाना भी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। राजा और रंक फिल्म का ये गीत आपने सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे और कहते क्या थे करते थे। और ऐसा
0: बंडी और बबली फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं।

0: उदित नारायण, सुनिधि चौहान और नेहरा जोशी की आवाजों में गुलजार का लिखा गीत आप सुन रहे थे बंटी और बबली फिल्म से।
1: तराने नए पुराने,
2: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
3: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
2: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
4: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
2: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
2: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
6: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
2: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
6: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
2: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक विलक्षण गायक।
7: अरे ओरे है।
2: संगीत के साधक।
7: ओ रे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
2: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
7: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
2: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
8: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
2: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: इस गाने के साथ ही आज का तराने नए पुराने कार्यक्रम ये ही समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: तराने नए

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार गीत। कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।

0: दिवाली से पहले दिवाली धमाका।
1: स्वराज 735 FEE रोटावेटर के साथ मात्र 7,21,000 रुपए में, नियम व शर्तें लागू।
0: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
1: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स खेमलासा रोड बीना,
0: माणिक मोटर्स छोटा करीला सागर।
1: संपर्क करें 87200096777
0: 8720009677।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सुनिए तीन देवियां फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में गीत। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है, संगीत एस डी बर्मन का है।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सुनिए साहेब बीबी और गुलाम फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में गीत। हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में ये गीत है। शब्द रचना शकील बदायूं ने की है।

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार गीत को हम संपन्न कर रहे हैं। दीजिए इजाजत। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकरंग।

0: श्रोताओं, ये देशभक्ति लोकगीत अभी आपने सुना। लोकगीत कलाकार थे बद्री प्रसाद परदेसी।
1: गुरुवार सुबह 10:55 पर सुनिए दीपक मेमोरियल एकेडमी मकरोनिया सागर द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम दीपक की ज्ञान ज्योत।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कर्मा करम 287 चाय और साथ में मिस्टर 287 क्रिस्पी कुकीज,
2: चाहे सुबह की शुरुआत हो या शाम का छोटा सा ब्रेक,
3: मिस्टर 287 कुकीज और 287 चाय
1: स्वाद का परफेक्ट कॉम्बिनेशन।
4: दिवाली से पहले दिवाली धमाका,
5: अपने पुराने टू व्हील ड्राइव को फोर व्हील ड्राइव से करें अपडेट, खेती को दें नई दिशा, नियम व शर्तें लागू।
4: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
5: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स, खेमलासा रोड, बीना,
4: माणिक मोटर्स, छोटा करीला, सागर।
5: संपर्क करें 8720096977
4: 8720009677।
6: कार्यक्रम में आप सुनिए चेतावनी अज्युति दास कबीरपंथी की आवाज में।
7: को सा

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंग। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। बस कुछ ही पलों में सुनिएगा हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संगठन के बोर्ड सदस्यों के साथ इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले वार्ता की। ये संगठन मोबाइल संचालकों तथा इससे जुड़े उद्योगों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। श्री मोदी ने विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है। नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सवेरे श्री विनायक मंदिर में देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
2: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा

कहा है कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट पैदा न होने पर अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से भारत दुनिया के शीर्ष 3 देश में शामिल हो जाता। श्री सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ रही है। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी। इससे पहले फरवरी 2023 में रेपो दर को 6.25% से बढ़ाकर 6.5% किया गया था। वर्ष 2023-24 में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया, हालांकि 2025 से इसमें कटौती शुरू की गई थी। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त किया है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार जीएसटी व्यवस्था में अगले चरण के सुधारों के लिए 5 सूत्रीय योजना का प्रस्ताव रखेगी। दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हिंदी को बढ़ावा देने का आधार भाषा के इस्तेमाल को थोपने के बजाय इसमें अधिक अवसर और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देना है। हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक में उन्होंने कहा कि जब हिंदी रोजगार और पेशेवर अवसर सृजित करेगा तो इसके इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। इस अवसर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की कौशल पत्रिका का भी लोकार्पण किया गया। रूस ने कल रात यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इन हमलों में 4 बच्चों सहित 19 लोगों की मौत हो गई और करीब 60 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के अनुसार उत्तरी चेर्निहिव क्षेत्र का प्रिलुकी सबसे अधिक प्रभावित हुआ। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआई को दिया गया है। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने यह सम्मान उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटालिसिस की खोज के लिए दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 7:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले आपको जानकारी दे रहे हैं आज की प्रसारण सभा के कार्यक्रमों की। शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार है। कुछ ही समय के बाद यानी 7:10 से सुनिएगा प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से। 7:20 से कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण हम करेंगे। रात 8 से सुनिएगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंतर्गत कुछ फिल्मी गीत और संगीत। 8:20 से सुनिएगा कार्यक्रम संगीत सरिता। 8:45 से दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या का अनुप्रसारण और 9 से कार्यक्रम मन चाहेगी। आज रात 9:30 से विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात 11 से सुनिएगा हिंदी में समाचार और 11:05 से अंग्रेजी में समाचार का अनुप्रसारण। आज की प्रसारण सभा का समापन हम रात 11:10 पर करेंगे। और श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत अब जानकारी कल यानी गुरुवार 8 अक्टूबर सन 2026 के प्रसारण सभा के कार्यक्रमों की। हमेशा की तरह

प्रसारण सभा की शुरुआत हम करेंगे कल सुबह 5:51 पर, और उसके बाद 6 बजे से हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से आप सुनिएगा। 6:05 से सुनिएगा कार्यक्रम अर्चना के अंतर्गत भक्ति संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम, और 6:25 से कार्यक्रम विवरण आप सुन सकेंगे। 6:30 से रविंद्र साठे के गायक स्वर में सुनिएगा श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। 6:40 से सुनिएगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 6:55 से सुनिएगा संस्कृत में समाचार रिले करेंगे हम दिल्ली केंद्र से। कल सुबह 7 बजे से कार्यक्रम सुबह सुबह, और 7:05 से कार्यक्रम कृषि संकेत। कल सुबह 7:10 से भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार हम रिले करेंगे, जिसके बाद 7:20 से समय होगा कार्यक्रम मन चाहे गीत का। 7:45 से कार्यक्रम संगीत सरिता आप सुन सकेंगे। कल सुबह 8 बजे से सुनिएगा दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। 8:15 से कार्यक्रम लोक संगीत। कल सुबह 8:30 से भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। 9 बजे से सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे। 10 बजे से जिले की चिट्ठी कार्यक्रम भोपाल केंद्र से आप सुन सकेंगे। 10:05 से सुनिएगा फोन इन प्रोग्राम फोन करें लोकगीत सुने का पुनः प्रसारण, और 10:55 से सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम दीपक की ज्ञान ज्योत। कल सुबह 11 बजे से सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, और 11:30 से मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। बस कुछ ही पलों में सुनिएगा प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से।

0: मीटर पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 7:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
2: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
1: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
2: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
1: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट।
2: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
1: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
2: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में।
3: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: को मुक्त किया। मुख्यमंत्री कल मुंबई में उद्योगपतियों से निवेश पर संवाद करेंगे और प्रदेश में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 3 दिन विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से लेकर सरकार के प्रमुख के रूप में निरंतर सेवा के 25 साल पूरा होना जनता के आशीर्वाद का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इन 25 वर्षों में जनता से मिला विश्वास और अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सभी नागरिकों की समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है और भारत अब अपनी बढ़ती ताकत तथा चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए दुनिया में चर्चा का विषय है। उन्होंने अनुच्छेद 370 और नक्सलवाद जैसी चुनौतियों के समाधान का भी उल्लेख किया।
1: जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समस्या ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है, लेकिन आज आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान लिया गया, लेकिन आज इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। जो आतंकवाद भारत के भाग्य को ही चुनौती दे रहा था, लेकिन यह भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है, हमने घर में घुसकर मारा और दुश्मनों को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। दूर संचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 4 दिवसीय कार्यक्रम 7 से 10 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष की थीम सीमाओं से परे विस्तार है। आयोजन के 4 प्रमुख स्तंभ सृष्टि, संवर्धन, सशक्त और सुरक्षा है। आईएमसी में 5G, 6G, AI नेटवर्क, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और क्वांटम कम्युनिकेशन समेत 9 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज सागर जिले के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में कुनू नेशनल पार्क से लाए गए 2 चीतों को वन क्षेत्र में विमुक्त किया। इसके साथ ही वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व प्रदेश में चीतों का 3रा आवास बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभयारण्यों में होने वाली पर्यटन आय में स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है और बफर जोन के गाँवों में होम स्टे विकसित करने के लिए सरकार अनुदान दे रही है।
2: जहाँ जहाँ अभयारण्य है, जहाँ पर्यटक आते हैं और अंदर घूम करके गाड़ी से जो दिखाते हैं, उनसे जो पैसे का कलेक्शन होता है, जैसे इस साल अभी जो कलेक्शन मुझे बता रहे थे 80 करोड़ का कलेक्शन हुआ, तो 20 करोड़ की राशि अपने ग्रामीण वासियों को बांट करके दी। ये उनका हक है जो उसी अभयारण्य के आसपास अपने गांव, अपने घर आबाद करके रहते हैं। वो मकान में 1 कमरा 2 कमरा 3 कमरा बनाते हैं तो होम स्टे में वो किराए पे भी दे सकते।
0: मुख्यमंत्री ने रहली में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के समापन समारोह में गिद्ध संख्या आकलन 2026 रिपोर्ट और अन्य सामग्री का विमोचन किया तथा वन्य जीव संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले वन कर्मियों को भी सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा में 25 साल पूरे हुए। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारे विशेष श्रृंखला में ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवाद पे प्रहार की जानकारी दी जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयानों में इस नए रुख को प्रमुखता से रेखांकित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने स्पष्ट किया है कि सीमा पार से होने वाले आतंकवादी हमलों का जवाब अपनी शर्तों पर दिया जाएगा और आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को सीधे निशाना बनाया जाएगा। भारत ने आतंकवाद को संरक्षण देने वालों और आतंकवादी संगठनों के बीच अंतर करने से भी इनकार किया है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में परमाणु धमकी या दबाव को स्वीकार नहीं करने का संदेश दिया गया है। भारत का स्पष्ट मत है कि आतंकवाद और बातचीत तथा आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। भविष्य में पाकिस्तान के साथ किसी भी बातचीत का केंद्र आतंकवाद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर होगा। ये भारत की आतंकवाद के खिलाफ दृढ़, स्पष्ट और नए रणनीतिक रुख को

0: चाहता है। आकाशवाणी समाचार गाजियापुर से मैं अजीत पाराशर।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल मुंबई में फार्मा मेडिकल डिवाइसेस समेत विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ संवाद करेंगे। जनवरी 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले होने वाले संवाद में मध्यप्रदेश के क्षेत्र विशेष औद्योगिक क्षेत्रों और निवेश अवसरों को उद्योगों की जरूरतों से जोड़ने पर जोर रहेगा। प्रदेश में मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने के लिए आज से 3 दिन तक सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। संबंधित बूथ लेवल अधिकारी पात्र मतदाताओं से आवेदन लेकर नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने बताया कि फॉर्म 6 के अलावा किसी मतदाता से घोषणा पत्र नहीं लिया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में सेवा संकल्प अभियान और प्रोजेक्ट संकल्प के तहत वृहद करियर कार्यशाला आयोजित की गई। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड आने वाले समय में पर्यटन की संभावना को देखते हुए शहडोल जिले के जनपद पंचायत जयसिंह नगर के ग्राम डोढ़ा में भूमि लीज पर देगा। शिवपुरी जिले में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आज, कल और 9 अक्टूबर को विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे होने पर आज जिला स्तरीय सेवा ज्योति संकल्प यात्रा का आयोजन पूरे देश के साथ ही सीहोर जिले में भी किया गया। मंदसौर में सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले में सेवा ज्योति यात्राएं निकाली गईं। विभिन्न मार्गों से यात्राएं जिला मुख्यालय पहुंची, जहाँ सेवा संकल्प सभा में प्रधानमंत्री श्री मोदी का उद्बोधन लाइव देखा और सुना गया। राजगढ़ में राज्य मंत्री गौतम टिटवाल ने कल सारंगपुर सिविल चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सतना बीटीआई मैदान में आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा ज्योति यात्रा के जिले के कार्यक्रम में जिला विकास पुस्तिका का वितरण भी किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम सभा।

0: ग्राम सभा सुनवी बारे सवई किसान श्रोता भैया बिन्नारो संतोष पाठक
1: और नीरज सोनी की राम राम।
0: नीरज भैया, आज के ग्राम सभा कार्यक्रम में अपन और कौन कौन सी जानकारी लेके आए हैं, सो बिना देरी करें सबसे पहले हम उनके बारे में बताएं दीजिए।
1: बिल्कुल बता दूं संतोष भैया।
0: तो आज 7 अक्टूबर है नीरज भैया, आज गुरु गोविंद सिंह जी की पुण्यतिथि है, सो ये विषय पे अपन चर्चा करें। संगे संगे स्वतंत्रता सेनानी दुर्गावती देवी जी की जयंती है, सो ये पे अपन चर्चा कर रहे हैं। और इसके अलावा आज भैया विश्व कपास दिवस है, सो ये विषय पे चर्चा कर रहे हैं। और नीरज भैया एक विषय और है, विश्व दृष्टि दिवस माने जो कल है 8 अक्टूबर को,
1: माने इन महत्वपूर्ण दिन दिवसों की चर्चा कर हैं। और जी काय मनाए जाते हैं किसान भैया रो, जी हम और संतोष भैया दो जने मिल के आपको बताते हैं आज की चर्चा में।
0: बिल्कुल, एक अलावा नीरज भैया अपनो जो साप्ताहिक क्रम रहते हैं हेलो ग्राम सभा, तो अपन जो भी अपन अपने किसान भैयाहरों को सुनवा है वो जान है कौन से किसान भैयाहरों ने फोन लगाए, का उनकी समस्याएं हती, कौन से विशेषज्ञ घरें आए थे, कैसी उनकी समस्याओं को समाधान भाव, सब कछु जान है आज के हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम में। के अलावा नीरज भैया,
1: संतोष भैया, तो सबसे पहले अपन जो है चर्चा शुरू करें, आपने सभी बता दो कि लोक भजन भी रहने हैं, अनाज मंडी के भाव, और किसान भैया रो आप सभी जने जाना था मौसम की जानकारी अपने कार्यक्रम के आखिर में आप सभी जनों को देते ही कहानी। संतोष भैया सबसे पहले अपन बात कर रहे थे आज के खास दिन दिवस की, किसान भैया रो गुरु गोविंद सिंह जी की आज पुण्यतिथि है। हर साल 7 अक्टूबर को गुरु गोविंद सिंह जी की पुण्यतिथि मनाई जात कहानी। किसान भैया रो जी को शहीद दिवस भी अपन कहते हैं। भैया रो गुरु गोविंद सिंह जी ने पवित्र ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करी थी। आपने अन्याय अत्याचार और पापों को खत्म कर भी और संगे संगे धर्म की रक्षा की लाने मुगलों से 14 बार युद्ध लड़ो। आपने 1699 में बैसाखी के दिना खालसा पंथ की स्थापना करी थी। तो किसान भैया रो ऐसी महान विभूति को अपन उनकी पुण्यतिथि पे कोटि कोटि नमन करते हैं।
0: बिल्कुल नीरज भैया, अपन कोटि कोटि नमन करें लेते हैं। अब नीरज भैया अपन बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानी दुर्गावती देवी जी की जयंती के बारे में। हर साल 7 अक्टूबर को दुर्गावती देवी जी की जयंती मनाई जाती है। भैया रो दुर्गावती देवी जो उनको दुर्गा भाभी भी कही जाती, उनको उनके अदम्य साहस एवं देशभक्ति के लाने जानो जाते हैं। आपने स्वतंत्रता संग्राम में अपनो अमूल्य योगदान दो, तो आपको जीवन साहस समर्पण एवं राष्ट्र प्रेम को प्रेरक उदाहरण है। तो भैया हरो ऐसी महान वीरांगना की जयंती पे अपन को कोटि कोटि नमन करते हैं। तो भैया नीरज भैया जात हो गई दुर्गा देवी जी के बारे में चर्चा, अब अपन बात करते हैं जैसे पहले कही थी कि आज विश्व कपास दिवस भी
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल, और अपन किसान भैयाहरों की लानी दिवस को महत्तम समझ वो भी बहुत जरूरी
0: बिल्कुल
1: है।
0: और जो दिवस हर साल आज के दिन माने 7 अक्टूबर को मनाओ जाते हैं, ये दिवस को मनावे को जो उद्देश्य है कि ये दिवस के माध्यम से कपास उत्पादक देशों में रोजगार सृजन और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा दो जाते हैं। कपास को सफेद सोना भी कही जाते है, काय से जो वस्त्र उद्योग की रीढ़ होवे के संगे संगे दुनिया भर के लाखों किसानों और ग्रामीण परिवारों की आजीविका को मुख्य साधन है। एक लाने आज जो दिवस मनाया जाते है, ये दिवस के माध्यम से कपास क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ावो और विकासशील देशों को वैश्विक बाजार तक बेहतर पहुंच दुआवो है।
1: एक अलावा किसान भैया रो कल यानी 8 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस भी अपन मने हैं। किसान भैया रो 8 अक्टूबर को जो महत्वपूर्ण दिवस मनाओ जाते हैं और स्थानीय स्तर पे आँखों की जांच जैसी कार्य जो है शिविर के माध्यम से करी जाते हैं। जी मैं किसान भैया रो अपन सब जनों को मुफ्त में आँखों की जाँच की सुविधा दी जाते हैं। और ये दिवस को मनावे को एक ही मुख्य उद्देश्य कहा हो कि ऐसी स्वास्थ्य नीतियों की वकालत करबो जो दृष्टि यानी अपनी नज़र को बचावे वाले उपचार को सस्तों यानी किफ़ायती बनाए। हर साल एक विषय यानी एक थीम भी ये दिवस पे खास तौर पे लई जात है। और आंसुओं की जो थीम यानी जो विषय है वो बहुत ही प्यारो है संतोष भैया।
0: हाँ।
1: अपनी आंखन से प्यार करो।
0: वाह।
1: तो निश्चित
0: नीरज भैया चर्चा अपनी और भी आगे लगी रहे है। मनो पेलन जी संदेश सुने लीत। ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा
2: दिवाली से पहले दिवाली धमाका।
3: स्वराज 735 FEE रोटावेटर के साथ मात्र 7,21,000 रुपए में, नियम व शर्तें लागू।
2: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
3: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स खेमलासा रोड बीना,
2: माणिक मोटर्स छोटा करीला सागर।
3: संपर्क करें 8720096977
2: 8720099677। गुरुवार सुबह 10:55 पर सुनिए दीपक मेमोरियल एकेडमी मकरोनिया सागर द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम दीपक की ज्ञान ज्योत।
3: बात ये है,
2: ये शर्माने की बात नहीं है, अगर आप पाइल्स फिशर फिस्टुला जैसी बीमारियों से परेशान हैं, तो मिलिए सर्व सुविधा संपन्न श्री सिद्धि विनायक अस्पताल में, जहां आपको मिलेगी सस्ती दरों पर ऑपरेशन की सुविधा जैसे लेजर और स्टेपलर।
3: श्री सिद्धि विनायक अस्पताल मेन तिली रोड पंजाब नेशनल बैंक के सामने सागर।
4: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
5: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दिवाली से पहले दिवाली धमाका।
2: अपने पुराने टू व्हील ड्राइव को फोर व्हील ड्राइव से करें अपडेट, खेती को दें नई दिशा, नियम व शर्तें लागू।
1: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
2: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स खेमलासा रोड बीना,
1: माणिक मोटर्स छोटा करीला सागर।
2: संपर्क करें 8720096977
1: 8720009677।
3: संदेशों के बाद अपन फिर से तनक चर्चा खवांगे बड़ा से नीरज भैया। देखो दिन दिवस की तो हो ही गई चर्चा, अब थोड़ी हम जाए कह रहे थे कि जोन हिसाब से अब मौसम चल रहा है तो इसमें क्या है कि बीमारियां कछु ज्यादा ही फैल रही हैं।
4: सांसी कई इसमें ना केवल सावधानियां रखने बल्कि अपनो ख्याल भी रखने का।
3: बिल्कुल, जैसे सर्दी खांसी है या कुछ जरूरत से ज्यादा हो रही है तो हम बस इतना ही कहने को मतलब है नीरज भैया कि इतना खान पान पे अपन को ज्यादा ध्यान देने हैं।
4: बिल्कुल बिल्कुल,
3: पौष्टिक आहार लेने हैं और शुद्ध साफ पानी पीने हैं। और घर में भैया अगर कोनो को सर्दी खांसी हो जात है तो तना कौन सा दूरी बना के रखें, कैसे जी लगना रोग से रहते
4: सांसी के दे संतोष भैया,
3: तो इन चीजों को थोड़ो ध्यान रखने हैं।
4: और किसान भैया रो संतोष भैया ने स्वास्थ्य की तो आपकी देखभाल की जानकारी दे दी, आगामी बोनी के विषय में भी चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। किसान भैया रो किसानी में हर चीज को समय जो है वो निर्धारित रहा थे, सही समय पे अगर कार्य करो जाए तो लाभ जरूर ही मिला थे।
3: बिल्कुल नीरज भैया,
4: तो जा बात आगामी बोनी को लेके भी लागू होते। किसान भैया रो बोनी को जो सही समय रहे यानी पर्याप्त नमी माहौल में रहे उ हिसाब से अपन को सही समय पर बोनी करने का है। और एक ही लाने विशेषज्ञों की राय सलाह लेते रहने, वैसे तो हमारे किसान भैया हरे वर्षों बरस से जो किसानी के कार्य कर रहे हैं और बेजा अनुभवी हो गए, मनो फिर भी अपन को समय को ऐसे ख्याल रखने हैं कैसे आसों जो स्थिति अभी मौसम की चल रही है या पानी की पर्याप्त उपलब्धता अपने पास है या नहीं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखत भाई। ना केवल हमें बोनी के पहले जो तय कर लेने हैं कि हमें कौन सी किस्म जो है बोने का है, गेहूँ हो चना हो मसूर हो जो भी अपन इस समय पे ले रहे हैं, पहले जा देख लेने कि अपने पास पानी की उपलब्धता कितनी का है, उस हिसाब से अपन को किस्मों को चयन करने का हो। और हम तो संतोष भैया जाके हैं कि ये मामले में जो है राय सलाह विशेषज्ञों की तो लेने ही है, संगे संगे अपने ग्राम सभा कार्यक्रम से नियमित तो जुड़े रहने हैं, समय समय पे अपने कार्यक्रम में अपन चर्चा के माध्यम से ये सब जानकारी आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप किसानी में लगातार उत्पादन लाभ लियो, आर्थिक प्रगति करो और भैया रो बहुत अच्छी किसानी कर सको।
3: बिल्कुल, आपने नीरज भैया जो विशेषज्ञों की सलाह के बारे में कही है ऐसा महत्वपूर्ण हो जाता है कि मन से कौन उन काम नहीं करना, कैसे अपन मेहनत भी कर रहे हैं लागत भी लगा
4: बिल्कुल
3: रहे हैं, तो अपन चाहते हैं कि जो अपनी मेहनत और लागत है वो सही समय पर पूरा लाभ अपन को मिल जावे।
4: बिल्कुल,
3: चाहे छोटी से छोटी काय ने आपको समस्या हुई आप तो हेलो ग्राम सभा में फोन लगाओ, इतने जो विषय विशेषज्ञ घरे आते हैं भी आपकी जो भी समस्या हुई है निश्चित रूप से उनको समाधान करें।
4: बिल्कुल बिल्कुल करें।
3: अब जैसे भैया आप चर्चा चलाई रही है हेलो ग्राम सभा की, तो आज 7 अक्टूबर है तो आज है बुधवार, तो अपनो क्रम है आज को हेलो ग्राम सभा।
4: बिल्कुल,
3: तो आप बिना देरी करें अपन किसान भैया को जो आज को हेलो ग्राम सभा सुनवाते हैं।

ग्राम सभा कार्यक्रम में आज दिन बुधवार को अपनो साप्ताहिक क्रम रहत है हलो ग्राम सभा। किसान भैया हरो स्वागत कर रहे हैं आज की अपनी हलो ग्राम सभा में आप सभी किसान श्रोता भैया और बिन्ना हरों को। किसान भैया हरो अपने ये कार्यक्रम में आपकी किसानी पशुपालन बागवानी से जुड़ी जो समस्याएं रहते हैं उनके समाधान स्टूडियो में विशेषज्ञों द्वारा आप तक पहुंचाए जाते हैं। आज के अपने हलो ग्राम सभा में भी विशेषज्ञ पधार चुके हैं। डॉक्टर एम पी दुबे साहब पधार चुके हैं जो वरिष्ठ

0: वरिष्ठ वैज्ञानिक और पूर्व अधिष्ठाता रहे हैं कृषि महाविद्यालय खुरई सागर में। डॉक्टर नीलेश शाह जी पधारे हैं, आप अतिरिक्त उप संचालक हैं पशु चिकित्सा विभाग सागर में। किसान भैया रो, आप सभी जने अपनी खेती किसानी पशुपालन बागवानी की समस्याओं के समाधान और किसानी में नवाचार से जुड़ी जानकारी के लाने बिल्कुल तैयार बैठे हो, तो आज के अपने ये कार्यक्रम में हम और हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं, तो आपसे जुड़ रहे हैं और पहुंचा रहे हैं आप तक खेती किसानी पशुपालन बागवानी की समस्याओं के बहुत उम्दा और उपयोगी से समाधान। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार भैया, और स्वागत कर रहे हैं आज की अपने हेलो ग्राम सभा में आपको।
1: ग्राम पंचायत ग्रवल से बोल रहे हैं सर, हरगोविंद कुर्मी।
0: कहाँ पड़ता हो जो गाँव?
1: तहसील बीना जिला सागर।
0: अच्छा हरगोविंद भैया, बताओ क्या समस्या ले आए हो?
1: समस्या तो अबे खाद ही की चल रही, खाद नहीं मिल रहा हो।
0: खाद प्राप्त नहीं हो रहा, यानी आगामी बोनी की तैयारी लगा रहे हो?
1: हाँ, बोनी की तैयारी लगा रहे, परंतु खाद की व्यवस्था नहीं हो रही। और अब की बार कौन सी फसल लगाएं? के
2: बिल्कुल, आपका दूसरा प्रश्न भी आ गया है। पहला प्रश्न है नीरज जी, जब भी हमारे किसान भाई बोनी बखन्नी का समय होता है तो उनको चिंता होती है अपने मतलब उर्वरकों की, खादों की
0: जी,
2: ठीक है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट आदान है, बगैर उसके मेरे ख्याल से सफल खेती होना संभव नहीं होता है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि आप किसानों के साथ साथ कृषि विभाग, कृषि कल्याण एवं कृषि विकास विभाग साथ साथ में आपके बीना में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जैसे SDM साहब हुए, जो वहाँ का प्रशासनिक अमला है, वो आप लोगों की चिंता आपके बराबर करता है। और निश्चित रूप से आपको खादों की उपलब्धता के बारे में इस दिशा में बिल्कुल निश्चित रूप से कार्य चल रहा होगा और चल रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समय पर मिलेगा। आपके क्षेत्र के जो कृषि अधिकारी हैं, आपके विकास खंड में जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हैं, उनसे सतर्क संपर्क में रहें। और दूसरा ऐसा जो मेरे को जहां तक पता है नीरज जी, कि आजकल टोकन व्यवस्था
0: लागू हो गई,
2: जिसमें तमाम सभी किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप इन उर्वरकों का वितरण समय से किया जा सके। दूसरा प्रश्न इनका क्या था, कौन सी फसल बोएं? देखिए हमारे जिले में लगभग 13-14% बारिश कम हुई है
0: जी।
2: किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिनके जल स्रोत हैं अच्छे से भर गए हैं, लबालब हैं, तो वहाँ तो आप गेहूं की फसल ले सकते हैं 4-6 पानी वाली। लेकिन ज्यादातर किसानों को सलाह दी जाती है वर्षा की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कि इस वर्ष आप सिंचित गेहूं उतने ही क्षेत्र में मोएं जितने में आप 4-6 पानी दे सकें। ऐसा ना करें कि पूरे क्षेत्र में गेहूं बो लिया और 2-2 पानी में आपने फसल कर ली, तो उसमें आपको घाटा लगेगा। उसकी जगह दूसरे जिन्स बोइए, आयल सीड्स हैं, पल्सेस हैं, ओके, चना है, मसूर है, अलसी है, सरसों है, इन फसलों का समावेश कीजिए। आपकी धरती भी बदलेगी, आपका बीज भी बदलेगा और उत्पादन सही मिलेगा।
0: जी जी जी, हरगोविंद भैया, उम्मीद है आपको जानकारी से पूरी तरह संतुष्टि हुई है।
1: जी जी सर,
0: ऐसे ही जुड़े रहो आकाशवाणी सागर से।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। हेलो।
3: हेलो जयराम जी सर जी।
0: जयराम जी भैया, स्वागत कर रहे हैं आपको हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम आकाशवाणी सागर से।
3: हाँ सर जी, हम ये पूछ रहे सर जी,
0: पहले नाम बता दो, अपना परिचय दे दो।
3: हम परम लाल हरवाजी बोल रहा सर जी।
0: परम भैया कहाँ से बोल रहे? क्या समस्या है परम भैया?
3: हमारी समस्या सर जी के 15 पेड़ खा रहे हैं आवरी के।
0: हाउ
3: फट नहीं रहा है सर जी, 20-22 साल भाई जा रहे सर जी।
0: चलो आपको बहुत उम्दा सी जानकारी डॉक्टर MP दुबे साहब दे रहे हैं, सुनो ध्यान
2: भैया। परम लाल जी, 20-21 साल बहुत होते हैं, बीजू पौधा भी 10-12 साल में फल देने की क्षमता उसमें आ जाती है, परिपक्व हो जाता है। निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है नीरज जी, आप हमारी बात से परम लाल जी संतुष्ट हो जाएंगे। जहाँ आपके पौधे लगे हैं, क्या वहाँ हमेशा पानी तो नहीं बहता है उनके आसपास?
3: नहीं, नहीं, नहीं सर जी, बंदियों पर
2: अच्छा, बंदियों पे है फिर भी नहीं फल रहा है, तो उसका कारण मुख्य रूप से आपका जो कुपोषण होता है जमीन में, पोषक तत्व जो 16 पोषक तत्व पौधे की विकास वृद्धि प्रजनन के लिए चाहिए होते हैं, उनमें से निश्चित रूप से किसी न किसी पोषक तत्व की कमी होने के कारण नीरज जी ऐसे में जो फल वृक्ष हो, चाहे फसलें हो, चाहे बागवानी हो, ये प्रभावित होते हैं पौधे। तो इनको चाहिए कि साल में हर 3 महीने के बाद तो कम से कम 50 किलो गोबर की खाद, 1 किलो DAP, 0.5 किलो यूरिया और 1.5-250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, साथ में 10 से 15 ग्राम कोई ऐसा इंसेक्टिसाइड दानेदार या लिक्विड जो भी उपलब्ध हो उसको मिला के इस 50 किलो गोबर की खाद में, और एक काम करना है जो थाला बनाना है कम से कम पौधे से 3 फीट छोड़ के, 1 मीटर छोड़ के ये गोल घेरा

0: बनाना है उसके चारों तरफ
1: जी,
0: और उस मिट्टी को निकाल के वो 50 किलो गोबर की खाद और जो मैंने रासायनिक खादों की मात्रा बताई, दवाई की बताई, उनमें मिला के उन थालों को भर दे और हल्की सिंचाई कर दे। और ये कम से कम साल में हर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद 3 बार ये प्रक्रिया करना है। निश्चित मान के चलिए अगर अभी आप वो दे देंगे तो आने वाले मई में इसमें फूल आते हैं, अप्रैल मई में फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप 2 बार इसको प्रक्रिया को करेंगे तो परमलाल जी यकीन मानिए कि ऐसे फल वृक्ष जिनमें फलन नहीं हो रहा है, बीजू पौधे हों चाहे कलमी हों जिनमें फूल झड़ जाते हैं, फल झड़ जाते हैं या फल ही नहीं आते, फूल नहीं आते, अगर आप ये उपचार देंगे पौधे की उम्र के अनुसार तो 100% उसमें फलन फूलन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
1: ठीक है परम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही जुड़े रहने हैं अपने कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा से। किसान भैया हरो ग्राम सभा में आप सभी जनों की खेती किसानी पशुपालन बागवानी की समस्याओं के समाधान लगातार जारी रहने हैं। कार्यक्रम में एक बार समय होगा एक बहुत ही प्यारे से कृष्ण भजन सुनवे को। ई भजन खो गाओ है हल्लन भाई और इनके संगी साथियों ने।

0: हेलो,
1: हाँ जी,
0: स्वागत कर रहे हैं हेलो ग्राम सभा में।
1: नेतराम खोजे बोल रहे जी, कोठीजात।
0: नेतराम जी, नेतराम भैया बताओ क्या समस्या है।
1: मैंने नारियल को पेड़ लगाओ है
0: हाँ,
1: तो वह को फल टपक रहा हो।
0: नारियल की समस्या को समाधान डॉक्टर एमपी दुबे साहब से ले लो।
2: देखिए नीरज जी, दूसरे प्रदेशों में जो दूसरे प्रकार की जलवायु होती है,
0: जी
2: हमारे यहाँ नहीं होती है। हमारे किसान भाई ये प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन एक चीज समझ लें,
0: जी,
2: जो चीज जहाँ की होती है पुश्तैनी सिर्फ वही फायदा करती
0: जी,
2: है।
0: जी,
2: हर फल वृक्ष के लिए, हर फसल के लिए
0: माहौल
2: एक
0: जरूरी
2: माहौल
0: रहा
2: जरूरी होता है, खासकर मौसम और जलवायु की जो आवश्यकता होती है। अगर 20 साल के आसपास का पौधा, 15 से 20 साल का, तो आपका 1 किलो आपका DAP हो जाएगा, आधा किलो यूरिया हो जाएगा, 250 ग्राम म्यूरेटा पोटास हो जाएगा, और 10 से 15 ग्राम कोई इंसेक्टिसाइड उसमें जरूर मिला लें, ताकि जड़ क्षेत्र में अगर आने वाले समय में कोई कीड़ा नुकसान करेगा तो उससे बचत होगी।
0: जी
2: हर फल वृक्ष में अगर ये उपचार हमारे किसान भाई साल में 3 या 4 बार करेंगे, फल झड़ना, फूल झड़ना, फल ना आना, फूल ना आना, इस समस्या से वो निजात पा लेंगे।
0: जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद नेत्राम भैया। ये बीच में एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं।
3: हेलो ग्राम सभा, सर जयराम जी।
0: जयराम जी भैया, सही जगह फोन लगो और स्वागत है आपको, अपना परिचय दे दो।
3: गंधर्व राजपूत ग्राम हिंदोन राजघाट से बोल रहे सर।
0: गंधर्व भैया बताओ क्या समस्या है।
3: सर जी, गेहूँ चना जी पूछने थी, कौन सी वेरायटी वो में।
0: बिल्कुल आपको जानकारी मिल गई है।
3: जी सर, पशुओं को एक बार हमने पूछ लो सर, वो फोन कट गया तो।
0: हाँ तो आप फिर से पूछ लो
3: सर। पड़ियाँ गिरफ गई थी जो नाले में हमारी।
0: हाँ,
3: सुबह हो तो गई सही, मनो कम चल रही है सर जी, फूल गई थी।
0: हाँ हाँ हाँ, चलो आपको डॉक्टर साहब जानकारी दे रहे हैं, सुनो ध्यान से।
3: जी सर।
4: कितनी बड़ी पड़ियाँ है वो।
3: सर 1 साल की है सर। जी सर,
4: ठीक है। अब देखिए, उस समय गिर गई थी और मतलब अभी तो काफी समय हो गया है, तो उसका प्रभाव तो कुछ होने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर चर नहीं रही है तो थोड़ा सा उसमें हमको एक दो बातों का ध्यान रखना है कि इस मौसम में क्या होता है कि बारिश के दौरान कृमि की समस्या भी रहती है पशुओं में, तो आप कृमि नाशक दवाइयों पहले उसको दे दें, आपका जो पशु चर नहीं रहा है तो कृमि नाशक दवाइयों से अगर कृमि वगैरह होंगे और उसके कारण से कोई दिक्कत होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। एक कृमि नाशक दवाई आती है, जेनरिक नाम बता रहा हूँ मैं, आइवरमेक्टिन करके। तो आइवरमेक्टिन क्या है कि जो अंतः परजीवी होते हैं और बाह्य परजीवी होते हैं दोनों पर समान रूप से असर करती है, और जिसके कारण से आप कृमि का कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, थोड़ा सा अगर वो ठीक से चर नहीं रही हैं तो आप देसी इलाज भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अजवाइन और सौंफ सुबह शाम 2-3 दिन उसको खिला के देखें, तो अगर कुछ पाचन से संबंधित समस्या होगी तो इससे ठीक हो जाएगी। और इसके बाद भी अगर नहीं हो पा रहा है तो एक बार आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र पे जाके वहाँ पर डॉक्टर को दिखा सकते हैं, या फिर हमारा विभाग का एक चलित पशु चिकित्सा इकाई भी चलती है जिसका टोल फ्री फ़ोन नंबर 1962 है, 1962। इस पर अगर आप फ़ोन करेंगे तो जो चलित पशु चिकित्सा इकाई पर पदस्थ अमला है वो आपके घर पर आएगा और आपके पशु का परीक्षण कर समुचित उपचार वो कर देंगे, या जो निकटस्थ पशु चिकित्सा संस्था है वहाँ पर संपर्क करके आप आगे का उपचार करा सकते।
3: जी सर।
0: जी गंधर्व भैया, और आप जानकारी चाह रहे थे कि आगामी रवि सीजन में का बोनी कैसी का करी जाए ना।
3: जी सर,
2: जैसा कि विदित है हमारे किसान भाइयों को कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में भी
0: जी
2: बारिश अपेक्षाकृत कम हुई है, तो उसको मद्देनजर रखना है। और मैंने अभी एक जो हमारे पहले श्रोता थे, किसान भाई थे, उनके प्रश्न के उत्तर मैंने इसका जवाब दे दिया है। गेहूं एक ऐसी फसल है
0: जी
2: जो प्रायः सभी लोग सिंचित अवस्था में करते हैं, करना भी चाहिए, उत्पादन ज्यादा मिलता है, जरूरत। आप देख लें कि आपके जल स्रोत में पानी कितना है, कितने एकड़ में या कितने हेक्टेयर में आप गेहूं को 6 पानी उपलब्ध करवा सकते हैं। अगर आपकी जमीन मध्यम काली है तो, अगर गहरी काली है तो 4 पानी पर्याप्त होते हैं, अगर हल्की थोड़ी सी जमीन है तो उसमें 5 से 6 पानी लगते हैं
0: जी।
2: उस हिसाब से गेहूं का रकबा, सिंचित गेहूं का रकबा निर्धारित करें। अदरवाइज अगर पानी कम पड़ता है तो मेरा सुझाव है सभी किसान भाइयों से, सागर जिले के साथ साथ अन्य जिलों के किसान भाइयों से, जहां पानी की थोड़ी कमी रह गई है, ऐसी फसलों का चयन करें जो कम पानी चाहती हैं। उदाहरण के लिए दलहन फसल है
0: जी,
2: उसमें मुख्य रूप से मसूर है, चना है, ठीक है ना, तिलहनी फसलों में अलसी है, तो ऐसी फसलों को बोएं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद गंधर्व भैया, उम्मीद है आपको डॉक्टर साहब द्वारा दी गई सलाह जो है पूरी तरह समझ में आ गई हुई है।
3: जी सर,
0: बहुत धन्यवाद है, सही जुड़ी रहो आकाशवाणी सागर से। किसान भैया रो एक बार फिर हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम में मनोरंजन को समय है और एक बहुत ही प्यारो बारहमासी लोकगीत आप सभी जनों को सुनवा रहे हैं। ईखो गा के सुना रहे हैं जय प्रकाश पटेरिया और इनके संगी साथी।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: स्वागत कर रहे हैं अपने कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा में आपको।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार भैया, अपना नाम बता दो।
1: धर्मेंद्र हरवार बोला सर, ग्राम बरौदिया बल्लभ से।
0: धर्मेंद्र भैया बोलो।
1: जाके सर,
0: हाँ,
1: अपनी 2 एकड़ साफ हो गई है, 16 दिन कटवा बखंडी हो गई।
0: हाउ?
1: अब वो में मसूर बहुने अपन है।
0: हाउ?
1: तो कौन से महीना में बाई है? गन्ने है 3 सर। ऐसी है कि एक थन में से के।
0: अच्छा,
1: एक हाँ। 2 महीना भर जा रहा है।
0: 2 महीना भर जा रहा है
1: गज्जा। हाँ, ब्याह विवादी है महीने से महीना में।
0: हाँ,
1: तो ब्याह नहीं है।
0: चलो, आपको बहुत उम्दा सी जानकारी डॉक्टर नीलेश शाह जी दे रहे हैं, सुनो ध्यान से।
1: जी सर।
2: तो इसमें आप ये कर सकते हैं, वैसे तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, कई बार पोषक तत्वों की कमी के कारण भी ये समस्या हो सकती है। तो जो अभी उसके गर्भ में बछड़ा विकसित हो रहा है उसके लिए और आगे के लिए अच्छे दूध देने के लिए आप मिनरल मिक्सचर अभी खिलाइए उसको। मिनरल मिक्सचर मतलब खनिज मिश्रण जो होते हैं, जैसे अपने नमक के पैकेट आते हैं ना, लगभग 1 किलो 2 किलो 5 किलो की पैकिंग में आते हैं। तो रोज आप 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर उसको दीजिएगा, ताकि वो आगे उसका दुग्ध उत्पादन अच्छा रहेगा। और अगर किसी पोषक तत्व की कमी के कारण ये समस्या हो रही होगी तो ये समस्या भी आपकी बंद हो जाएगी। इसके बाद भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि उस थन में सूजन आ रही है या लालिमा आ रही है या गर्म है थन, तो उसमें एक संभावना रहती है कि किसी प्रकार का संक्रमण हो गया है। और थन के संक्रमण की स्थिति में तो आपको फिर किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को ही दिखाना पड़ता है। तो आपके निकटस्थ जो भी पशु चिकित्सा संस्था हो वहाँ पर आप ले जाके उसका उपचार कराएं।
0: जी धर्मेंद्र भैया, और आगामी बोनी के रूप में डॉक्टर साहब धर्मेंद्र भैया जो है मसूर लगा वो चाहते हैं।
3: देखिए नीरज जी, ऐसा देखा गया है कि 15 अक्टूबर के बाद अगर ये बोएंगे तो उस मसूर की फसल में बीजोपचार करने के बाद भी ऐसा देखा गया है कि अक्टूबर के महीने में जो किसान भाई नमी उड़ने के डर से उसके मारे जल्दी बोनी कर देते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि जहाँ बीज पड़ता है उस भूमि का तापक्रम अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, नमी ज्यादा होती है, मतलब पर्याप्त नमी होती है, तापक्रम ज्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में प्राकृतिक रूप से जमीन में अच्छे प्रकार की और हानिकारक दुनिया भर की फंगस रहती हैं, कवक रहते हैं
0: जी,
3: ओके, उनके जो जाले हैं वो बनते बिगड़ते रहते हैं, आकार लेते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जल्दी बोनी जब करेंगे, जब तापक्रम अपेक्षाकृत वातावरण का अभी दिनों दिन बढ़ने वाला है, बढ़ भी रहा है, ऐसी जमीन का भी तापक्रम नवंबर तक बढ़ेगा, तो ऐसे बढ़ते तापक्रम में आपको सलाह दी जाती है कि अभी मसूर जैसी फसल को ना बोएं, उसकी जगह आप अलसी बो सकते हैं, तोरियां बो सकते हैं और सरसों बो सकते हैं। इतनी जल्दी ना करें, हम वैज्ञानिक लोगों का तजुर्बा है। तो आपको सलाह दी जाती है कि आप मसूर ना बोएं, चना ना बोएं, सिर्फ आप ऐसे खेतों में जिनको जल्दी बोनी करना है, पानी की समस्या आगे हो सकती है, तो जो मैंने तिलहनी फसलों का सुझाव दिया
0: जी,
3: उनको बोएं।
0: तो धर्मेंद्र भैया, आपने समय रहते जानकारी ले ली, निश्चित रूप से आपको लाभ भी हुई है। धर्मेंद्र भैया, प्राप्त जानकारी से पूरी तरह संतुष्टि है?
1: जी सर।
0: चलो, बहुत बढ़िया कार्य करो, आपने जानकारी ले ली, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र भैया आपको। हेलो ग्राम सभा किसान भैया हरो, अबे आप सभी जने जुड़े थे अपने एक कार्यक्रम से, और आप सभी जने अपनी खेती किसानी पशुपालन बागवानी की समस्याओं के उम्दा और उपयोगी से समाधान जो है प्राप्त कर रहे थे। आज की अपने साप्ताहिक क्रम हेलो ग्राम सभा में विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर MP दुबे साहब पधारे, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक और पूर्व अधिष्ठाता रहे हैं कृषि महाविद्यालय खुरई में। डॉक्टर नीलेश शाह जी पधारे, जो कि अतिरिक्त उप संचालक हैं पशु चिकित्सा विभाग सागर में। आज के अपने एक कार्यक्रम को आप तमाम श्रोता भैया बिन्नाहरों तक पहुंचा भी हमें तकनीकी सहयोग प्राप्त भाव देवेश पांडे से। कार्यक्रम को संयोजन हतो सुब्रता यादव को, कार्यक्रम की प्रस्तुति रही नीरज सोनी की। और अब भैया रो, आज को साप्ताहिक क्रम हो गए तई संपन्न, सो सभी जनों से ले रहे हैं आज्ञा के रहे हैं जयराम जी की।
4: तो देखो नीरज भैया, जोन किसान भैया रो ने आज की ये हेलो ग्राम सभा में फोन लगाए थे, तो हम उम्मीद है कि निश्चित रूप से जो समस्याओं को लेकर फोन लगाए थे उनकी समस्याओं को समाधान होगा हुई है।
0: और संगे संगे संतोष भैया, जो किसान भैया हरे हमारे अपने कार्यक्रम से जुड़े हैं, उनको भी बहुत उम्दा और उपयोगी सी जानकारी मिल गई, खास तौर पे बोनी से जुड़ी भैया।
4: हाँ, यही सुनील भैया कहते हैं कि आपको कोई भी समस्या हो गए, खेती किसानी से लेकर पशुपालन से लेकर उद्यानिकी से लेकर, अगर कोई भी समस्या है तो आप हर बुधवार को 1 बजे से आपको जो भी समय मिल जाए तो फोन लगाओ।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और भैया रोज हट्टे स्टूडियो में जो विशेषज्ञ पधारत हैं भी आपकी समस्याओं को उपयोगी से समाधान देते हैं।
4: बिल्कुल
0: संतोष भैया, आगामी बोनी से जुड़ी एक और बात हम अपने किसान भैयारों से कहो चाहते हैं। उपलब्ध पानी के अनुसार बोनी करने जा तो हो गई एक बात, दूसरी बात भैयारों समय को भी ध्यान रखने।
4: बिल्कुल
0: संगे संगे आप किसान भैयारों को कोनो भी फसल बो, बीज उपचार और अपने कृषि के विशेषज्ञ जो भी कार्य बोनी के पूर्व बताते हैं उनको अपन को भैयारों नियम शाह पालन करो चाहिए ताकि हम अच्छो उत्पादन ले सकें किसानी में।
4: तो नीरज भैया अब चलवे की हो रही है बीरा, ओके पहले आज के मंडी भाव हम बताए देते हैं। तो आज के नो नीरज भैया जा क्षमा करें सब जने, ये कल के आए, आज छुट्टी है मंडी की, तो गेहूं को भैया जो कल भाव है तो वो है तो 2450 से लेकर 3400 रुपया प्रति क्विंटल, चना को भाव है तो 6000 से लेकर 7000 रुपया प्रति क्विंटल, सोयाबीन को भाव है तो 5000 से लेकर 5600 रुपया प्रति क्विंटल, मसूर हती 5500 से लेकर 8000 रुपया प्रति क्विंटल, उड़दा को भाव है तो 6000 से लेकर 7500 रुपया प्रति क्विंटल, राई सरसों हती भैया 6000 से लेकर 6500 रुपया प्रति क्विंटल, और बटरी हती भैया 3500 से लेकर 3800 रुपया प्रति क्विंटल।
0: किसान भैयारो मौसम की जानकारी में अधिकतम तापमान रहो 34.4 डिग्री सेल्सियस जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहो। किसान भैयारो नमी भुंसरा की 71% और डेंडूबे की 61% दर्ज करी गई।
4: यही के संगे भैया ग्राम सभा कार्यक्रम संपन्न होते हैं, तो आप अपने किसान मित्रों को दीजिए आज्ञा। हम संतोष पाठक
0: और नीरज सोनी की
4: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 MHz पर। रात के 8 बज चुके हैं, बस कुछ ही पलों में हम हाजिर होंगे कार्यक्रम चित्रपट लेकर। श्रोताओं, बस कुछ ही पलों में हम आपको सुनवाएंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत सुनिए, फिल्म का नाम क्या यही प्यार है, अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज में। जलीस शरीद की शब्द रचना और संगीत साजिद वाजिद का।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम था क्या यही प्यार है। अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ें थी, जलीस रशीद की शब्द रचना थी और संगीत था साजिद वाजिद का। कार्यक्रम में आप सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में ये गीत, फिल्म का नाम मैंने दिल तुझको दिया। फैज अनवर ने इस गीत को लिखा है, संगीत डब्बू मलिक का है।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं आर्यन फिल्म से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में गीत। आनंद राज आनंद ने इस गीत को लिखा है और संगीत निर्देशन किया है।

श्रोताओं, कार्यक्रम में समय को ध्यान में रखते हुए एक और गीत हम शामिल कर रहे हैं अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज़ों में। मनोज यादव ने इस गीत को लिखा है, संगीत प्रीतम का है, फिल्म का नाम है अजहर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। रात के 8:20 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए एल्बम अब पेश है गजल से, शब्बीर कुमार की आवाज में ये गजल। अहमद वासी ने शब्द रचना की है और संगीत सरदार मलिक का है।

0: दिवाली से पहले दिवाली धमाका।
1: स्वराज 742 XT सिर्फ 1,21,000 के डाउन पेमेंट पर, नियम व शर्तें लागू।
0: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
1: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स खेमलासा रोड बीना,
0: माणिक मोटर्स छोटा करीला सागर।
1: संपर्क करें 8720096977
0: 8720099677।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं एल्बम अफसाना से जमीर काजमी की लिखी हुई ये गजल। गायक, कलाकार और संगीतकार है पंकज उदास।

पंकज उदास की आवाज़ में ये गज़ल अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं अनूप जलोटा की आवाज़ में गज़ल। शब्द रचना माहिर की है, संगीत निर्देशन अनूप जलोटा का है।

श्रोताओं, इसी गजल के साथ कार्यक्रम संगीत सरिता को अब हम संपन्न कर रहे हैं। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। बस कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने कालासागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की है। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्षों में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि करके इसे 5.5% कर दिया। चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआई को देने की घोषणा की और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है।
1: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इम्पोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी।
2: जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भारत के विकास और वैश्विक स्तर पर बढ़ती पहचान में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने श्री मोदी को हमारे समय का अवतार बताया और कहा कि उन्होंने भारतीयों में अधिक आत्मविश्वास और गर्व की भावना जगाई है। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने श्री मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने भी श्री मोदी को बधाई दी है और भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और लोकतंत्र में लगातार 25 वर्ष के नेतृत्व को एक दुर्लभ उपलब्धि करार दिया। बोत्सवाना के राष्ट्रपति डुमा बोको ने भी श्री मोदी को बधाई देते हुए भारत के लोगों के प्रति उनके समर्पण और सेवा की सराहना की और दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता की उम्मीद की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन इस माह 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। आईएमसी 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 से पहले नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संगठन जीएसएमए के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए शांति और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मुक्त, खुले और नियम आधारित वैश्विक समुद्री व्यवस्था का आह्वान किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग के लिए अपने संदेश में ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता लाल कृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने पिछले एक दो दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा हैं और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं।
2: कल से लेकर आज तक हमने देखा है कि 4 जहाजों पर अटैक हुई है। इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं। इससे हमारे जो वाणिज्य की नौ परिवहन है, साथ में जो हमारे नाविक समुदाय के लोग हैं, उनको खतरे के दायरे में लाया जा रहा है। पहला जहाज MV रायोद मामादोव, ये भी ब्लैक सी में इस पर अटैक हुई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक थे। उसमें से 1 भारतीय नागरिक को चोट पहुंची और उनको वहां पर अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है।
1: रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्षों के साथ भारत की बातचीत की रूस और यूक्रेन दोनों ने सराहना की है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस इस संकट के

0: शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुझाव देने की भारत की तत्परता की सराहना करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को हकीकत में बदला गया है।
1: भारत और फ्रांस ने नवंबर 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 जलवायु सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी। यह एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर ऊर्जा की पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस गठबंधन का उद्देश्य सौर ऊर्जा को सस्ता, भरोसेमंद और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध कराना है।
2: Is so important. We want to bring solar energy into our lives and homes by making it cheaper, more reliable, and easier to connect to grid. We will collaborate on research and innovation. We will share knowledge and exchange best practices. We will cooperate on training. We will partner with other international initiatives on renewable energy.
1: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक आशीष खन्ना ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि ISA प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच और भारत की वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता को दर्शाता है।
3: माननीय प्रधानमंत्री ने 2018 में स्थापना दिवस पर 1000 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा था, अगर हम 2026 में देखें जब दुनिया 3000 गीगावाट कर चुकी है, तो उनकी दूरदर्शिता सही मायने में दिखलाता है।
1: आज अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच बन चुका है। वर्तमान में 129 देश इसके सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं। भारत के नेतृत्व में ISA का उद्देश्य लोगों तक ऊर्जा की पहुंच को बेहतर बनाने के साथ साथ दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गई है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
4: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
5: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं।
4: एंड द बैंक रेट टू 5.75%।
0: भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है और इसे अनुसूचित बैंकों की सूची से हटा दिया है। RBI ने कहा है कि इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर चर्चा के लिए वरिष्ठ भारतीय और EFTA के अधिकारियों, उद्योगपतियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केंसो सोआई को देने की घोषणा की गई है। एक रिपोर्ट।
6: स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटेलिसिस की खोज के लिए ये सम्मान देने की घोषणा की है। उन्होंने रसायन विज्ञान में दर्पण प्रतिबिंब चुनने की प्रक्रिया पर काम किया। दोनों वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान की करीब 100 वर्ष पुरानी गुत्थी सुलझाई है। उन्होंने बताया कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में एक

0: दूसरे का प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब जैसे दो अणुओं में से सिर्फ एक ही के रूप कैसे बनाया जा सकता है। ये खोज दवाओं सहित कई तरह से रसायन बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित किए जाएंगे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने काला सागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की, कहा भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान के लिए भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुवाई को देने की घोषणा की है। और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचार संध्या आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी सागर। रात के 9 बजे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अदिति। कार्यक्रम का नाम है मन चाहे गीत। आपके पत्र और संदेश साथ हैं, फरमाइशें तैयार हैं। तो सुनते हैं मन चाहे गीत कार्यक्रम में ये पहला फिल्मी गीत।

0: श्रोताओं, फिल्म का नाम था जब वी मेट। मोहित चौहान की आवाज़ में ये गीत था, इरशाद कामिल ने इसे लिखा था, संगीत प्रीतम का था। आप सभी ने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजे फरमाइश के लिए। मेरठ सरधना से जीवियम, मुस्कान, सयम और अनिल जैन। मध्य प्रदेश खंडवा से विजय महोबिया, कविता, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, ईशु, विशु, अनय, अनाया और इनके सभी साथी। भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश और मुरली। महाराष्ट्र से सहदेव, दामोदर, शशिकला, सुमेध कुमार और साधना पवन। मध्य प्रदेश से एक व्हाट्सएप पर टेक्स्ट हमारे पास आया है, विनोद, नेहा, दीपक, मयंक, चेतन नाटा, दीक्षा और कुशका। और दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल का।
1: दिवाली से पहले दिवाली धमाका।
2: स्वराज 733 FE रोटावेटर के साथ मात्र 6,49,000 रुपए में। नियम व शर्तें लागू।
1: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
2: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स, खेमलासा रोड, बीना,
1: माणिक मोटर्स, छोटा करीला, सागर।
2: संपर्क करें 8720096977
1: 8720009677।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फरमाइशकर्ताओं के नाम पहले आपसे साझा कर रहे हैं। आप सभी ने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजे हैं करजत से अहमद भाई, सदफ, जूही, इमरान, अहमद। दिल्ली से आमना, नसरीन, आसमा, परी, राबिया, मंदाशा, आशु, अहमद। लखमीनिया बेगूसराय से शमीम अहमद, रायन, अखलाक अहमद और इनके सभी साथी। अनिल कुमार गोके, वैशाली, प्राजक्ता, वैष्णवी और यज्ञेश औरंगाबाद से आप सभी ने टेक्स्ट भेजा है। श्रीरामपुर से डी अशोक कुमार, अविका, अजीविका, सानू और अर्चना। पुनावले से अजय सोनमणि, करिश्मा, अविका और सायशा। और उत्तर प्रदेश से फरमान सलमान, इरफान इसरार और नरगिस खातून।

आयुषी रमेश चंद्र, राजकुमार बोडाना और शेख मूसा। एक और एसएमएस हमें मिला है दिग्दर्शन और कविता गौर का, मेरठ कैंट से। सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा। छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। एक एसएमएस हमें मिला है सनावत से अशोक और राजकुमार मोहसिन का। पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा। आप सभी की फरमाइश पर सुनिए अनुपम अमोद की आवाज़ में ये गीत। इरशाद कामिल की शब्द रचना, संगीत प्रीतम का, फिल्म का नाम आक्रोश।

श्रोताओं, आकाशवाणी के सागर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मनचाहे गीत। और अब अगली फरमाइश आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर चाईबासा झारखंड से शिवा, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली ने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजा है। नंदकिशोर, संगीता, साक्षी, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, जयश्री मेहत्रे, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टूअल और पीवी कुलथे ने महाराष्ट्र से व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजा है। और हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत और मयंक, आप सभी की फरमाइश पर सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत, जावेद अख्तर का लिखा हुआ, संगीत निर्देशन आर डी बर्मन का।

श्रोताओं, समय को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में हम एक गीत और शामिल कर रहे हैं। आप सभी ने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजे हैं, कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी, सुशीला देवी, सदानंद कुमार, गौरव आरव और अर्पिता अकोला से, गोपालगंज सागर से सुनीता, अनीता, ममता, रेखा, सीमा, कमला, राम कौर और बिट्टू रानी, बिजारनिया से देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या। आप सभी की फरमाइश पर सुनिए ये गीत।

श्रोताओं, ये जो गीत आप सुन रहे हैं ये है फिल्म जिस्म से। नीलेश मिश्रा ने इस गीत को लिखा है, गायक कलाकार श्रेया घोषाल हैं, संगीत है MM क्रीम का।

श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम में आखिरी फरमाइश हम आपको सुनवा रहे हैं, तो अब से कुछ ही देर के बाद यानी 9:30 से आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। तब तक आप आनंद लें। कार्यक्रम मन चाहे गीत में जिस्म फिल्म से इस गीत का

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन चाहेगी। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 9:30 हो चुके हैं, कृपया अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। अगला प्रसारण हम करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। आप सुन सकेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण।

जबकि संगीत तकरीबन शोर में बदलता जा रहा है। गजलों का वो सुनहरा दौर, गजलों की वो रोशन महफिलें बार बार याद आती हैं। हमारे जहन में अक्सर ये सवाल उठता है, वो शम्मा क्यों मद्धम पड़ गई।

दरअसल ये जमाना तेज रफ्तार हो गया, लोगों के भीतर वो सब्र नहीं रहा जो गजल सुनने के लिए लाजमी है। आइए आज के इन लम्हों को यादगार बना दें अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर की याद से।

0: जो हम।
1: अख्तरी बाई फैजाबादी का जन्म 7 अक्टूबर 1914 को फैजाबाद में हुआ था। बचपन से संगीत की तरफ रुझान था, परिवार इसके खिलाफ था, लेकिन चाचा ने साथ दिया। बेगम अख्तर ने फैजाबाद में सरंगी के उस्ताद ईमान खां और अता मोहम्मद खां से संगीत की शुरुआती तालीम ली। इसके बाद उन्होंने मोहम्मद खान और अब्दुल वहीद खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखा। बचपन की एक बहुत ही यादगार घटना है। उन दिनों अख्तरी बाई सही सुर नहीं लगा पाती थीं। उनके गुरु ने इसके बारे में कई बार सिखाया और जब वो सीख नहीं पाईं तो डांट दिया। उसके बाद बेगम अख्तर रोने लगीं और कहा, हमसे नहीं बनता नाना जी, मैं गाना नहीं सीख पाऊंगी। तब उनके उस्ताद ने कहा, बिटिया इतने में हार मान लिए? नहीं बिट्टू, ऐसे हिम्मत नहीं हारते मेरी बहादुर बिटिया, चलो एक बार फिर से सुर लगाने में जुट जाओ। उनकी ये बात सुनकर बेगम अख्तर ने रियाज शुरू किया और सही सुर लगाए।

तीस के दशक में जब बोलती फिल्मों का दौर आया तो बेगम अख्तर के सामने कोलकाता की ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी ने अपनी फिल्मों में अभिनय की पेशकश की। इस तरह सन 1933 में बेगम अख्तर ने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद मशहूर निर्देशक महबूब खान ने उन्हें सन 1942 में आई अपनी फिल्म रोटी की नायिका बनाया। इस फिल्म में चंद्रमोहन और शेख मुख्तार जैसे कलाकार थे। इस फिल्म का संगीत अनिल बिस्वास ने दिया था और फिल्म के तकरीबन 6 गीत बेगम अख्तर की आवाज में रिकॉर्ड किए।

1945 में जब बेगम अख्तर की शोहरत अपने शबाब पर थी, तब उन्होंने इश्तियाक अहमद अब्बासी से निकाह कर लिया और अख्तरी बाई फैजाबादी बेगम अख्तर बन गईं। वो गायकी छोड़कर पर्दा नशी हो गईं। उन दिनों में वो बीमार रहने लगीं। डॉक्टरों ने बताया कि बीमारी की एक वजह ये है कि वो अपने पहले प्यार यानी गायकी से दूर हैं और उनके शौहर ने उन्हें प्रेरित किया। सन 1949 में एक बार फिर वो गायकी की दुनिया में लौटी और आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से गाना गाने लगी।

रेडियो में गाना शुरू हुआ तो बेगम अख्तर संगीत सम्मेलनों में जाने लगी। इस बीच फिल्मों में भी वापसी हुई। महान संगीतकार मदन मोहन के कहने पर बेगम अख्तर ने 1953 में प्रदर्शित फिल्म दाना पानी का एक गाना गाया।

सन 1954 में उन्होंने फिल्म एहसान का एक गाना गाया। सन 1958 में सत्यजीत रे की फिल्म जलसा घर में भी उन्होंने गाना

से जानती थीं, जब वो लखनऊ रेडियो स्टेशन पर थे। बेगम अख्तर दिल्ली आई हुई थीं और उन्होंने रेडियो पर मदन मोहन का एक गाना सुना। फिर आधी रात को बेगम अख्तर ने मदन मोहन को फोन किया और कहा कि वही गाना सुनाओ, कदर जानी ना। मदन मोहन ने फोन पर ही गजलों की रानी बेगम अख्तर को ये गाना सुनाया और करीब 22 मिनट तक मदन मोहन फोन पर ट्रंक कॉल के जमाने में बार बार ये गाना सुनवाते रहे और बेगम अख्तर सुनती रहीं।

0: बेगम अख्तर की सबसे बड़ी खासियत है उनका क्लासिकी गजलों को गाना और क्लासिकी अंदाज में गाना। गजलों की शुद्ध दुनिया को उन्होंने बिल्कुल वैसा का वैसा रखा, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, नए साजों का कोई इस्तेमाल नहीं किया। बेगम अख्तर गजलों की दुनिया की एक क्लासिकी आवाज के तौर पर हमेशा बहुत इज्जत के साथ याद की जाती हैं।
1: बदलते हुए जमाने ने जहां हर चीज को कुछ नयापन दिया, वहां मूसीकी ने भी नई कदरों की कद्र की है। मैं नएपन की मुखालिफ नहीं, लेकिन ये नयापन वहीं तक मुनासिब है जहां तक आज के फनकार और मूसीकार नएपन के चक्कर में तहजीब का दामन न छोड़ें। गजलें पहले भी गाई जाती थीं, आज भी गाई जाती हैं, मगर असल में गजल वही कहलाने की मुस्तहक है जिसमें गजल का रवायती अंदाज मौजूद हो। मिसाल के तौर पर गजल की ये बंदिश सुनिए जो मुझे बहुत पसंद है।

0: भारत सरकार ने बेगम अख्तर को सन 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया। सन 1972 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला और सन 1975 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
1: गजल में एक ऐसी कैफियत है और अच्छे शोरा की गजलों में तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुन के तबीयत खुश हो जाती है। तो बताइए ये सिर्फ पढ़ के जो लुत्फ आता है और गाने के बाद इसमें क्या लुत्फ पैदा होगा कि अगर वो उस अंदाज से गाई जाए जिस तरह गजल गाया करते थे, तो मेरा ख्याल है कि इंसान बगैर रोए तो नहीं उठना चाहिए।

बेगम अख्तर की आवाज का जादू अपने शबाब पर था। उन्होंने गजलों की दुनिया को रोशन कर रखा था, पर तभी 30 अक्टूबर 1974 को अचानक उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गजलों की दुनिया की एक शम्मा हमेशा के लिए बुझ गई, लेकिन शुक्रगुजार हैं उन रिकॉर्ड्स का जिनके जरिए बेगम अख्तर की आवाज को हमने संजो कर रखा।

ये था बेगम अख्तर की याद में हमारा विशेष कार्यक्रम। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।

सामिन, कुछ रिश्ते जैसे जन्म जन्मांतर के लगते हैं, क्योंकि ये रिश्ते केवल इस जीवन के नहीं होते, सात जन्मों से साथ हैं जैसे यूं लगता है कभी कभी। हालांकि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, पर प्यार में लगता है कि हम हर पल साथ रहें, एक दूसरे में खोए खोए से, एक दूसरे में गुथे हुए से, क्योंकि ये प्यार सिर्फ प्यार नहीं, आदत भी नहीं, रूह का एक हिस्सा बन जाता है।

0: मैंने उस दिन पहली बार अपने भीतर उतर कर देखा। वहां मैं थी और वो था। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा था, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसने कहा था, तुम्हारा चेहरा चांद जैसा नहीं है, पर तुम एक प्यार से लिखी हुई किताब हो जिसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। तुम जैसी हो तुम वैसी ही पूरी हो। कहते कहते उसकी आंखें शरारती हो गई थी।
1: रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना।

मैं चाहती थी कि कोई मेरे जज्बात को बिना बोले समझे। फिर तुम मिल गए। साधारण सा प्यार भी असाधारण हो जाता है तुम्हारे साथ जैसे। न कोई बड़े सपने, न दीवानगी, न झूठा रोमांस। तुम्हारा प्यार किसी फिल्मी डायलॉग से शुरू नहीं होता, वो तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। पर हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी आंखों में झांक कर शरारती अंदाज में कुछ कह जाते हो, कुछ कह जाते हो।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर कोई थोड़ा सा भी थाम ले तो मन थिरकने लगता है, जिंदगी खुशगवार हो जाती है तब। हाँ, छोड़कर चले जाना तो आसान है, लेकिन थामे रहना, जैसे तुमने थामा मुझे। सैकड़ों को प्यार करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हीं ने तो कहा था बस एक को 100 तरीके से प्यार किया जाए वही काफी है। प्रेम की जरूरत होती है सच्चाई, विश्वास और धैर्य। जरा थाम कर तो देखिए किसी को, कभी किसी तरह।

उसका यूं गले लगाना एक अजीब सुंदर सा एहसास है। वो थोड़ा सा स्पर्श, वो थोड़ी सी करीबी, अहां एक आवेग नहीं, पल भर की शांति है वहां जैसे। उसका वो आलिंगन एक विश्वास देता है मेरे मन को। उसकी बाहों की खामोशी मेरी टूटन को जोड़ देती है। उसका यूं गले लगाना जैसे दिल की गहराइयों में पना देता है मेरे समूचे अस्तित्व को।

प्रेम सिर्फ एक अनुभव नहीं, प्रेम साथ रहने का नाम भी नहीं, ये तो एक रूपांतरण है। हाँ, एक रूपांतरण। तपिश है, नरमाहट है, गर्माहट है, विश्वास है, प्राणवायु है। ये तो उसका प्रेम सर्दियों में सुबह की सूरज की गर्मी जैसा है। उसका चाहना गर्मी की तपन से दूर एक ठंडक का एहसास देता है। कभी कभी ये प्रेम बसंत में हवा की हल्की सी सरसराहट जैसा लगता है, और कभी कभी वो प्रेम सितार की मधुर तान जैसा बन जाता है। प्रेम की वो गर्माहट, वो तपिश, आह कितना

0: भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
3: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस वन। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
3: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।

0: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू।
1: नमस्कार। समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
2: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
1: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है। जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाले इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी। सरकार ने कहा है कि देश में प्याज की उपलब्धता बेहतर हुई है और इसकी कीमतों में भी कमी आ रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इस साल खरीफ प्याज की खेती बढ़ी है, फसल की स्थिति अच्छी है और मंडियों में प्याज की आवक भी बढ़ रही है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से नई खरीफ प्याज की आवक शुरू हो गई है। आने वाले हफ्तों में इन राज्यों से आवक और बढ़ने की उम्मीद है। इससे त्योहारी मौसम में बाजार में प्याज की उपलब्धता बेहतर होगी। भारत ने पिछले 1-2 दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा हैं और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। कनाडा के प्रधानमंत्री के वरिष्ठ राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार डेविड मॉरिसन का भारत दौरा आज समाप्त हो गया। डेविड मॉरिसन 3 दिन के भारत दौरे पर थे। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर भारत आए थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार नई दिल्ली में हुई बैठक दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर चल रही द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता के अंतर्गत आयोजित की गई। एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित होंगे। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद ने 2014 से 2023 के बीच एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 4 कांस्य सहित 6 पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब संपन्न होती है। कल की प्रसारण सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।